सुप्रभात। एफएम 100.5 यानी 100.5 पेगा हाउस पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि तदनुसार 12 अगस्त सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी।

0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगरपालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगरपालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।
3: सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। भारतीय मनीषा की इस चिंतन धारा में सभी सुखी हों, सबका कल्याण हो, न केवल समस्त धरती पर रहने वाले मनुष्य ही समाये हुए हैं, न केवल प्राणी मात्र अपितु समस्त सृष्टि, जिसमें पशु पक्षियों के साथ ही साथ जल और समस्त हरितिमा को सजाने वाले पेड़ पौधे भी सम्मिलित हैं। ये वासुदेव कुटुम्बकम का प्रत्यक्ष श्रेष्ठ उद्घोष है। इस सारी पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी एक कुटुंब के समान ही नहीं है, बल्कि सारी मानव जाति एक कुटुंब ही है। एक व्यक्ति का दुख सबका दुख है और धरती के एक छोर पर रहने वाले एक व्यक्ति का सुख धरती के दूसरे छोर पर रहने वाले दूसरे व्यक्ति के सुख के साथ भी जुड़ा हुआ है। भूमंडलीकरण और संचार सुविधाओं ने जिस सत्य को आज हमारे सामने इतने करीब ला दिया है, उस सत्य को सृष्टि को रचने वाले ने सबसे पहले ही स्थापित कर रखा है। ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये सागर, ये नदियां, ये पहाड़, ये जंगल, ये निरंतर अपने अनुशासन में बदलता मौसम का चक्र, पूरे संसार में एक सी व्यवस्था चल रही है और सह अस्तित्व में ये सारा संसार गुंथा हुआ है। हिमालय की बर्फ पिघलती है या हिमालय के पहाड़ों के जंगल कटते हैं तो बलशाली अमेरिका भी चिंतित होता है। बूंद जब बादल से धरती की ओर गिरती है, जब नदी सागर से मिलने दौड़ पड़ती है, उसमें वासुदेव कुटुंबकम की गूंज सुनाई देती है। वृक्ष पर जब फूल खिलता है या फल पकता है तो उसमें भी वासुदेव कुटुंबकम की सुगंध और मिठास फैल जाती है। संसार के समस्त मनीषियों ने, युग प्रवर्तकों ने, धर्मों ने, मजहबों ने इसी भावना का प्रतिपादन किया है। सारी मानव जाति एक कुटुंब के समान है। सभी प्राणियों में बंधुत्व हो, भाईचारा हो, ताकि इस पृथ्वी पर मानव जाति बनी रहे और अपने सर्वोच्च को प्राप्त कर सके। मानव जाति का इतिहास साक्षी है कि मनुष्य ने अब तक जितना विकास किया है, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसमें यही वासुदेव कुटुंबकम की भावना ही मूल तत्व के रूप में विद्यमान रही है। किंतु यह भी सत्य है, मनुष्य में दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां साथ साथ रहती हैं और इन आसुरी प्रवृत्तियों ने मानव जाति का कोई कल्याण नहीं किया है। युद्ध और नरसंहारक शस्त्रों की होड़ ने

0: समस्त मानव जाति को भयग्रस्त कर रखा है। इसी भय से मुक्त होने और शांति के साथ मानव कल्याण को दुनिया के हर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का सृजन किया गया। हम भारतीयों ने वासुदेव के विराट स्वरूप की कल्पना करके जिस तरह सारी मानव जाति सहित समस्त सृष्टि को एक कुटुंब माना है, उसी को वेदों की ऋचाओं में इस तरह प्रतिष्ठित किया गया है। हम सबकी कल्पना एक हो, हृदय एक हो, मन समान हो, जिससे उपजे सुंदर सम्मति, सह अस्तित्व भावना सब में गतिमान हो। यही वो भावना है जो सुनामी की लहरों के आतंक को दूर करने के लिए सारी दुनिया एक कुटुंब की तरह बन गई और एक दूसरे की सहायता की। सारी मानव जाति का कल्याण हो। ओम शांत।
1: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सर्वे भवन्तु सुखिने के संबंध में विचार। वाचक स्वर था प्रेम कुमार सढाना का। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ऊंचा लहराता तिरंगा देश की शान है और ये तिरंगा यूं ही अनंत काल तक लहराता रहे, देश का मान बढ़ाता रहे, इसी कामना के साथ सुनते हैं कार्यक्रम में मातृवंदना।

मातृवंदना के बाद आइए देवों में प्रथम पूजनीय सुखकर्ता दुखहर्ता भगवान गणेश का सुमिरन करते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम में ये गणपति वंदना।

हरि ओम शरण के गाए इस भजन के बाद आइए आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौड़वाल का गाया ये भजन। इरे मन, समस्त प्राणियों की अंतरात्मा में परमात्मा है, परमात्मा का घट घट में वास है, जगत के आकाश में, अग्नि में, वायु में, जल में, थल में, सभी में, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ भी परमपिता परमेश्वर परमात्मा होते हैं, पर परमात्मा मिलते हैं निस्वार्थ भाव से, सच्ची भक्ति से।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की उपासना से जीवन में आरोग्य, सुख, शांति और समृद्धि मिलती है, भक्ति और मुक्ति मिलती है, जो मात्र जलाभिषेक से प्रसन्न होकर दुखों को दूर करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे ए हरिहरन का गाया ये शिव भजन। वंदना कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में ये मसीही भक्ति गीत।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान का संगीत पद पाठ।

एक पूरी आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के डिगाए नहीं डिगे। अंततो गत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृतसनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृत सरीखी ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनययुक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एकटक खुले के खुले रह गए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीत पद पाठ। कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में हिमांशु दरमोड़ा की गायी गजलें प्रसारित की जाएंगी। श्रोता फिल्मी देशभक्ति गीत सुन सकते हैं सुबह 7:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे सुबह 9:00 सदाबहार कार्यक्रम में, 10:12 पर दिन में 11:00, 1:15 पर, 2:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में, 3:02 पर शाम, 4:30 पर शाम को, 7:40 पर और रात्रि 8:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:55 होने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: AM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। अशीतितमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य प्रसंगे कृत्स्नेहि देशे हर घर तिरंगा इत्यभियानं गतिं भजते। यदि अगस्तमासस्य 17 दिनांकं यावत् अनुवर्तयिष्यते। अस्मिन्नेव वर्षे वंदे मातरम गीतस्य सार्धैकशततमी जयंती पूर्तिः अपि उत्साहं द्विगुणीकरोति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः विकसित भारतस्य संकल्पेन सह गृहेषु ध्वजम् उत्तोलयितुं सादरं प्रोक्तम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक संशोधन विधेयकं 26/26 इत्यस्मै स्वकीयां अनुमतिं दत्तवती। अनेन संशोधनेन राष्ट्रगीतं वंदे मातरम् इत्येतत् राष्ट्रगानेन जनगणमन इत्यनेन सह समानं वैधानिक संरक्षणं लभते। अधुना अस्य गायने बाधोत्पादनं अथवा सभायाः विघटनं विधिकदृष्ट्या दण्डनीयः अपराधो भविष्यति। संसदाधिकरण परिष्कार विधेयकं 26/26 पारितम्। राज्यसभया विधेयकस्यानुमोदनमपि अंगीकृतम् यत् लोकसभया पूर्वमेव पारितम् आसीत्। विधिन्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवालः एतद् विधेयकं उपस्थापितवान्। अस्य विधेयकस्य मुख्यम् उद्देश्यं तावत् विविधाधिकरणानाम् अध्यक्षानां सदस्यानां च अर्हतासु नियुक्तौ सेवानियमेषु तथा अधिकरणानां प्रशासने कार्यप्रणाल्यां च दक्षतां स्वायत्ततां पारदर्शितां एकरूपतां च आनेतुमस्ति। चर्चायाः प्रत्युत्तरे सति मेघवालेन प्रोदीरितम् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे सर्वकारेण 25/2000 वर्षे अधिकरणानां युक्तीकरणस्य प्रक्रिया समारब्धा। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्मिन् नूतन विधेयके राष्ट्रिय अधिकरणायोगस्य स्थापनायाः प्रावधानम् अस्ति, यस्य अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः उत उच्च न्यायालयस्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशः करिष्यति। विधेयक पारणात् परं सदने विशेष उल्लेखानां विषयेभ्यः समयः कल्पितः यस्मिन् विधिक सदस्यैः लोक महत्वस्य विषयाः उत्थापिताः। कार्यसमाप्त्यनन्तरं पीठासीनाधिकारिणा सदनस्य कार्याचरणं श्वः प्रातः 11 यावत् स्थगितम्। लोकसभया केरल नाम परिवर्तनं विधेयकं पारितम्। अस्मिन् विधेयके संविधानस्य प्रथम अनुसूच्यां राज्यस्य केरल इति नाम परिवर्त्य केरलम् इति कर्तुं प्रावधानम् अस्ति। विधेयकस्यास्य विषये भाषमाणः गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः अवोचत् यत् गतवर्षे केरलविधानसभया राज्यस्य नाम केरलम् इति कर्तुं केन्द्र सर्वकाराय अनुरोध प्रस्ताव पारित आसीत। तेनोदीरितं यत् मलयालम भाषायां राज्यस्य नाम केरलम इति अस्ति, परं संविधाने एतत् केरल इति लिखितम् आसीत्। राज्यसभया राष्ट्रिय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयकम् अपि पारितम्। सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहिल इत्यनेन उपस्थापितं विधेयकं निगमस्य गतिविधीन् औद्योगिकपण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमतिं ददाति। उभे अपि विधेयके नीट विप्रतिपत्तिमधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलमध्ये चर्चां विनैव पारिते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व राजस्थान ओडिशा प्रभृति प्रदेशेषु अतिवृष्टेः पूर्वाभासः प्रकटीकृतः। पंजाब उत्तराखंड गुजरात क्षेत्रेषु अपि अतिवृष्टिः संभाव्यते। आंध्र प्रदेश झारखंड कर्नाटक प्रदेशेषु विद्युतपात झंझावाताभ्यां सह अतिवृष्टि परा संचेतना च प्रसारिता। राष्ट्रीय राजधान्यां तावत् देहल्यां सायंकाले मेघाच्छादनेन सह मंद वृष्टिः संभाव्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा को तैयार है।
3: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित भी करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। नागरिकों से अपील करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। उन्होंने कहा कि देश के हर त्योहार के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवन को बेहतर बनाने का संदेश छिपा होता है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुई लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई भी बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने करकटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. The Lok Sabha had passed the bill yesterday. Rajya Sabha is also likely to take up the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing today. In the Lok Sabha, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 will be tabled for consideration and passing. Yesterday, the proceedings of both the Houses of Parliament were once again disrupted following opposition uproar on various issues. Lok Sabha passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Rajya Sabha passed the Tribunals Reforms Bill 2026. President Draupadi Murmu has given assent to Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Parliament had passed the bill last month. The legislation seeks to give national song Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. It makes it an offence to internationally prevent its singing or to disturb an assembly engaged in singing it. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China.
5: India-China border affairs, which was held on 6th. At this meeting, the two sides engaged in frank discussions and reviewed the situation along the line of actual control. The Indian side again underlined that maintaining peace and tranquility in the border areas is essential for the overall development of bilateral relations. It was agreed to continue to use existing mechanisms, diplomatic and military channels, including the WMCC, local commander-level meetings, and other agreed mechanisms to resolve outstanding issues and avoid misunderstandings and miscalculation along the line of actual control.
4: Prime Minister Narendra Modi will release the autobiography of former President Ramnath Kovind titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. The autobiography offers a deeply personal account of former President Ramnath Kovind's life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and the eventual service as the 14th President of India. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Gangetic, West Bengal, Madhya Maharashtra and Odisha today. According to IMD, parts of Punjab, Uttarakhand, Chhattisgarh, Gujarat, West Madhya Pradesh, West Rajasthan, Goa and northeastern states are expected to experience heavy rainfall for the day. The World Bank has raised serious concerns over Pakistan government's decision to divert multi-billion rupee funds meant for flood-affected

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी देशभक्ति गीत।

ये स्वर थे महेंद्र कपूर और साथियों की। फिल्म का नाम था पूरब और पश्चिम। गीत था निवरक और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं सोनू निगम और मोहम्मद वारिस की। फिल्म का नाम द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। गीतकार हैं समीर और संगीतकार ए आर रहमान।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी देशभक्ति गीत। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 हुए हैं, अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार जल्द मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 2026 शुरू करेगी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलेगी निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित खेती और आधुनिक तकनीक पर जोर दिया। कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन आज से 18 अगस्त तक जिले में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाएगा। और चमोली की नीति घाटी में भारी बारिश के कारण तमक नाले में बैली ब्रिज बहने से बाधित, यातायात रिकॉर्ड समय में बहाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित खेती और आधुनिक तकनीक पर जोर दिया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर फलोत्पादन से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को किसानों से फीडबैक लेकर उनकी समस्याओं और सुझावों को योजनाओं में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्पादन क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के उपयोग को बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोल्ड स्टोरेज, परिवहन, रोपवे, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट जैसी सुविधाओं का मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जाना जरूरी है। सेब और कीवी की सघन खेती के लिए गुणवत्तापूर्ण नई किस्में उपलब्ध कराने और हाई डेंसिटी वैरायटी की आधुनिक नर्सरियां विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने पॉली हाउस योजना का अधिक से अधिक लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए उन्हें आवश्यक सहयोग देने और कम उत्पादकता वाले पुराने क्षेत्रों को हाई डेंसिटी की नई फसलों से बदलने को कहा। राज्य सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 2026 शुरू करेगी। इसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: योजना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही मंजूरी दे चुके हैं और जल्द ही इसका विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। योजना के तहत यूपीएससी, पीएससी, सीडीएस, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी के साथ कैट, मैट, गेट, नेट और सीएसआईआर नेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। योजना से विशेष रूप से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण महंगी कोचिंग नहीं ले पाने वाले विद्यार्थियों को भी घर बैठे गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और तैयारी का अवसर मिलेगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।

0: की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापार मंडल, जनप्रतिनिधियों और आमजन से भी अभियान में सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप और राज्य सरकार के प्रयासों से रूस में करीब 97 दिनों से फंसे पिथौरागढ़ निवासी दो भाई आनंद सिंह कार्की और भूपेंद्र सिंह कार्की सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। दोनों की वापसी के बाद मुख्यमंत्री ने फोन पर उनसे बातचीत कर उनकी कुशलक्षेम जानी। परिजनों के अनुसार दोनों भाइयों को बेहतर रोजगार का भरोसा देकर सितारगंज की एक ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से रूस भेजा गया था। परिवार का आरोप है कि इसके लिए उनसे करीब 8 लाख रुपए लिए गए। दोनों 5 मई को भारत से रवाना हुए और 6 मई को मॉस्को पहुंचे। रूस पहुंचने के बाद उन्हें बताए गए काम के बजाय अन्य कार्य कराया गया और पारिश्रमिक भी नहीं दिया गया। मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय और रूस स्थित भारतीय दूतावास से लगातार समन्वय किया। इसके बाद दोनों भाइयों की सुरक्षित भारत वापसी हो सकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का कोई भी नागरिक दुनिया के किसी भी हिस्से में संकट में होगा, राज्य सरकार उसकी सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: चमोली की नीति घाटी में भारी बारिश के कारण तमक नाले में बैली ब्रिज बहने से बाधित यातायात रिकॉर्ड समय में बहाल कर दिया गया है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई मोटर मार्ग तैयार किया, जिसके बाद कल शाम से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मार्ग बहाली की स्थिति की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने जल्द से जल्द यातायात बहाल करने के निर्देश दिए थे। वहीं बैली ब्रिज बहने के बाद लापता एक व्यक्ति की तलाश जारी है। जिला प्रशासन, पुलिस सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सीमा सड़क संगठन की टीमें संयुक्त रूप से सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और वाहन चालकों से अस्थायी मार्ग पर सावधानी बरतने और मौके पर तैनात टीमों के सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। तमक नाला में 10 अगस्त को अत्यधिक जल प्रवाह और मलबा आने की घटना का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाएगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने देश के प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों से इस घटना के कारणों का विस्तृत अध्ययन करने का अनुरोध किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्था, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यूसेक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को पत्र भेजकर तमक नाला के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र का अध्ययन करने को कहा गया है। संस्थानों को अचानक बड़े जल प्रभाव, मलबे के वास्तविक स्रोत की पहचान करने के साथ ही ये भी पता लगाने को कहा गया है कि घटना सामान्य या अत्यधिक वर्षा, बादल फटने, सतही बहाव या किसी अन्य कारण से हुई है। वैज्ञानिक संस्थानों से क्षेत्र में भूस्खलन, भूधसाव, ढलान विफलता और अन्य भू आकृतिक गतिविधियों की भूमिका का भी अध्ययन करने को कहा गया है। अध्ययन में उपग्रह चित्रों, ड्रोन सर्वेक्षण और जीआईएस आधारित विश्लेषण जैसी तकनीकों के इस्तेमाल का अनुरोध किया गया है। संबंधित संस्थानों से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। रिपोर्ट के आधार पर भविष्य के जोखिम कम करने, निगरानी और पूर्व चेतावनी व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय तय किए जाएंगे।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं, आपदा प्रबंधन और अवस्थापना सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए कुल 74 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन किया है। इसमें हेलीपैड निर्माण, क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत, बाढ़ सुरक्षा, मार्गों के पुनर्निर्माण और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य शामिल हैं। इसके तहत बागेश्वर में हेलीपैड निर्माण, गंगोत्री धाम में सीवर लाइन और सार्वजनिक शौचालयों से जुड़े कार्य तथा आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के काम किए जाएंगे। इसके अलावा उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र के 7 गांवों और भारत नेपाल सीमा पर जगबूढ़ा नदी के किनारे स्थित क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही चमोली में आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने और मलबा हटाने के कार्यों के भुगतान

0: राज्य सरकार जल्द मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 2026 शुरू करेगी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलेगी निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित खेती और आधुनिक तकनीक पर जोर दिया। कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन आज से 18 अगस्त तक जिले में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाएगा और चमोली की नीति घाटी में भारी बारिश के कारण तमक नाले में बैली ब्रिज बहने से बाधित यातायात रिकॉर्ड समय में बहाल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:30 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत सुनिए गिरीश सनवाल के गाए कुमावनी लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर परवीन कुमार, तबले पर सैकत मंडल, हुड़का पर रामचरण जुयाल, हारमोनियम पर सुरेंद्र सिंह और बांसुरी पर सौरभ। तो आइए सुनते हैं गिरीश सनवाल के गाए कुमावनी लोकगीत। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं ये कुमावनी नंदा स्तुति।

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में? क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: आइए आपको सुनवाते हैं गिरीश सन्वाल का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत छपेली।

गिरीश सन्वाल के गाए इस कुमावनी लोकगीत के साथ ही शैल संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। आपके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर परवीन कुमार, तबले पर सैकत मंडल, हुड़का पर रामचरण जुयाल, हारमोनियम पर सुरेंद्र सिंह और बांसुरी पर सौरभ। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, लोक संगीत के कार्यक्रम में सोनम के गाए गढ़वाली लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 10:35 पर। सुबह 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार।

0: देहरादून। सवेरे 9:45 पर सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं डॉक्टर अर्चना से बातचीत। विषय रहेगा बरसात के मौसम में बच्चों में होने वाली बीमारी। दोपहर 12:30 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा जनानों का वास्ता। श्रोतव, ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में होंगे, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
6: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
7: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देशभर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
8: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
5: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
9: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
5: झारखंड में JPSC JSSC परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
5: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृ तर्पण देना शुरू किया।

0: हिंदू परंपरा में मलयालम महीने करकटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक। और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्य की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह

0: Mandapam. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic, West Bengal today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं पेश कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

0: नमस्कार देहरादून, कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को प्रणाम। गुड मॉर्निंग है जी, भारती आनंद की ओर से। श्रोताओं, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, क्योंकि उनके पास नई सोच है, कुछ नया करने का साहस और बदलाव लाने की ऊर्जा है। दुनिया भर के युवा अपनी प्रतिभा, ऊर्जा, रचनात्मकता और समाज के निर्माण में अपनी भूमिका को पहचाने और उन्हें इस दिशा में अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों, इसी उद्देश्य के साथ हर साल 12 अगस्त यानी आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आज युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने जोश, अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने सपनों को साकार करने में लगाएं, क्योंकि युवा शक्ति केवल जोश का नाम नहीं, बल्कि सही दिशा में विवेक के साथ अपने ज्ञान को सकारात्मक कार्यों में लगाना है। बदलती जीवन शैली और तकनीकी के नए अवसरों के साथ साथ चुनौतियों को भी हमारे जीवन में शामिल किया है श्रोताओं। और आज जब हम बात करते हैं अपने तमाम युवा साथियों की, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आइए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संकल्प लें कि हम अपनी जो ऊर्जा है उसे तनाव, भ्रामक जानकारियों और नशे जैसी नकारात्मक आदतों में नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल विकास, सृजन, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा जैसी सकारात्मक गतिविधियों में लगाएंगे। क्योंकि जो हमारे युवा हैं ना, वो केवल कल की उम्मीद नहीं हैं, बल्कि आज की ताकत हैं।
1: मैंने

बिल्कुल श्रोताओं, अपने युवाओं के लिए हमने 7 रंगों के सपने चुने हैं और ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में, फिल्म का नाम आनंद। और आपको बता दें श्रोताओं कि कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में हम हर दिन आप तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाते हैं, आप सभी जानते हैं। और इसी क्रम में आज सर्वाइकल कैंसर और HPV वैक्सीन पर बातचीत करेंगे डॉक्टर हितेश कुमार शर्मा से, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी देहरादून। साथ ही दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर जानकारी देंगे श्री अनिल कुमार भारती, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड। और श्रोताओं, अब डालते हैं एक नज़र अखबार के पन्नों की सुर्खियों पर, क्या खास है आज शहर देहरादून और राज्य से जुड़ी खबरों में। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना जल्द शुरू होगी। योजना के तहत सिविल सर्विसेज, रक्षा सेवाओं, बैंकिंग, रेलवे और SSC समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। मसूरी के कैंपटी में भू कटाव का खतरा, मिट्टी की कमजोर क्षमता ने बढ़ाई चिंता। राजधानी दून में खुला श्री श्री वेलबींग का पहला केंद्र, स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी सेवाएं दी जाएंगी। इग्नू के केंद्र बनेंगे स्किल हब, रोजगार परक शिक्षा पर होगा जोर। SSB फेडरेशन व किसानों से खरीदेगा फल और सब्जियां। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने मसूरी के मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया, 4 दुकानें बंद कराई। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावे और आपत्तियों के निस्तारण को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। मौसम की बात करें श्रोताओं, मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार 12 अगस्त को मैदानी जिलों में मौसम के साफ रहने के आसार हैं। वहीं पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। श्रोताओं, ये थी अखबार के पन्नों की सुर्खियां, खबरें काम की आपकी और हमारी। और अब बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का युगल स्वर, फिल्म का नाम है जंजीर।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर महिलाओं में होने वाला ये प्रमुख तरह का कैंसर है, और जिस तरह की जीवन शैली हम लोगों की हो चुकी है, हम आम तौर पर इस खतरे में बहुत सी महिलाओं को देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस खतरे को काफी हद तक कम भी किया जा सकता है, और इसके बचाव के लिए एक HPV वैक्सीन लगाई जाती है जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या है सर्वाइकल कैंसर, क्या होते हैं इसके लक्षण, बचाव के उपाय और HPV वैक्सीन के बारे में आज हमसे जानकारी साझा कर रहे हैं डॉक्टर हितेश कुमार शर्मा, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी देहरादून। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: महिलाओं में ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये सेकंड लीडिंग कैंसर है इंडिया के अंदर। ये 1,00,000 महिलाओं में से लगभग 12 महिलाओं को होता है, और इसमें से 1,00,000 में से जिन 12 महिलाओं का होता है उसमें से लगभग 5 की डेथ हो जाती है, तो ये बहुत ही चिंताजनक है।
2: गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर होता है वो महिलाओं में, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं उनमें दूसरा सबसे प्रमुख कैंसर है, और एक बार जब ये डायग्नोज हो जाता है तो उसके इलाज में बहुत खर्चा आता है, और जो पीड़ा भुगतनी पड़ती है संबंधित रोगी को उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसमें बार बार ब्लीडिंग होती है और पेन की समस्या रहती है। इसको जांचने का एक तरीका पैप स्मियर भी है। पैप स्मियर मतलब गर्भाशय ग्रीवा से स्मियर लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है, तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आने के बाद उसकी लगातार जांच कराती रहनी चाहिए। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव के लिए सरकार ने एक निशुल्क वैक्सीन ड्राइव लॉन्च किया हुआ है जिसको HPV वैक्सीनेशन का नाम दिया गया है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे, कम से कम लगभग 30 केंद्रों पर ये वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है, और ये भी नोट करने वाली बात है कि खुले बाजार में अगर आप प्राइवेट डॉक्टर से इसको लगवाने के लिए जाएंगे तो इसकी कीमत लगभग 4,000 से 10,000 रुपए के बीच में आती है। केवल एक वैक्सीन जो कि 14 साल से 15 साल के बीच में लगाई जानी है, मतलब अगर आपका 14वां जन्मदिन पूर्ण हो गया है और 15वां जन्मदिन नहीं हुआ है, उस बीच में आप एक वैक्सीन लगवाते हैं तो इससे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को रोकने में बहुत हद तक आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा ये जो वैक्सीन है जो जननांगों के मत्स्य होते हैं उनको रोकने में भी हेल्पफुल है, और जो हमारा निसंतान रह जाते हैं दंपत्ति उसको रोकने में भी ये कारगर भूमिका निभाती है।
1: HPV वैक्सीन की बात आपने कही, कितना सुरक्षित और कितना प्रभावी है?
2: HPV वैक्सीन बहुत ही प्रभावशाली वैक्सीन है, और इसके दुष्प्रभाव ना के बराबर है। ऐसा माना जाता है कि किन्हीं केसेस में इसको लगाने के बाद हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, जो कि केवल पैरासीटामोल की गोली लेने से ही ठीक हो जाता है, और अभी तक जितने भी हमारे द्वारा वैक्सीन लगाई गई हैं उसमें कुछ अन्य विकार नहीं देखे गए हैं।
1: क्या HPV वैक्सीन लगवाने से भविष्य में गर्भ धारण करने की क्षमता पर कोई असर पड़ता है?
2: नहीं, ये बिल्कुल गलत भ्रांति फैलाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है।

0: बल्कि ये तो अगर आपको कैंसर नहीं होगा, इस तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, तो आपको गर्भधारण करने में ये हेल्पफुल होगी।
1: जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो माता पिता है, पेरेंट्स हैं, उन्हें अपनी बेटियों को एचपीवी वैक्सीन लगाने के लिए खुद भी जागरूक होना चाहिए और अपने आसपास के समाज में जिस तरह की गलत फहमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप?
0: मेरा मानना यह है कि प्रत्येक किशोरी को 14 से 15 साल की उम्र में एचपीवी वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। भविष्य में उनके गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे 80 से 90% तक के केसेस में, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के केसेस में एचपीवी वायरस जिम्मेदार होता है। उस डर को खत्म कर देंगे, उस वायरस को खत्म कर देंगे, तो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होने की संभावना ना के बराबर होगी।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने भी आता है कि यदि किसी को सर्वाइकल कैंसर हो जाए तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर हम समय समय पर इसको डायग्नोस ना करें और नियमित रूप से दवाएं ना लें।
0: उसको डायग्नोस करने के लिए पैप स्मियर नाम की जांच होती है, वो लगातार हर साल जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिला है उनको कराते रहनी चाहिए। बहुत ही सस्ते दर पर सरकारी अस्पतालों में भी होती है, निशुल्क होती है। दूसरा ये है कि अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसमें फिर अगर इनिशियल स्टेज में डायग्नोसिस हो जाती है सर्वाइकल कैंसर की, तब तो इसका इलाज बहुत आसानी से संभव हो जाता है। लेकिन अगर लेट स्टेज में ये कैंसर चला जाए तो फिर गर्भाशय को निकालने तक की नौबत आ सकती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश कुमार शर्मा, सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी वैक्सीन के बारे में जानकारी देने के लिए। और श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी इस जानकारी का लाभ उठाया होगा। आइए अब एक बार लाभ उठाते हैं मनोरंजन का। जी हाँ, आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का युगल स्वर। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है जीने की राह।

0: The all-new Nissan Gravide अब CNG में
1: Twin Cylinder Technology के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस 24 किलोमीटर पर kg की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Gravide CNG के साथ 7-seater जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित
0: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं शर्तें लागू
2: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी मोबाइल नंबर 8477008200
3: श्रोताओं उत्तराखंड की लोक संस्कृति लोक भाषा लोक कला और पहाड़ की जीवन शैली को देश और दुनिया तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड ने जो केवल सूचना और मनोरंजन का माध्यम नहीं बना बल्कि उत्तराखंड की पहचान और विरासत का आईना भी रहा आज दूरदर्शन केंद्र देहरादून का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर हमारे साथ हैं श्री अनिल कुमार भारती कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में आपका बहुत बहुत स्वागत है
4: धन्यवाद भारती जी
3: आज दूरदर्शन का 26वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इस स्थापना दिवस को
4: जी ये एक स्थापना दिवस ही नहीं बल्कि हमारी 26 वर्षों की एक गौरवशाली यात्रा का उत्सव है जिसमें दूरदर्शन देहरादून ने उत्तराखंड की संस्कृति लोक भाषाओं लोक कलाओं साहित्य संगीत और यहाँ के जनजीवन को देश दुनिया तक पहुँचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है 12 अगस्त 2001 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त एक भवन में जो कि तपोवन देहरादून में है वहाँ दूरदर्शन केंद्र ने अपना कार्य आरंभ किया और हमने आधा घंटे के ट्रांसमिशन से कार्य आरंभ किया था और वो भी सप्ताह में एक बार लेकिन उसके बाद फिर 1 घंटे का जो कार्यक्रम है वो टेरिस्ट्रियल मोड में 5 बजे से 7 बजे तक फिर 2 घंटे का जो प्रसारण होता था सोमवार से शुक्रवार तक और आधा घंटे का शनिवार और रविवार को उसके बाद 9 मार्च 2019 में दूरदर्शन केंद्र देहरादून द्वारा टेस्ट ट्रांसमिशन आरंभ किए गए 2 बजे से 5 बजे तक और कुल 6 घंटे का हमारा ट्रांसमिशन हुआ करता था 1 अप्रैल 2020 से DD उत्तराखंड ने 24/7 एक चैनल के रूप में कार्य आरंभ किया है यहाँ पर ये उल्लेख करना जरूरी है कि दूरदर्शन ने हमेशा सूचना शिक्षा और मनोरंजन के साथ सामाजिक सरोकारों को भी प्राथमिकता दी है महिला सशक्तिकरण युवाओं के कार्यक्रम कृषि स्वास्थ्य पर्यावरण शिक्षा पर्यटन जैसे अनेक विषयों को जन जन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी रही है और आगे भी रहेगी तो यदि हम अपने कार्यक्रमों का उल्लेख करें तो हमारे मेहमान मंजिल उड़ान साहित्य की साहित्य यात्रा शास्त्रीय नृत्य हैं और अन्य विधाएं हैं नृत्य की इसके अलावा रोजगार समाचार गांव दर्शन मेरू मुल्क हमारी माटी पानी अनुभव इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रसारण होता है हेलो डॉक्टर जो प्रत्येक सोमवार को 4 बजे से 5 बजे तक होता है जिसमें देश भर से लोग जुड़ते हैं संजीवनी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारी जो अन्य विधाएं हैं एलोपैथी के अलावा तो उसमें आयुष पद्धति को लेकर हम कार्यक्रम करते हैं और जीवन शैली में जीवन शैली से जुड़े विभिन्न जो सरोकार हैं उन पर हम चर्चा करते हैं आज मीडिया की जो दुनिया है बहुत तेजी से बदल रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म और नई तकनीक हमारे सामने नई संभावनाएं लेकर आई हैं ऐसे में अपनी जो विश्वसनीयता है और सार्वजनिक सेवा की जो भावना है उसको बनाए रखते हुए हम नई तकनीक और नए माध्यमों को अपना रहे हैं और हम सोशल मीडिया के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं जहाँ तक आज के दिन का प्रश्न है जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपना दिन रात मेहनत करके इस केंद्र को सजाया संवारा है और जो हमारे वर्तमान कार्मिक हैं जिनके कार्यक्रम लोग बहुत उत्साह के साथ देखते हैं और आज जब सूचनाओं की एक भीड़ है ऐसे में हमारी जो सभ्यता है हमारी जो संस्कृति है हमारी जो लोक कलाएं हैं उनको संरक्षित करना उनको संवर्धित करना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि दूरदर्शन केंद्र इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है निभाता रहेगा
3: जी बिल्कुल आपने सही कहा कि चाहे बात लोक कलाकारों की हो स्थानीय प्रतिभाओं की हो लोक बोली या लोक भाषा की हो दूरदर्शन की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है वहीं हम आज के दिन की जब बात करते हैं तो जो हमारी नई पीढ़ी है वो हमारे दूरदर्शन से जुड़े उन कार्यक्रमों तक उनकी पहुंच बने आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर, क्या कहना चाहेंगे युवाओं से, नई पीढ़ी से, हमारे समस्त श्रोताओं से?
4: मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि उनके पास तमाम विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वो दूरदर्शन को भी जरूर देखें जब भी उनको समय मिलता है। हम रील्स के माध्यम से, छोटी छोटी बाइट्स के माध्यम से उन तक पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया में हमारी पहुंच है, हम इंस्टाग्राम में हैं, ट्विटर पे हैं, यूट्यूब में हमारे कार्यक्रम हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हम करते हैं। बम्बई में रहने वाला व्यक्ति OTT वेव्स के माध्यम से हमें देख सकता है। युवाओं से तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपनी बोली भाषा को भी सीखने का प्रयास करें। हमारे ऐसे तमाम कार्यक्रम है, उड़ान और मंजिल ऐसे कार्यक्रम है, कैरियर गाइडेंस के कार्यक्रम है, कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम है, कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यक्रम है। रोजगार सृजन की जहां तक बात है तो हम तमाम स्टार्टअप्स से हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि रोजगार समाचार के माध्यम से जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, जो भी रिक्तियां आ रही हैं, उनकी भी जानकारी हम तमाम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष दिन है और आज हमने एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया है। संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह देहरादून में, जो कि निकट रिस्पना पुल दूरदर्शन केंद्र देहरादून, यहाँ पर स्थित है, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और हाँ, एक विशेष प्रस्तुति इसमें होगी, हिल यात्रा, जो कि पिथौरागढ़ के कलाकार यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। 5 बजे से और 8 बजे तक ये कार्यक्रम होगा और आप उत्तराखंड की लोक संस्कृति का आनंद ले सकते हैं। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्री अनिल कुमार भारती जी, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड। और श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है कि आज साय 5 बजे संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड का 26वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आप सभी सादर आमंत्रित है। साथ ही हम आमंत्रित कर रहे हैं अपने श्रोताओं से कार्यक्रम के संबंध में फीडबैक। जी हाँ, और इसके लिए आपको नोट करना है हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून। पिन 24800001। मेल आईडी है namaskardehradun@gmail.com। बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7088000731। श्रोताओं, इन तीनों माध्यमों से आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें मालूम है कि आप इंतजार कर रहे हैं कार्यक्रम में एक और गीत का, तो आइए सुनते हैं आशा भोसले का गाया ये गीत। आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।
5: पलट मेरी जान,

श्रोताओं, आशा भोसले के गाए फिल्म आन मिलो सजना के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नमस्कार देहरादून के आज के अंक को संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार देहरादून।

ये था सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बजे आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत।

ये थे मन्ना डे महेंद्र कपूर और साथ ही फिल्म का नाम था शोर। गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, जीवन चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम। लेकिन श्रोताओं, जो जीवन में चलते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। आप भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले होंगे, तो चलिए हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम है शागिर्द। शब्द हैं मजरूह सुल्तानपुरी की ओर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

आप आए बाहर आई, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, शब्द थे आनंद बख्शी की और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, सदाबहार फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं मजरूह के शब्द, आर डी बर्मन का संगीत, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम प्यार का मौसम।

0: अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

दृष्टि बरबर नहीं। श्रोताओं, सुबह के 9:30 हुए हैं। सदाबहार फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है सेहरा। गीतकार है हसरत जयपुरी और संगीतकार रामलाल।

श्योतम, बरसात का मौसम चल रहा है जो बेहद ही उपयुक्त है वृक्षारोपण के लिए, तो क्यों न इस बरसात के मौसम में हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और धरती को हरा भरा बनाएं। सुनते हैं कार्यक्रम का ही अगला गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म का नाम बातों बातों में। गीत को संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

ये स्वर था आशा भोसले का, फिल्म का नाम था सावन की घटा। एस एच बिहारी के शब्दों को संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने। श्रोताओं, इसी के साथ सदाबहार फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के

0: बजे हैं, बजकर 45 मिनट हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम सेहत के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर अर्चना से कीर्ति जखमोला की बातचीत। विषय है बरसात के मौसम में बच्चों में होने वाली बीमारियां। आइए सुनते हैं सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत ये बातचीत।
1: बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली और ताजगी लेकर तो आता है, लेकिन यही मौसम बच्चों में कई तरह के संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। ऐसे में यदि समय रहते सही जानकारी और सावधानियां अपनाई जाएं, तो बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ रखा जा सकता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना जी। डॉक्टर साहिबा, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मुझे यहाँ पे अवसर दिया जा रहा है, इसी के लिए आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले ये बताइए कि बरसात का मौसम बच्चों के लिए अधिक संवेदनशील क्यों माना जाता है?
2: देखिए, बरसात के मौसम में हम सब देखते हैं कि बच्चे अक्सर ज्यादा बीमार होते हैं। बरसात के मौसम में आप देखिए, गर्मी ज्यादा है मॉनसून में, और ह्यूमिडिटी यानी कि जो हवा में आर्द्रता होती है वो भी ज्यादा है।
1: जी,
2: तो ये दोनों चीजें ज्यादा होने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं यानी कि जो कीटाणु होते हैं, वो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। और इस मौसम में बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं, टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर नीचे होने से, कभी सर्दी हो गई एकदम से बारिश होके, कभी गर्मी हो गई, उससे वो कम हो जाती है। बीमारियां ज्यादा होती है तो संवेदनशील इसीलिए माना जाता है।
1: जी डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि इस मौसम में बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां सबसे अधिक देखने को मिलती हैं?
2: देखिए, इस मौसम में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, उन्हें हम मोटा मोटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकेंगे।
1: जी,
2: एक होती है जो मच्छरों के वजह से होती हैं, उन्हें हम जनरली वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, जिनमें होती हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया।
1: जी,
2: दूसरी बीमारी की जो कैटेगरी है वो है हमारी वाटर बॉर्न डिजीजेस, यानी कि जो दूषित पानी से, दूषित खाने से हो रही है, उसमें आ गई हैं आपकी टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए जो पीलिया होता है,
1: जी,
2: और जो जनरली गैस्ट्रोएंट्राइटिस हम कहते हैं यानी कि जो दस्त और उल्टियां होने लगती है।
1: जी,
2: तीसरी जो होती है कैटेगरी बीमारियों की, वो होती है आपकी रेस्पिरेटरी यानी कि जो खांसने से, छींकने से फैल रही हैं, खांसी जुकाम बुखार वाली। इसके अलावा भी होता है जैसे कि स्किन के, त्वचा के रोग, फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं बारिशों के मौसम में। और क्योंकि मैं बच्चों में एलर्जीज के केसेस ज्यादा देखती हूँ, आई एम एन एलर्जी स्पेशलिस्ट, तो उसमें कई बच्चों में जो एस्थमा के जो बच्चे होते हैं उनमें भी मॉनसून में हम देखते हैं कि उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं।
1: जी डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि बरसात में सबसे पहले किन लक्षणों को देखकर माता पिता को सतर्क हो जाना चाहिए?
2: देखिए, बरसात के दिनों में जनरली लक्षण वही रहते हैं, तेज बुखार, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, शरीर पे कोई लाल चकत्ते या रैशेज जिसे हम कहते हैं, ऐसा कुछ आना, यही लक्षण जनरली होते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, क्या हर बुखार या सर्दी सामान्य होती है या कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें हमें गंभीरता से लेना चाहिए?
2: हाँ जी, बिल्कुल होते हैं, हम उन्हें डेंजर साइंस कहते हैं। और ज्यादातर पेरेंट्स को, जो छोटे बच्चे के माता पिता हैं, उन्हें समझा कर भी भेजते हैं कि ऐसे लक्षण कभी भी नजर आए तो आपको फौरन हॉस्पिटल लेके जाना है। अब वो क्या लक्षण होते हैं गंभीरता से लेने वाले, कभी भी ऐसा लगे कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, खाना पीना छोड़ दिया, स्पेशली पानी नहीं पी रहा है, या फिर ऐसा हो कि बच्चा सुसु नहीं कर रहा है, बहुत घंटे हो गए हैं, 8-10 घंटे हो गए हैं, यूरिन नहीं पास कर रहा है
1: जी,
2: या फिर बच्चा बहुत सुस्त हो गया है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसको हम लेथार्जिक कहते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, चुप ही नहीं हो रहा है
1: जी,
2: और सांस तेज चल रही है या पसलियां चल रही हैं, ये हैं जिनको हमें एकदम गंभीरता से लेना चाहिए और फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
1: जी, तो डॉक्टर साहिबा, बरसात के दौरान बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे कि अभी आपने बात भी की थी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखने के लिए दैनिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए?
2: देखिए, दैनिक दिनचर्या हमेशा के जैसी ही, जो हर मौसम में हम कहते हैं रखनी चाहिए, कि बच्चा समय से उठे, समय से सोए, नींद 9 से 12 घंटे की पूरी ले, घर का बना हुआ ताजा भोजन खाए, फल सब्जियों का सेवन भरपूर मात्रा में रखे, बाहर का खाना नहीं खाए, और पानी सिर्फ अपना घर का ही पिए,
1: जी,
2: उबला हुआ हो या फिल्टर से आरोप लगा हुआ है घर में तो वो वाला पानी ले।
1: जी, तो डॉक्टर साहिबा, बरसात में बाहर मिलने वाले खाद्य पदार्थ बच्चों के लिए कितने सुरक्षित हैं?
2: मैं तो कहूंगी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बाहर का खाना तो नहीं ही खाना चाहिए। आजकल बच्चों में मैंने देखा है बहुत ही ज्यादा ये चाउमीन, बर्गर, ये सारी चीजें खाने का बहुत ही ज्यादा है कि खाना ही खाना है। कोई कोई घरों में तो हफ्ते में 2-2, 3-3 बार बच्चे खा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इससे बहुत जल्दी पेट खराब होता है।
1: जैसे कि भी आपने बताया कि डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों आजकल बहुत फैल रही है बरसात में, तो इनसे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, इनसे सुरक्षा कैसे की जाए?
2: हाँ, इनसे सुरक्षा बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जैसे हमेशा बताया जाता है अपने घरों के आसपास हमें पानी नहीं इकट्ठा होने देना है घरों में या घरों के आसपास। अब बच्चों को स्कूल भेजना है तो खेलने भेजना है तो हम कैसे बचाएं? उसका सबसे सिंपल तरीका है कि बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं, पूरी बाजू का टी शर्ट या शर्ट पहनाएं, नीचे पूरा पजामा पैंट पहनाया जाए, नीचे सॉक्स जरूर पहनाएं या शूज पहनाएं चप्पलों की जगह, तभी खेलने जाएं या स्कूल जाएं। आजकल तो बहुत तरह के रोल ऑन्स कह दीजिए या लगाने के स्प्रेज भी आते हैं जो केमिकल फ्री भी होते हैं, ऑयल्स होते हैं उनमें, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों से मच्छर दूर रहेंगे थोड़ी देर के लिए, तो एटलीस्ट एक दो घंटा तो डेफिनेटली उनका असर रहता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहिबा, जैसे बरसात में बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे कि हाथ धोना, नाखून साफ रखना, गीले कपड़े तुरंत बदलना, कितना महत्वपूर्ण है?
2: देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो मैंने कैटेगरी आपको बताई थी कि दूषित पानी से हो रहा है, दूषित खाने से, तो वही तरह से जो कीटाणु है गंदे हाथों से मुंह में चले जाएंगे। अगर बच्चों ने हाथ नहीं धोए तो उनके नाखून बड़े हुए हैं तो उनमें भी कीटाणु भरे रहेंगे, वो खाएंगे उनको अंदर जाएंगे।
1: जी,
2: अगर बच्चे गीले रहते हैं, बारिश में गीले होके आए हैं, तो ठंडा हो जाता है शरीर, फिर से वही रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उस वक्त कम हो जाती है और बीमारियां पकड़ लेती हैं।
1: जी,
2: तो ये चीजों का तो हमें बहुत ध्यान रखना है।
1: जी, माता पिता ऐसी कौन सी सामान्य गलतियां कर बैठते हैं जिनसे कि बच्चों की बीमारी बढ़ सकती है?
2: मेरे हिसाब से तो बस यही है कि समय पर डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, ये सोचना कि सामान्य है, हर बीमारी सामान्य नहीं होती है।
1: जी,
2: दूसरा, बिना किसी डॉक्टर के बताए केमिस्ट से अपने आप से दवाइयां दिलाना,
1: जी,
2: खास करके एंटीबायोटिक दिलाना, और
1: जी,
2: बार बार बाहर का खाना बच्चों की जिद मान के खिलाना, ये भी पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी बनती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण को लेकर भी कोई विशेष सावधानी रखनी चाहिए?
2: हाँ जी, बिल्कुल। कुछ टीके हमारे पास ऐसे उपलब्ध हैं जिनसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, सबसे तो नहीं पर हाँ, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए जो मैंने पीलिया बताया था,
1: जी,
2: इन दोनों के लिए टीके उपलब्ध हैं। उसके अलावा इन्फ्लुएंजा करके बीमारी होती है, रेस्पिरेटरी बोला था, जो खांसने से छींकने से फैलती है, जैसे तेज बुखार खांसी होती है, इसका भी एनुअल यानी कि हर साल टीकाकरण होता है 5 साल तक के बच्चों में।
1: जी,
2: तो ये जो टीके हैं ये बच्चों को इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं, तो ये हमें लगवाने चाहिए अपने बच्चों को।
1: जी डॉक्टर साहिबा, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले पोलियो अभियान चला था, तो कई बच्चे ऐसे थे जिन्हें बुखार था या वो पहले दवा पी चुके थे, उनके पेरेंट्स में यही कंफ्यूजन हो रहा था कि बच्चों को बुखार की स्थिति में या जो अभी कुछ दिनों पहले ही दवाई पिलाई है तो दोबारे इसे दे सकते हैं या नहीं, ये उनके मन में कंफ्यूजन था, तो आप क्या कहना चाहेंगी?
2: देखिए, ये जो पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है ये आपके जो रूटीन जो हम बच्चों को टीके लगा रहे हैं उनसे अलग है। मतलब ये कि जो आप बच्चों को रेगुलर टीकाकरण करवा रहे हैं उसके अलावा भी जब भी कभी सरकार पल्स पोलियो प्रोग्राम करती है तो बच्चों को पोलियो की खुराक पिलवानी है। छोटी मोटी कोई हल्की फुल्की बीमारियां हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पोलियो की खुराक पिलवानी है। बच्चा अगर ज्यादा बीमार है तो आप पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, उसके बाद पिलवा ले।
1: जी, बहुत ही अच्छी सलाह आपने दी। अच्छा डॉक्टर साहिब, ये बताइए कि बरसात का मौसम है तो बच्चों को उल्टी दस्त तो हो ही जाता है, तो उल्टी दस्त या तेज बुखार अगर बच्चों को हो जाए तो माता पिता घर पर सबसे पहले क्या करें और कब तुरंत डॉक्टर के पास जाया जाए?
2: देखिए, उल्टी दस्त आजकल काफी चल रहे हैं।
1: जी,
2: तो एक चीज जो पेरेंट्स अपने आप से घर पर कर सकते हैं वो है ORS। ORS का घोल बहुत जरूरी है। जहां बच्चों को दस्त शुरू होते हैं ORS तो जरूर पिलाना घर पे शुरू कर दीजिए।
1: जी,
2: दिन में एक दो बार हो रहा है, दो तीन बार हो रहा है तो अलग बात है, पर अगर इससे ज्यादा अगर हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर के पास सलाह लेने जरूर जाना चाहिए। उल्टियां हो रही है, नहीं रुक रही है तो भी आपको दवा लेने जाना ही पड़ेगा, बट ORS घर पे दे सकते हैं। खाना बिल्कुल हल्का सिंपल खाना खिलाना है, बिना तला भुना खाना जो होता है वो ही देना चाहिए। ऐसे में खिचड़ी, दही, केला, ये चीजें अच्छी रहती हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहिबा, अंत में आप माता पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या देना चाहेंगी?
2: माता पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह, अभी मॉनसून के हिसाब से हम जो बातें कर रहे हैं, एक तो ये कि बच्चों को मच्छरों से बचाना है, मच्छरों से बचाव बहुत बहुत जरूरी है।
1: जी,
2: और साफ सुथरा खाना, घर का बना हुआ खाना ही खिलाइए, बाहर का पानी खाना बिल्कुल नहीं देना।
1: जी,
2: हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे मॉनसून में।
1: जी डॉक्टर साहिबा, आपने बरसात के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य और उनसे जुड़ी सावधानियों के बारे में हमसे जरूरी जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की अच्छी सेहत हमारी छोटी छोटी सावधानियों पर भी निर्भर करती है। स्वच्छता, संतुलित आहार, समय समय पर उपचार और डॉक्टर की सलाह का पालन करके हम बरसात के मौसम में भी अपने बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अर्चना से कीर्ति जखमोला की बातचीत। बातचीत का विषय था बरसात के मौसम में बच्चों में होने वाली बीमारियां। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: अब हमारे श्रोता जहां हम भी वहां, आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: हम आपको याद दिला दें, दोपहर 12:30 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा जनानों का वास्ता, जिसके अंतर्गत बहनें सुनेंगी श्रीमती कुसुम नैथानी की गढ़वाली कहानी। युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आज श्रोता सुनेंगे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम न्याय द्वार। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7:00 सुनिएगा श्री कृष्णानंद डिमरी से भेंट वार्ता, जिसका विषय रहेगा सहकारिता से ग्रामीण विकास। लोक संगीत के कार्यक्रम में सोनम के गाए गढ़वाली लोकगीत आप सुन सकते हैं 10:35 पर। श्रोताओं की पसंद पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश होगा दिन में 11:00। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत हिमांशु दरमोड़ा की गाई गजलें प्रसारित की जाएंगी। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अरिंदम चक्रवर्ती का सितार वादन सुनवाया जाएगा। दोपहर 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। रात्रि 8:00 संसद समीक्षा, रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है, रात्रि 10:00 संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम एक कलाकार होगा शाम 4:30 पर। रात्रि 8:15 पर श्रोता सुन सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अंग्रेजी वार्ता, वार्ताकार होंगे मिस्टर विश्वास शर्मा। दिन में 1:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10:00 को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
4: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप पंकज सनवाल खुलबे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को किया गया रवाना। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, सेजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि के सभी युवा साथियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं, पुनर्निर्माण व आपदा राहत के लिए 74 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी। उत्तराखंड सरकार जल्द मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 2026 शुरू करेगी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलेगी निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित खेती और आधुनिक तकनीक पर जोर दिया। कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन आज से 18 अगस्त तक जिले में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाएगा। चमोली की नीति घाटी में भारी बारिश के कारण तमक नाले में बैली ब्रिज बहने से बाधित यातायात रिकॉर्ड समय में बहाल। 97 दिनों में रूस में फंसे पिथौरागढ़ के दो भाई सुरक्षित भारत लौटे। मुख्यमंत्री धामी ने फोन पर जाना कुशलक्षेम। UJVN लिमिटेड में अधिकारियों से लेकर कार्मिकों तक की हुई प्रोन्नतियां। समिति में अध्यक्ष आनंद वर्धन ने सभी को बधाई व शुभकामनाएं दी। देहरादून की 10 साल की धारिका पंत ने 24वीं उत्तराखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में शॉटगन ट्रैप महिला सब यूथ वर्ग का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:02 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हेलो नमस्ते आदाब मेरे दोस्तों, मैं हूं आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। क्या होता है फर्स्ट एड, जानिए फर्स्ट एड से जुड़ी पूरी जानकारी इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा किसी भी इमरजेंसी जैसे दुर्घटना की स्थिति में समस्या की पहचान और सहायता प्रदान करने का पहला कदम है। फर्स्ट एड में सामान्य और जीवन को बचाने वाली तकनीक शामिल होती है। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड को लोग कम से कम इक्विपमेंट और बिना मेडिकल अनुभव के ही प्रदान कर सकते हैं। यह किसी मेडिकल उपचार मेडिकल ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं है और ना ही डॉक्टर की सलाह और ट्रीटमेंट की जगह ले सकती है। इसमें आपको जब तक पीड़ित व्यक्ति को मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाता है तब तक सामान्य प्रक्रियाओं और कॉमन सेंस का प्रयोग करके स्थिर रखना होता है ताकि उसकी जान बच सके। फर्स्ट एड न मिलने पर व्यक्ति की लाइफ कैसे प्रभावित होती है तो सुनिए। किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना के बाद व्यक्ति को सही समय पर फर्स्ट एड मिलना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एड न मिलने से प्रभावित व्यक्ति के जीवन पर असर होता है। सही समय पर व्यक्ति को फर्स्ट एड मिलने से व्यक्ति को ठीक होने में कम समय लगता है। हर दुर्घटना बीमारी या चोट लगने पर तुरंत हॉस्पिटल जाना संभव नहीं होता है। ऐसे में अगर आपको तभी फर्स्ट एड मिल जाता है तो आपकी आधी परेशानी दूर हो सकती है। जैसे मान लो किसी बच्चे को कोहनी में नील आया, अगर कोई व्यक्ति इसके प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड के बारे में जानता है जैसे आइस पैक का प्रयोग या सही बैंडेज लगाना आदि, तो उसकी समस्या काफी हद तक ठीक हो सकती है। कई गंभीर स्थितियों में भी रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाना मुश्किल होता है, तब तक फर्स्ट एड बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर उसे फर्स्ट एड प्रदान कर दिया जाए तो उसकी जान बचा ली जा सकती है और जटिलताओं को रोका जा सकता है। फर्स्ट एड का पहला लक्ष्य होता है उस जीवन का संरक्षण करना जिसे आपातकालीन जरूरत है ताकि उसे खतरे से बचाया जा सके। फर्स्ट एड का दूसरा लक्ष्य है प्रभावित व्यक्ति को किसी भी जोखिम से बचाना। चोट या किसी भी अनदेखे मामले के जटिल बनाने बचने के लिए यह जरूरी है। प्राथमिक चिकित्सा तभी दी जाती है ताकि प्रभावित व्यक्ति की रिकवरी जल्दी हो सके। आपके

द्वारा पूरे किए गए कुछ स्टेप्स रिकवरी के संभावना को बढ़ा सकती है। ये किसी के जीवन को बचाने की कुंजी है। कोई घटना होने के तुरंत बाद कार्रवाई करने से जोखिम कम हो सकता है। फर्स्ट एड देने वाले व्यक्ति खुद शांत रहना बेहद जरूरी है ताकि वो प्रभावित व्यक्ति और उनके प्रियजनों को तनाव के स्तर को कम कर सके। इससे न केवल आप स्थिति को कंट्रोल कर पाएंगे बल्कि आपके सही निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी। फर्स्ट एड के साथ ही तुरंत मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ती है। इस बात को सुनिश्चित करें कि मेडिकल प्रोफेशनल तुरंत आए और स्थिति को संभाले। इससे पहले कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल आए, कंडीशन को स्थिर करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा जरूरी है। प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड की प्रक्रिया को इस तरह से पूरा किया जाता है। कॉन्शियसनेस के लिए जांच, एयरवेज खोले यानी सांस लेने की जांच करें, यदि आवश्यक हो तो CPR करें, सर्कुलेशन की जांच करें, ब्लीडिंग की जांच करें, अधिक रक्तस्राव को नियंत्रित करें। इमरजेंसी फर्स्ट एड में बेसिक फर्स्ट एड शामिल है जो जीवन के लिए खतरा हो सकती है। इसमें फोकस एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन इमरजेंसी पर और इसकी रोकथाम पर रहता है। स्टैंडर्ड फर्स्ट एड सबसे सामान्य तरीका है। इसमें इमरजेंसी फर्स्ट एड की सभी चीजें जैसे घाव की देखभाल, स्थिर गर्दन और रीढ़ की चोटों का ख्याल और बहुत भी कुछ कवर किया गया है। त्वचा का कोई हिस्सा पर खरोच आ गया हो तो, त्वचा हल्की से कट गई है तो उस भाग पर दबाव डालें। दबाव अपनी उंगलियों से सीधा ना डालें, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। आप उसे सैनिटाइजर, डेटॉल या गर्म पानी से क्लीन करें, फिर पट्टी बांधे या बैंडेड लगाए। अब ऊपर से अपनी उंगलियों से दबाए। ध्यान रहे कि पट्टी टाइट से बांधी हो। किसी एक्सीडेंट या चोट लगने पर अधिक ब्लीडिंग हो सकती है। अगर किसी का खून बह रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण है इस ब्लीडिंग को रोकना ताकि पीड़ित व्यक्ति को कोई नुकसान न हो। जब तक मेडिकल हेल्प न मिले तब तक रोगी का ध्यान रखे। जब तक ब्लीडिंग कम न हो जाए या रुक न जाए, घाव पर से दबाव न हटाए। अगर रोगी बेहोश होने लगा या पीला पड़ जाए तो इसका कारण शरीर में अधिक मात्रा में खून बह जाना है। ऐसे में तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत है। कई बार चोट के बाद रोगी शॉक में चला जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस प्रक्रिया को दोहराए। रोगी को आराम से लिटाए। हृदय और मस्तिष्क में एक स्थिर रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन को सुनिश्चित करने के लिए रोगी के पैर धड़ से ऊपर रखें। ध्यान रहे कि रोगी को पर्याप्त हवा मिलनी चाहिए। अगर रोगी को अधिक ब्लीडिंग हो रही है तो घाव को न धोए। धोने से घाव को ठीक होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। दिल का दौरा पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक और डरावना हो सकता है, इसीलिए जब तक मदद नहीं मिलती फर्स्ट एड रोगी की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपको लगता है कि किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है तो आप उसकी सुरक्षा के लिए जो भी मैं आप कह रहा हूँ इस लम्हे प्रोग्राम में, उसे ध्यान से सुने और फॉलो कीजिए। रोगी को नीचे बिठाए और उसे आराम महसूस कराए। रोगी के कपड़े ढीले कर दे। यदि उसने टाई पहनी है तो उसे निकाल दे। सुनिश्चित करे कि रोगी को कोई शारीरिक परेशानी न हो। रोगी से पूछे कि क्या वह किसी भी हार्ट कंडीशन के लिए दवा ले रहे हैं या नहीं। यदि हाँ तो सुनिश्चित करें कि मरीज को जल्द से जल्द दवा मिल जाए। यदि व्यक्ति बेहोश हो जाता है, आपातकालीन सहायता बुलाए और CPR शुरू करें। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन जीवन को बचाने वाला फर्स्ट एड मेथड है, जिसका प्रयोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि रोगी के शरीर में स्टडी ब्लड फ्लो है, जो रोगी के जीवन को बचाने के लिए जरूरी है। जब रोगी सांस लेना बंद कर देता है, यदि उसके दिल ब्लड पंप करना बंद कर देता है तो दिमाग के लिए कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे परमानेंट ब्रेन डैमेज या मृत्यु भी हो सकती है। CPR एक प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड प्रक्रिया है। एयरवेज शरीर में ऑक्सीजन को आने देते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेहोश है तो अधिक संभावना है कि उसका एयरवेज अवरुद्ध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दौरान जीभ वापस मुंह से आ सकती है और गले के अवरुद्ध कर सकती है। दैट मीन्स द टंग विल ब्लॉक द थ्रोट। इस समस्या को ठीक करने के लिए आप किसी को रिकवरी पोजीशन में रखकर CPR की तैयारी में एयरवे साफ होना चाहिए।
फर्स्ट एड के दौरान कर्मचारियों को खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे अपने हाथों और अन्य स्किन सरफेस को अच्छे तरह से धो लें और स्टर

कर ले। ग्लव्स, मास्क और अन्य प्रोटेक्टिव आईवेयर का प्रयोग करें। प्रोटेक्टिव सूट, गाउन और एप्रोन को पहने। दिस इज फॉर ऑल द पीपल हु आर प्रोफेशनली इनटू फर्स्ट एड। एक सफल फर्स्ट एड की कुंजी हमेशा मानव शरीर के बारे में कंपैशन और बुनियादी ज्ञान होना है। आपको बिना किसी झिझक के प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड के माध्यम से पेशेंट को सही देखभाल करना आना चाहिए। ध्यान रहे कि आप इन विधियों का सही तरीके से प्रयोग करके किसी की जान बचा सकते हैं। विद दिस इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट एड, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ इन लम्हे प्रोग्राम टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे थे। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:12 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत, लेकिन उससे पहले ये जरूरी संदेश।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: आइए सुनते हैं उदित नारायण को। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम शर्वण।

जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है ताल, गीत है आनंद बख्शी का, संगीत बद्ध किया है ए आर रहमान ने।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

यह है फिल्म संगीत का अंतिम गीत, आवाज़ें हैं लकी अली और सुनीति चौहान की। फिल्म का नाम है सुर, शब्द है निदा फाजली की और संगीत दिया है MM करीम ने।

0: श्रोतम, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि के सभी युवा साथियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की प्रगति की सबसे बड़ी ऊर्जा होती है। हमारे युवाओं की प्रतिभा, मेहनत, नवाचार और दृढ़ संकल्प ही विकसित व सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव है। हमारी सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए निरंतर नए अवसर उपलब्ध करा रही है। स्वरोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन, कौशल विकास, स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती व्यवस्था से महत्वपूर्ण कार्यों के

0: माध्यम से युवाओं के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड का हर युवा अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य के अनुरूप आगे बढ़े और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल 13 जनपद 13 संस्कृत ग्राम पहल के एक वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर संस्कृत शिक्षा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिव दीपक कुमार ने नई दिल्ली में थाईलैंड की राजदूत चावनार थोंग सुमफन से मुलाकात की। इस दौरान संस्कृत शिक्षा, रामायण परंपरा और सांस्कृतिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में थाईलैंड की पारंपरिक रामायण प्रस्तुतियों और उत्तराखंड की कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भाषाओं में होने वाली रामलीला के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। सचिव ने औपचारिक समझौते से पहले उत्तराखंड के संस्कृत संस्थानों और थाईलैंड के विश्वविद्यालयों के संस्कृत शिक्षकों व विद्वानों के बीच ऑनलाइन शैक्षणिक संवाद शुरू करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही संस्कृत, पाली और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े संसाधनों में संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की संभावनाओं का अध्ययन करने की बात कही। भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पौड़ी गढ़वाल जिले के पैठाणी में तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा, भारत की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा हमारे क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमिट गाथा का प्रतीक है। तिरंगा केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है और हम सभी को अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने सम्मान और संकल्प को अभिव्यक्त करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सेब और कीवी की हाई डेंसिटी खेती को बढ़ावा देने के साथ फल उत्पादन का क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके लिए सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट समेत अन्य फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित खेती, आधुनिक नर्सरियों और बेहतर भंडारण के साथ ही फल उत्पादन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में जोर दिया जा रहा है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कल सचिवालय में फल उत्पादन से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के लिए जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिलों में वर्तमान में उगाई जा रही फसलों और उनके उत्पादन की स्थिति की जानकारी ली और जिलाधिकारियों को किसानों से नियमित फीडबैक लेकर उनकी समस्याओं और सुझावों को योजनाओं में शामिल करने के निर्देश दिए। UJVN लिमिटेड में अधिशासी निदेशक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक और अन्य पदों पर अधिकारियों व कार्मिकों को प्रोन्नति दी गई है। ये निर्णय मुख्य सचिव और UJVN लिमिटेड के अध्यक्ष आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में लिया गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और दक्षता के साथ करते हुए अधिकारी व कार्मिक UJVN लिमिटेड को ऊर्जा क्षेत्र में आगे ले जाने में योगदान देंगे। खिलौनों व गुब्बारों से शुरू हुआ ये सफर अब राज चैंपियन बनने तक पहुंच गया है। देहरादून की रहने वाली 10 साल की धारिका पंत ने 24वीं उत्तराखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में शॉटगन ट्रैप महिला सब यूथ वर्ग का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। परिवार ने बताया कि धारिका ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह जीत हासिल की है, जिस पर पूरे परिवार को गर्व है। उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता के चलते मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के टिहरी और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून और हरिद्वार सहित कई मैदानी इलाकों में भी तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। देहरादून में वर्तमान में मौसम साफ है, लेकिन दोपहर बाद गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक मानसून की रफ्तार और तेज होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:35 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सोनम के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: FM 107.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:41 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत सोनम की गाय गढ़वाली लोकगीत।

कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सोनम के गाए गढ़वाली लोकगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 11 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे खास शो व्हाट्सएप फरमाइश में। मैं हूं आपके होस्ट सुहासिनी। आज फिर बजाएंगे आपके मनपसंद गीत। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। बस साथ में लिखिए फिल्म का नाम, गीत के बोल और साथ ही अपना नाम व पता। और इसी के साथ आज के पहले गीत की फरमाइश हम

लिंक भेजे हैं कर्नाटका चिन्ना तिरुपति से प्रकाश श्यामला ने, ग्राम पंचोनिया उत्तर प्रदेश से श्रोता है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया सार्थक और अलौकिक, सीमंदर पार्क वीरमगांव से अजीत भावसार प्रमिला भावेश और सनी भावसार, साथी फरमाइश लिंक भेजी है झज्जर हरियाणा से बिट्टू रीटा रजत और मयंक भाटिया ने, कमल बालूजा मधु सागर बालूजा अमंग मलिक आकांक्षा मलिक और माही मलिक, मजनू का टीला से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से श्रोता है राजेश सेन सुरेखा शुभम और अक्षय सेन। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता है गजरुनवारा उत्तर प्रदेश से खिलू परवेज इमरान अनास नवाजी शेख दानिश शेख अमन आफरीदी और राधा नामदेव, अजीत कसाना माया देवी ऋतिक आदित्य कसाना लदावनी जिला मुरादाबाद से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है, जयराम खोरवाल सचिन अमन दीपांशु खोरवाल होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म करण अर्जुन से इस गीत की।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जो लिसनर्स हमसे अभी अभी जुड़े हैं, उन्हें बताना चाहेंगे कार्यक्रम चल रहा है व्हाट्सएप फरमाइश, और आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं 7088-000-731 पर। बढ़ते हैं श्रोताओं अगले गीत की फरमाइश की ओर, जो हमें लिख भेजे हैं पानीपत से भावना नरेश, लक्ष्य कोयल और पीयूष साथी डुग्गू ने। धमदा ग्राम सुखरी कला से श्रोता हैं उत्तम सिंह, मोरस, अनिल कुमार, अजीत, आयुष, नंदिनी, अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि। आर्यनगर कोह का भिलाई से श्रोता हैं राघव और हरमन। रघुवीनगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायक और लड्डू। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और किरण ठाकुर। एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाज कुरैशी और अरीबा हबीबा। पटियाली लोड गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। नई बस्ती गंजुंडवारा से श्रोता है मोहम्मद यासीन हाशमी, नगमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। पाकुड़ झारखंड से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। साथ ही फरमाइश करता है महेंद्र मोदी, रविंद्र सिंह और सभी सदस्य ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया से। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंचे हैं श्रोता हैं सुशील, बब्बू डब्बू, राजू, सुभाष, कृष्णा कॉलोनी हांसी से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। कुसुम, रूपा रानी, मुकेश गुप्ता, ऐश बाग लखनऊ से। इलाहाबाद से श्रोता है कांति, कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्रा, संगम बिहार, नई दिल्ली से रणधीर गुप्ता, धीरज गुप्ता, सत्यम, शिवम और सुंदरम। गांव गाला जिला अम्बाला हरियाणा से फरमाइश लिख भेजी है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव। और साथ ही फरमाइश लिख भेजी है शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, रचिता खुराना, राहुल खुराना, केशव रिधान खुराना, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। सल्लार पहलगाम कश्मीर से पीरसदा मिराजुद्दीन, नजामुद्दीन, कैसर उद्दीन। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म वो सात दिन से इस गीत की।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:20 हुए हैं, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। अगले गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है तेलंगाना से कस्तूरी रामदू, बूमा देवी, पृथ्वी और नारायण ने। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से फरमाइश करता है भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरली से नाना लाम से, मीना तेजस, जयलाम से, हर्षिता लाम से। साथ ही फरमाइश करता है सोनाली, आशा नारंग, सुरेश नारंग, सहारनपुर से। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है, श्रोता है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से, अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। भोपालगढ़ राजस्थान से फरमाइश लिख भेजी है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार ने। करतला हैदराबाद तेलंगाना से कानुगुला। और साथ ही फरमाइश लिख भेजी है कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना आशीष, दीपक कुरहाड़े, जिला अमरावती महाराष्ट्र से। जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, मंजू, पूनम, कविता, संजना और सानवी, पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर बिहार से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। और साथ ही फरमाइश लिख भेजी है सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर, टापकी रोड अकोला से। करूला मुरादाबाद से श्रोता हैं अयूब खान, निरम गुड़िया और शोएब खान। साथ ही सिंधौली बरेली से जीशान वारसी। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म चांदनी से इस गीत की।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: कार्यक्रम वर्ष फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। बढ़ते हैं श्रोताओं अगले गीत की फरमाइश की ओर, जो हमें लिख भेजी है नरवेल महाराष्ट्र से PS नभारकर, निर्मला विशाल, नारायण इंगले, सोपान ताड़े और आशीष ने। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है ममता बमारकंडे, संजय और बेबी किट्टू, बड़ा बम चौक, खंडवा, मध्य प्रदेश से। इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। सारिमपुर बक्सर से श्रोता है राज SD अंसारी, खातून अंसारी और इकबाल अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य और परमानंद आर्य। डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी, डॉक्टर सोना मदीपा, दानिश अंसारी, शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रामेश सोमू। नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, गुरु महाराज और नीरेंद्र राजपूत। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। बहारुल हसन सिद्दीकी, आलम सिद्दीकी, शिफान यूसुफ, अनाबिया अलीशा, शकील सिद्दीकी, फहीम मोहम्मद, यासीन अंसारी, थाना 3 मोहल्ले TW वाले इरफान खान और पते खालसा से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु विशाल, लाडी खेड़ा, शालनी टिवानशी, वाणी RB खेड़ा, जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से श्रोता है हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, मनभावन नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदीबाई बागरी। और साथ ही फरमाइश लिख भेजी है श्रोता है राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तानिया, भटिंडा रोड मंडी डब्वाली से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल, तन्वी, अंकित कांगड़ा, एकता कॉलोनी रोहतक से। साथ ही फरमाइश करता है चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता है महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांशलि, दीक्षा वाघमरे और शशांक वाघमरे। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म काली टोपी लाल रुमाल से इस गीत की।

यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर सुबह के 11:33 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, अगला गीत सुनना चाहा है भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल, लखवीर रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल और चटकू मटकू। राजस्थान से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। जलालाबाद वेस्ट से श्रोता हैं सुरेश ककनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, ललन मिश्रा, नूतन, अमन, आराध्या और लल्लू पंडित। नरहन एस्टेट समस्तीपुर से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। साथ ही श्रोता हैं शंकर लाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, राखी, दुर्गेश्वरी, तृप्ति जायसवाल, जिला नांदेड़, येताला, महाराष्ट्र से। छटिया पोखरा डुमराव से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, मोहम्मद समी, महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी, नरेंद्र यादव, दुर्गा कुमारी, सपना, राकेश ताई, उमराज, महेश, उमा, दिनेश, रमेश और प्रवेश उमा। रायगढ़ बिहार से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल्ला हक डावर और सोहन जोशी। खंडवा नाक्षिन रोड संजय कलोनी से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। आशुचुक अश्वनी, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविका, ढींगरा, पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। उत्तम नगर दिल्ली से कमला, बोधराज, भानु प्रकाश और गीतिका। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश और कैलाश। देहरादून से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 11:40 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, बढ़ते हैं अगले गीत की फरमाइश की ओर, जो हमें लिख भेजी है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा ने। साथी फरमाइश लिख भेजी है महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नचानी, भारती नचानी, विनीत, मिथिल, प्रगति, बाबू भाई और भारती देवी ने। साथी फरमाइश लिख भेजी है दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहूजा, आरएस आहूजा, रजत आहूजा, सोनिया आहूजा, तनीषा सीमाद्वार से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। और साथ ही फरमाइश करता है राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत, कौशिकी, युवान, दीपाली वर्मा और आर के राजा, लाल कुर्ती, रुड़की कैंट से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। करताल जिला रंगारेड़ी तेलंगाना से श्रोता हैं कानोगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश। भारत फ्यूचर सिटी हैदराबाद से गोपाल नाई और उमा महेश्वरी। और साथ ही फरमाइश लिख भेजी है श्रोता हैं हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय, रुद्रा और संपूर्ण रामेकर परिवार, राहत गांव कैंप, अमरावती, महाराष्ट्र से। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म मन से इस गीत की।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, बढ़ते हैं अगले गीत की फरमाइश की ओर, जो हमें लिख भेजी है जनेश्वर कुमार अहलूवालिया, बालेश्वर कुमार, राजेश कुमार।

कुमार, डुगु नंदू किट्टू, कुलश्रेष्ठ सारांश वेदांश और चीकू अहलुवालिया ने जिला मुजफ्फरनगर यूपी से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। कस्बा चिलकाना से नदीम अंसारी, आयशा नदीम, अजीम शान, आलिया अंसारी, अरहम अंसारी और साथ ही फरमाइश लिख भेजी है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी तमन्ना भाटिया, स्टेशन रोड जमशेदपुर से। गांव पंढरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री बुरांडे, हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, राहटगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। जलालाबाद शामली यूपी से राशिद मंसूरी, आयन मंसूरी और जिशान मंसूरी। महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब, समीर अंसारी, वारिस अंसारी और अलशिफा अंसारी। जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद नगर से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। लक्सर रोड गांव सुआहेड़ी कस्बा पुरकाजी से मोहम्मद जाबेर, मोहम्मद हुजैफा, शहनवाज, शाहरुख, शोएब, कहकशा और इनका पूरा परिवार। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से फरमाइश लिख भेजी है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, करवी और हिमांश ने। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और इनका पूरा परिवार। गोविंदपुरा अहमदनगर से फरमाइश करता है नासिर शेख, नाजे नासिर, साजिद और शाहिद, शाहिना परवीन, फातिमा, खुशबू, आयसा, मोहम्मद अदीब और मसरूर अली, खालापार मुजफ्फरनगर से। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म रोटी से इस गीत की।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: FM 107.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 11:54 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, बढ़ते हैं अंतिम गीत की फरमाइश की ओर, जो हमें लिख भेजी है तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष, विवेक, आयुषी, मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू और मानस राज ने। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है करीमनगर से लक्ष्मी नारायण, विजय, अभिनय और साई किरण ने। बबलू ठेकेदार, शेख शकीर, शेख वजीर, सोहिल शेख, मोताला बाजार से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। मनभावना, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदीबाई बागरी, झालावाड़, राजस्थान से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। रानीगंज, बंगाल से रवि और इंदर, दिल्ली से ध्वनि और सानवी। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी, फिरोजा मुस्कान, असद भाई, राशिद भाई, सईद भाई मंसूरी, मोहल्ला बारादरी, महमूद खां, रामपुर से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। गांव झगुड़ी, जिला यमुनानगर से रणधीर बांगर, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन, मन कीरत और मनराज, रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान, सदर बाजार, मारवाड़, बिलाड़ा, राजस्थान से। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म रामलखन से इस गीत की।

0: इसी अंतिम गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण

0: प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत, पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन AIPSI के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि AIPSI मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरा हमारे संवाददाता से।
2: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Both the Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha assembled at 11 a.m., Lok Sabha Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests and alleged anomalies in Ayodhya Ram Mandir donations. Mr. Birla said, "Today the country is celebrating International Youth Day and the youth of the country also want discussions on issues concerning them." The Speaker urged the opposition members not to undermine the dignity of Parliament and allow the House to take up question hour, but the opposition were on their feet pressing their demand. However, due to continuous uproar by the opposition members, the Speaker adjourned the House till 2 p.m. Prime Minister Narendra Modi today released the autobiography of former President Ram Nath Kovind titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles. In New Delhi, the autobiography offers a deeply personal account of Mr. Kovind's remarkable life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and eventual service as the 14th

0: President of India. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that Mr. Kovind's autobiography will not only provide insights into his life, personality and contributions, but also serve as a legacy for Indian democracy and society.
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो जो मुश्किलों से मायूस न हो बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा यही से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा
0: Union Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal today underlined that the Tribunal Reforms Bill 2026 marks a transformative shift towards institutionalized, transparent and accountable tribunal governance, placing the National Tribunals Commission at the core of a stronger tribunal ecosystem. Writing an article for an English daily, the minister noted that the bill seeks to strengthen the governance architecture of tribunals without altering their substantive jurisdiction. Mr. Meghwal added that the bill represents the next stage of a broader reform journey aimed at making India's legal and regulatory ecosystem more modern, predictable and effective. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the spirit of Vande Mataram had inspired India's freedom struggle and continues to strengthen the nation's identity today. He said this while addressing the participants of Har Ghar Tiranga bike rally organized by the Culture Ministry, marking 150 years of the national song. The Vice President said that the words of Vande Mataram had ignited patriotism and united people across regions, languages, faiths and backgrounds. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has paid tribute to ISRO's first chairman, Dr. Vikram Sarabhai, on his birth anniversary today. In a social media post, Dr. Singh described Mr. Sarabhai as one of the founding fathers of India's space program. In Himachal Pradesh, four people were killed in an accident while nine others were injured after a Bolero pickup vehicle fell into a deep gorge at Gatlong in Sirmaur district. The condition of two of the injured is reported to be critical. The injured have been referred to the medical college in Nahan for treatment. The police are currently investigating the matter. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% lower in the forenoon session today. The Sensex shed 555 points to 77,599, while the Nifty dropped 177 points to 24,295 when reports last came in. Indian Grandmaster R. Pragananda defeated Javakir Sindrov in a second round match of the Singfield Cup in St. Louis, United States. In his first victory in the tournament, which is the penultimate event of the Grand Chess Tour. And that is the end of this news bulletin.
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है. दोपहर के 12:10 हुए हैं. अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस.
3: ये आकाशवाणी देहरादून है. अब आप पंकज सनवाल खुलवे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का किया विमोचन. अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि के सभी युवा साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उत्तराखंड सरकार ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं, पुनर्निर्माण व आपदा राहत के लिए 74 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी. कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन आज से 18 अगस्त तक जिले में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाएगा. पौड़ी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद व शैक्षिक स्वच्छता के संबंध में जागरूकता रैली का आयोजन. बागेश्वर में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना के तहत 14 से 23 वर्षीय खेल प्रतियोगिता का होगा आयोजन. बालक बालिका दोनों वर्गों में होगी प्रतियोगिता. UJVN लिमिटेड में अधिशासी निर्देशक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक और अन्य पदों पर अधिकारियों व कार्मिकों की हुई प्रोन्नति. हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल जिले के पैथाणी में तिरंगा यात्रा का आयोजन. कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हुए शामिल. पिथौरागढ़ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों और कल तिरंगा रैली के आयोजन को लेकर अपर जिलाधिकारी ने ली बैठक. अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

0: अपर आयुक्त कुमाऊं मंडल ने की एसआईआर की समीक्षा। पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़ने व नोटिसों का संवेदनशीलता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। NS 707A टिहरी घनसाली तिलवाड़ा केदारनाथ मार्ग पर पीपल डांडी क्षेत्र में भारी मात्रा में मलबा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध। प्रदेश में जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 2026। सरकार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग देगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सेब कीवी व ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित खेती और आधुनिक तकनीक पर जोर दिया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:12 हुए हैं। आप सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत अब आप सुनेंगे हिमांशु दरमोड़ा की गाई गजल।

कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हिमांशु दरमोड़ा की गायी गजल। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम जनानों का वास्ता।

जनानुक वास्ता कार्यक्रम में मेरी सभी काकी बोड़ी दीदी भूलियों ते सेवा सौंधी प्रणाम। बहनों मी छो आपक दगड़े ममता बड़ोला। दगड़ियों अपर काम काजक दगड़ी अपर स्वास्थ्य पानी को भी ध्यान रखण। दीदी भूली आजकल घाम पानी खूब होना चेन तो उमस भी बीजा हुई च, कभी शरीर में पसीना होनी च तो कभी हवा लगनी च, तो ये ठंड गर्म में तबीयत ज़्यादा खराब होंगी। जन की मेरी सभी बहनी जन दी छन कि ये भगत पर हमार पावन सौणुक में नचनु छ, हमार उत्तराखंड देव भूमि तो छ। और दगड़ो ये व्रत भोले बाबा को जय कारक दगड़ और भी भक्तिमय हुई छ हमारी पूरी देव भूमि। दगड़ो बसकल भगत पर डाल भ्याल रोल खोला और गाड़ गदरों की ननी जान। दगड़ो हमार मातृशक्ति आजक भगत पर हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अग्नि भाग लेना छन, वो अपर कुटुंबदारी को जिम्मेदारी तो उठाने छन। दगड़ी अपर सभी जिम्मेदारी तो खूब अच्छे से निभाना चन और अपर सपनों तय साकार करना चन। ये पर ही आधारित आप तय घड़े एक माँ एक गढ़ कहानी सुनोला। कहानी को विषय चु मेहनत को मोल और कहानीकार छन डॉक्टर कुसुम रानी नैथानी। बैणी अपर कार्यक्रम में गीत लोकगीत सुनोला और सुनोला कुछ विशेष रविवार। बाकी अपर दीदी भूलूंग दगड़मी अग्नि।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: पता है 2026-27 से केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन का भुगतान SNES स्पर्श प्लेटफॉर्म लाभार्थियों को किया जाना है।
2: अच्छा,
1: अब पेंशन का भुगतान केवल उन्हीं लाभार्थियों को किया जाएगा जिनकी सही सही जानकारी समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
2: तो उसके लिए क्या करना होगा?
1: बताता हूँ, बस आपकी आधार संख्या विभागीय पेंशन पोर्टल पर सही सही दर्ज हो, बैंक खाते में आधार जोड़ने के साथ ही DBT की सुविधा भी चालू हो, जिसके लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी मानक छूटा हो तो तुरंत अपने क्षेत्र के सहायक समाज कल्याण अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 6395221188 पर कॉल करें या हमें ईमेल ID swditsale@gmail.com पर लिखें। समाज कल्याण निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: दगड़ियो अंतर बारक दगड़ी, मेरी सभी दीदी भूली सुने छे सुंदर सी गढ़वल गीत और ये गीता गीतांग छे पूनम सती। बहनों आप सुनता एक गढ़ कहानी, कहानी को विषय छे मेहनत को मोल और कहानीकार छे डॉक्टर कुसुम रानी नैथानी।
4: कहानू को शीर्षक छे मेहनत को मोल। उन तो पहाड़ में दिने शुरुआत रुसड़ में चुल्ले लाखड़ा का धुआं वे की गंध और दाना सैणों का खसड़े आवाज सी होन छे, पर गांव में रोण वाली 34 साल की भाना रोज सुबेर घाम औन से पहली ही बिज जांदी छे। वीन आज भी से उठी की ठंडा पानी मुख हाथ धोन और सीधा गोटे तरफा पैठगी। मोले बास और गोर बाछड़ों का बीच वीन मोल फेर गाड़ी और बल्टी उठेक ते लेंदी गौड़ी पिजाण शुरू करी। वे का बाद भानन गांव का हर लोगों का दगड़ी अपना गोर बाछरा पाती मां पेटे देन। सुबेरा भारी काज निपटे की विन राते बची कोदे बासी रोटी थकली मां रखी और वे का मथी ताजू नोड़ी और लून लगे की खान लगी। विन चुल्ला मां सुख्या लखड़ा सरकेन और कितली मां पानी आदू और चा पत्ती डाली चढ़े दे। भाना का हाथ भले ही पुंगड़ा खलियान का काज करना वजह से सख्त वे गे छा, पर वी की आंखियों की खास चमक पहाड़े खैरी बीती ते चुनौती दे सकती छे। भाना झटो पंचायत घर मा आज जगमोहन ओणू चु भैर बिटी कमलन धे लगे। वी का मुंड मा एक बड़ फंचू धरियू छो। भानन झटपट चा को कितलू भां रखी, सास जीते एक गिलास चा दे और अपड़ सपुक ठीक करद करद रुसड़ बिटी एक फंचू लेकी भैर एगी। वी की सासु बिछिन किनारा बैठी की चा को गिलास पकड़ी और हर भी बड़बड़े सर दिन मान गांव मा रिटनी राली तो डारो काज कु करलू। गांव में बिजली पानी सभी आएगी, पर यूं जनोनों को काम फिर भी कम होनो नो इनी लेनो। भानन तो की बात अनसुनी कर कोई जवाब नहीं दे और कमला दगड़ी पंचायत घर जाना पैटगी। अब गांव में बिजली आ गई छे, पक्की सड़क छे और नौनियाल का वास्ता सरकारी स्कूल में मुफ्त पढ़े भी छे, पर पहाड़े असल समस्या अभी भी जसे तस छे। मर्दों को गांव बिटी पलायन और रोजगार का अवसरों की कमी। भाना को पति रूप सिंह दिल्ली का एक प्राइवेट होटल में सिक्योरिटी गार्ड छो, वो हर महीने कुछ रुपया डेरा भेज दू छो। महंगाई का ये जमाना माँ वो घर खर्च का वास्ता पूरा नहीं पड़ता छा। आज गांव का कति जनाना सुबेरा टाइम अपना गोर बाछरा पाती माँ पेटेगी और घरों काम निपटेगी, मुंड माँ फंचू रखी पंचायत घरे तरफा बढ़नी छे। तो गांव से पहली पंचायत घर माँ कस्बा को व्यापारी जगमोहन अपना लैपटॉप पर कुछ देखणु छो। गांव का जनाना अपना अपना पुंगड़ा को कोदू झंगोरू और गौथे दाल का फंचा लेके एक एक करी वक्त पहुंचनी छे। कोदे कीमत 20 रुपए किलो से 1 रुपए ज्यादा नहीं मिलली, बाजार में अभी एक ही डिमांड नहीं छे। जगमोहन तो जनोनो मां बोली, कनबत बोलनी छे भैजी, शहर का बड़ा बड़ा सुपर

मार्केटमा यी अर्गानिक कोदो 80 रुपियाँ बिटी लेकी 100 रुपियाँ किलो तलक रंग बिरंगी पैकिङमा बिग्दुच भाना नेथर एकते बोली। ये सुनेगी जगमोहन मुल मुल हसन लगी। वेन बोली, अरे भाना देवी तू अप कोदो ते दिल्ली का माल में लेकी चली जा, ये ज्ञान किले बटनी छे, ये दाम पर बेचण छे तो बतावा, नहीं तो तुम्हारे वास्ते एथर का रास्ता खुलिया छन। सभी जनों ने बेबस हुए की एक है कह तरपा देखी और अपनो सामान वे दे दे। बिचौलिया जगमोहन ते सस्ता में अपनो माल बेचण तो की मजबूरी छे, मीनत गांव की जना न करदा छा और मुनाफा बिचौलिया और शहर का व्यापारी का मौन छा। भाना ते यह बात बहुत बुरी लगी। रुमकी दा भानन गांव की पांच जननियों कमला दीपा सुशीला गंगू और बीणा ते अपना चौक में इकट्ठा करी और बोली, अब बहुत होगी, हम अपनी मीनत को मोल भाव दूसरों ते तय नहीं कर दूला। हमारे गांव में लाइट चे और पक्की सड़क सीधा कस्बा तलक जान चे, हम खुद अपनो ब्रांड बनाई थी सामान बिकौला। कमलनवी की तरफा आचरत से देखी और बोली, हम ये काज कन के कर लाना, सामान बेचना वास्ता बढ़िया पैकिंग भी कन पड़द, हम कोदो ते पीसी ग्रेडिंग करी साफ सुथरी पैकिंग कर ला, बोण बिटी बुरास का फूल कट्ठा करी की वे को शरबत बनौला और कंडाली हर्बल टी तैयार कर ला, हमारो अपड़ो स्वयं सहायता समूह होलू। भानन बोली, वी की आंखियों में आत्मविश्वास झलकनु छो, तभी भितर बिटी बिछी लाठी टेकी चौक में आएगी, तेरु दिमाग ठीक छ भाना, जनोनों को काज पुंगड़ा चुल्लू समन च व्यापार करनो चली छन, ई का भगलौन मनी आया तुम सब, रूप सिंह ते आण दी तेरी सरी चकड़े थी हुई ठिकाना लगा लो। हैंका दिन ये बात सरे गांव ते पता चलेगी, वी की बात सुनी की कुछ दाना सयणों वी को विरोध करी, ताना दिए गेन पर भाना टस से मस नहीं हुए। वीन खंड विकास अधिकारी से मिली की जनों समूह का वास्ता छोटे स्तर पर लोन लेने प्रक्रिया समझी और सरकारी योजना का तहत एक छोटी आटा पिसने चक्की और सीलिंग मशीन को जंक जोड़ कर दे। ईदगा मीनत करना बाद भी तो की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं वे, सरे दिन मान पूर्णा और घर संभलना बाद रात मा बल्बे लेट में जनना कोदो आटू कंडली का सुखा पत्तों ते पैक और पैकिंग सील कर दछा। भानन अपना फोन से ब्रांड को नौ डिजाइन करी, शिखर पहाड़ी स्वाद और सेहत। पहला मैंने जब वो कस्बा का हफ्तावार हाट मा सामान लेकिन पहुंचिन तो स्थानीय दुकानदारों तो ते मुख नहीं लगे, वे दिन तो की नौ लेना वास्ता ही बहुत कम बिक्री हुई। ये देखेगी कमला की हिम्मत जवाब देन लगी, भाना मिन पहली ही बोली छो ये सब ऑनलाइन बाजार को खेल, हमारे बस को नीचे धीरज रख कमला, जब गांव में सुविधा छन तो हमारी सोचते भी ये घेरा बिटी भय रहे की अग्नि तलक बर्न पड़ लू। भानन हार नहीं मानी, वीन अपना फोन को इस्तेमाल करी की सोशल मीडिया पर अपना पहाड़ी जैविक उत्पाद का छोटा छोटा वीडियो बने की डलन शुरू करी। वीन दिखे शुद्ध पहाड़ी कोदो और गहते दाल रसायनों का बगैर पुंगड़ा माकन करी उगये जान। तीसरा मेहनतों की कोशिश रंग लेगी, शहर का एक ऑर्गेनिक फूड स्टोर का मालिक कन वीडियो देखी की समूह दगड़ी संपर्क करी, वेन कंडली चाह और गहते दाल का संपर्क मंगवेन, वो वे की क्वालिटी देखी की बहुत खुश हुए। वेन तो 2 क्विंटल कोदो आटू और 10 किलो कंडली चाह को पहलू बड़ू ऑर्डर दे दे। जब पहली दां समूह का खाता मा रुपया एन और भानन कमला का हाथ मावी की मीनत को 3,000 रुपए को चेक धरी तो कमले आंखियों मा आंसू अगेन, यह मेरी अपनी कमेच भाना। हाँ कमला, ये तेरी मीनत को मोल चु, अब तो कहकर अग्नि हथ फैलाने जरूरत नहीं पड़ ली। बगवाल का टाइम पर रूप सिंह छुट्टियों मा गाँव है, वे लगनो छो डियारा मा हर दां की तरह रुपये पैसों की तंगी होली, पर इबर दां गाँव मा खुट्टू धरदी नजारा बदलिया छा। बिछिन वे भाना काज का बारा मा बते, ये सुनी की रूप सिंह ते अच्छी लगी कि वे की घरवाली गांव का जनोनो दगड़ी मिली की भलू काज करनी छे। वे ये से पहली भाना ते सदनी अप पर आश्रित देखी छो, पर इबर दां वो अपना मोबाइल पर नए ऑर्डर को हिसाब किताब लिखनी छे। वे की जीत पर ही वेन ये मोबाइल किस्तों में लेकी एक बरस पहली भी दे छो, जय की किस्त वो अजू तलक भी भरनू छो। तिन ये सब कन के करी भाना, अरमी ये बारा में कुछ बताए भी नहीं। ये सुनी की वी भलू लगी, वीन बोली, तुम जनना छा जब जनना अप कमाउन लगदन तो सरे गांव को निजर ही बदल जांद, मिन सोची छो ये सब अपनी आंखें देखी तुम ते भी भलू लगा लू। वी की बात सुनी की रूप सिंगन कुछ नहीं बोल सकी, अपनी घरवाली का स्वाभिमान का अग्नि वे कुमुंड इज्जत से झुकी की। देखद देखद साल बीतगी, भाना को शिखर समूह अब केवल अपना गांव तलक सीमित नहीं छो, वारधा का 3-4 गांव का जनन भी तो दगड़ी जुड़ी गये छा। कभी कभार जेठ का मैंने गांव

0: पानी दिक्कत हो जाती है। गांव का बीज जो पुरानो नोल छो जनानियों ने अपनी कमे को एक हिस्सा वे का जीर्णोद्धार पर लगेगी वे भी ठीक करे दे। गांव में सभी बुनियादी सुविधा छे पर अपनी परंपरा और जल स्रोतों ते बचाने शुरुआत जनोनों का बढ़ता सामाजिक प्रभाव को प्रतीक बनगी। दुई साल बाद बिच्छू को बड़ू नौनियाल मान सिंह डियारा आए। वे देखी कि बुए चौक में बैठी कोदो का बिस्कुट चाह दगड़ी खानी ची। बिच्छी ने बताए, हमर भाना को माल अब देहरादून और दिल्ली जानू ची। मेरी बारी अब घर संभल दगड़ी स्वयं सहायता समूह भी चलाऊं। ये सुनी कि माल सिंह खोलेगी यूं दुई बरस में गाँव को नजारा बदले गए छो। बिचौले व्यापारी जगमोहन भी अपना मनमाना भाव पर तो पर निस्त थोप सकनू छो। अब वो अफू भाना का द्वार पर है कि इज्जत से पूछ छो, भाना भूली इबरदा शहर की सप्लाई का वास्ता कद का स्टॉक तैयार छे। भाना अपना चौक में खड़ी हुए की दगनी उतर दिखनी छे जो अपना अपना फोन पर नए ऑर्डर है जानकारी साझा करनी छे। रुमकीदा घाम पहाड़ मा डांडा का पिछने अछलेणु छो। पहाड़े जिंदगी अभी भी कठिन छे, मौसम मार अब भी पड़नी छे, पर गांव का जनाना अब तो हालातों ते सहना वास्ता मजबूर नहीं छा। तोन आधुनिक साधनों को सह इस्तेमाल करी कि अपना स्वाभिमान और अपना खुटों पर खड़ा होने ने कहानी लिख दे छे।
1: दगड़ियों अभी सुने छे आप एक गढ़ कहानी और कहानी विषय छे मेहनत को मूल और कहानी कहानीकार छे डॉक्टर कुसुमरानी नैथानी। कहानी बहुत सुंदर छे, हमर गढ़वाल से जुड़ी छे, हमर पहाड़ों से जुड़ी छे। तो दगड़ियों आप हिरदा कुमाऊँ छोड़ और हीरा सिंह राणक स्वर में सुन रही सुंदर सी कुमाऊनी गीत।

दगड़ियों हीरा सिंह राणा के स्वर में सुना छे आपको माउनी गीत और गीत बहुत भलो छे। बहनों जनों को वास्ता कार्यक्रम हमारे दीदी भूलू की वास्ता छे तो अपर प्रतिक्रिया चिट्ठी के माध्यम से जरूर पैटावा कि कार्यक्रम कन लगणु छो। हमारे चिट्ठी पता छे कार्यक्रम जनों को वास्ता द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून निकट रिस्पना पुल और हमारे पिन नंबर छो 2480001। दगड़ियों आजकल हमारे दीदी भूली खाली नहीं बैठे छन, अब गाँव में गाँव की जननी महिला स्वयं सहायता समूह चलाना छन। ये माँ 10 से 20 गाँव की जननी शामिल हुन और वो मिल बांट के काम करना छन। कखे अचार बनो छो, कखे पापड़ बनना छन, धूप बत्ती अगरबत्ती बनना छन, सिलाई को काम चनो छो और बुनाई को काम चनो छो और भी खारियों काम छन जो गाँव में लोगों तय रोजगार मिलो छो। ये सब होते अपर ही गाँव में और गाँव का न्यार दुहारी रोजगार मिल जाऊ। सभी बहनी मिली जुली कर काम करना छन और वैसे अपर छोट मोट बचत भी करना छन और बगत पुण पर आपस में एक दूसरे तय ब्याज भी देना छन और सरकार भी महिला स्वयं सहायता समूह तय कम ब्याज दर पर ऋण देनी छो। जैसे जननी आसानी से अपर रोजगार खुलना छन और वो अपर और अपरी कुटुंबदारी को भरण पोषण करना छन। जैसे गाँवक जननी आत्मनिर्भर भी होना छन और उनका आत्मसम्मान भी बढ़ो छो। और दगड़ियों सबसे बड़ी बात यह छे कि गाँव बिटेन प्लान कम होने छो तो बहनी हमार गांव बचल तो हमार जड़ बचली और ये जड़ ही हमार अस्तित्व छन यानी हमार पछाण छ। तो बहनी अब चलता जौनसारक छाड़ और गंभीर भारतीय स्वर में सुन दे सुंदर सी जौनसारी गीत।

दगड़ियों अभी सुने छे आप गंभीर भारतीक स्वर में यू जौनसारी गीत। और बहणियों आप कार्यक्रम बटोनक बगत हूँ तो आप बहणी ते ममता तई कार्यक्रम बटोनक आगे दें। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनानों का वास्ता। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
2: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
1: श्री शाह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जवाबदेही चाहिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। रक्षा, वित्त, परिवहन, पर्यटन

0: नौ संस्कृति, कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण, कोयला खान और इस्पात से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में गोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत, पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे आलेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में गैटलोक के पास एक बुलेरो पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदरोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार, प्रदेश के किसानों को मिलेगा स्थायी बाजार। ITPP की तर्ज पर चंपावत, अल्मोड़ा और रानीखेत स्थित SSB वाहिनियों को ताजे फल और सब्जियों की आपूर्ति की जाएगी। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के पैठानी क्षेत्र में विभिन्न विकास और सौंदर्यकरण कार्यों का निरीक्षण किया। कहा, धार्मिक व पर्यटन स्थलों का विकास सरकार की प्राथमिकता। देहरादून जिला प्रशासन ने दलहन उत्पादन बढ़ाने और एग्रीस्टेक योजना को प्रभावी बनाने की तैयारी तेज की। और राज्य सरकार के बेहतर आपदा प्रबंधन और इंतजामों के चलते चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर। 114 दिनों में ही श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख के पार पहुंची। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में देहरादून में उत्तराखंड औद्यानिक परिषद की 9वीं सामान्य सभा की बैठक हुई। बैठक में स्थानीय किसानों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने के लिए ITPP की तर्ज पर चंपावत, अल्मोड़ा और रानीखेत स्थित SSB वाहिनियों को स्थानीय स्तर पर उत्पादित ताजे फल और सब्जियों की नियमित आपूर्ति का फैसला लिया गया है। इसके लिए परिषद, SSB और उद्यान विभाग के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: बैठक में बताया गया कि आईटीबीपी की 12 अग्रिम चौकियों को इस साल अप्रैल से अब तक करीब 42,757 किलोग्राम फल सब्जियों की आपूर्ति की गई, जिससे किसानों को लगभग 22,70,000 रुपए की आय हुई है। वहीं अक्टूबर से आईटीबीपी को स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति 25 से बढ़ाकर 50% करने पर सहमति बनी। बैठक में प्रदेश में उत्पादित फल, पुष्प, सब्जी, मसाले व प्रसंस्कृत उद्यानिकी उत्पादों के लिए आधुनिक पैकेजिंग, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत पैक हाउस और गुणवत्तापूर्ण कीवी पौध के लिए हाईटेक नर्सरियां स्थापित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को बेहतर बाजार और उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के बाद एसएसबी के साथ किया गया समझौता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से पंकज सनवाल खुलबे।
3: कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। इन स्थलों के बेहतर विकास से स्थानीय लोगों को सुविधाएं मिलने के साथ क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। डॉ. रावत ने कल देर शाम पौड़ी जिले के बैठानी क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न विकास और सौंदर्यकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने राहु मंदिर परिसर के सौंदर्यकरण, कंडारसियों पेयजल योजना, बुंखाल कालिका मंदिर के नवनिर्माण कार्यों की प्रगति जानी। डॉ. रावत ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों के सुनियोजित विकास से श्रद्धालु और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कंडारसियों पेयजल योजना को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि योजना से 45 गांव, ताको के 2,000 से अधिक परिवारों और 10,000 से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिलेगी। बागेश्वर के बैजनाथ में स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सहयोग से विशेष स्वास्थ्य एवं दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों और आमजन की स्वास्थ्य जांच की। इसके अलावा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, नेत्र परीक्षण और निःशुल्क दवा वितरण सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। शिविर का शुभारंभ दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने किया। उन्होंने शिविर को सरकार की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी पहल बताया।
5: इस तरह के कैंपों से जहां इस पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा और मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इस तरह के लगातार कैंपों का आयोजन, चाहे जन जन की सरकार जन जन के द्वारा कार्यक्रम हो, चाहे ये स्वास्थ्य कैंपों के माध्यम से आम जन को लाभ दिलाने का इस सरकार का जो उद्देश्य है उसको कहीं ना कहीं आज परिपालन हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
3: लाभार्थी रंजीत सिंह ने कहा कि एक ही स्थान पर कई तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं मिलने से आम जनता को काफी सहूलियत हुई है।
6: यहाँ पर सुविधा हम लोगों को काफ़ी अच्छी सुविधा मिल रही है और शिविर कैंट जो लगा है यहाँ आम जनता के लिए, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। कई चीज़ की हमको यहाँ जरूरत पड़ती है, स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है और हर प्रकार की यहाँ पर आजकल समस्या होती है, हड्डी से लेकर आँख से लेकर कान, नाक, दांत, कोई भी चीज़ हो, मतलब इसका हमको सुविधा मिल रही है और ऐसे मिलने चाहिए भी और शिविर लगना भी चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
3: देहरादून जिला प्रशासन ने दलहन उत्पादन बढ़ाने और एग्रीस्टेक योजना को प्रभावी बनाने की तैयारी तेज कर दी है। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में अधिकारियों को अरहर, उड़द और मसूर का रकबा बढ़ाने के लिए क्लस्टर चिन्हित कर माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों को उन्नत बीज, बीज उत्पादन और आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने के साथ इंटरक्रॉपिंग और बंजर भूमि के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। ने किसानों को गन्ने की पंक्तियों के बीच खाली पड़ी जगह में दालों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि धान गेहूं के पारंपरिक फसल चक्र में दलहन को शामिल करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र राणा ने बताया कि जिले में वर्ष 2030-31 तक उड़द का रकबा 470 से बढ़ाकर 754 हेक्टेयर करने, अरहर का 286 से बढ़ाकर 457 और मसूर का 242 से बढ़ाकर 427 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में मॉनसून की बाधा और चुनौतियों के बावजूद चारधाम यात्रा नया रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। इस वर्ष 19 अप्रैल को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हुआ था। 10 अगस्त तक इस यात्रा काल के 114 दिनों में ही श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख के पार पहुंच चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना

0: में 4.5 लाख से अधिक है। इसमें बद्रीनाथ धाम में 16,12,000, केदारनाथ धाम में 14,50,000, गंगोत्री धाम में 7,37,000 और यमुनोत्री धाम में 6,62,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल है। वहीं हेमकुंड साहिब में करीब 2,40,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मॉनसून के बीच चार धाम यात्रा को पूरी सतर्कता और निगरानी के साथ संचालित किया जा रहा है। मॉनसून की सक्रियता को देखते हुए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मुख्यमंत्री राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के माध्यम से व्यवस्थाओं और आपदा प्रबंधन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। चारों धामों और यात्रा पड़ाव में यात्रियों के ठहरने, खाने और अन्य सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर यात्रियों की मदद के लिए सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मॉनसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं को मौसम की स्थिति को देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। प्रदेश सरकार के बेहतर आपदा प्रबंधन और इंतजामों के चलते यात्रा नया कीर्तिमान बनाने की ओर बढ़ रही है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
0: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल अग्निकांड प्रकरण में कानूनी प्रक्रियाओं का सामना कर रहे उत्तराखंड निवासी शेफ केशव नेगी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात कर उन्हें सहयोग व संवेदनशीलता के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने श्री नेगी का कुशल क्षेम जाना और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है और आवश्यकता पड़ने पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों का मनोबल बढ़ाए और उन्हें न्यायोचित सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को भी ऐसे मामलों में आवश्यक समन्वय बनाते हुए यथासंभव सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के किसानों को मिलेगा अस्थायी बाजार। आईटीबीपी की तर्ज पर चंपावत, अल्मोड़ा और रानीखेत स्थित एसएसबी वाहिनियों को ताजे फल और सब्जियों की आपूर्ति कराई जाएगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के पैठानी क्षेत्र में विभिन्न विकास और सौंदर्यकरण कार्यों का निरीक्षण किया। कहा, धार्मिक व पर्यटन स्थलों का विकास सरकार की प्राथमिकता। देहरादून जिला प्रशासन ने दलहन उत्पादन बढ़ाने और एग्रीस्टेक योजना को प्रभावी बनाने की तैयारी तेज की। और राज्य सरकार की बेहतर आपदा प्रबंधन और इंतजामों के चलते चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर। 114 दिनों में ही श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख के पार पहुंची। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 1:15 हुए हैं। आप सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और पूर्णिमा की आवाज में। फिल्म का नाम आ गले लग जा। संगीतकार हैं आर डी बर्मन और गीत के बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: फिल्म संगीत प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी। गीत के संगीतकार हैं आर डी बर्मन और शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की।

श्रोताओं, अंतिम गीत अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वक्त का। आशा भोसले की आवाज में गीत के बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने और संगीतकार हैं रविशंकर शर्मा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। आप सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
2: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
1: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
2: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे

0: को डिजाइन किया था।
1: श्रोता, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
0: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
1: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
0: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
1: जी।
0: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
1: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
0: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
1: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
0: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
1: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे
0: जी। और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
0: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA के छात्र थे तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या?
4: वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
5: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियाँ खाने का शौक है, है? मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
5: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना।

0: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
1: तो फिर?
0: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
2: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
0: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
2: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
3: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
0: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
3: Is that right? You black monkey?
2: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
3: बात जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
0: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
3: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
0: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
3: तो क्या करेगा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? You scoundrel! You bloody swine! बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
0: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
3: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
0: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
4: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
5: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
2: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
5: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
2: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
5: और अपने सुभाष बाबू?
2: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया, और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
5: कितनी सजा हुई?
0: नालायक कहीं की सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
5: क्या हुआ सुभाष बाबू?
0: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
4: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि

0: कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
1: कौन? शिशिर?
2: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए।
1: आओ अंदर आ जाओ, क्या खबर है?
2: सब तैयारी हो गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गौमो से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
1: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
2: उसका भी प्रबंध हो गया है, आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
1: ठीक है।
2: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी, किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
1: तो फिर ठीक है, आओ चले।
2: चलिए।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ है मौलवी साहब।
3: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
3: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
4: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
4: खुदा हाफिज साहब।
5: लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल ना जाने क्या हो।
4: ये अखबार कहां गया?
5: हाँ, ये रहा। कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
6: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी

0: एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया,
1: जय हिंद,
2: जय

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
5: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की

0: कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
2: हमें भविष्य में गोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
2: कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही।

0: हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
2: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैलीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कॉन्सर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन व्हिच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विज्ञान विभाग का कहना

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के दो मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 107.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों, जय हिंद। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सैनिकों के लिए। इस मिट्टी की तासीर में ही कुछ ऐसा है कि यहाँ जब भी कोई संकट आता है तो माँ भारती की कोख से एक ऐसा लाल जन्म लेता है जो इतिहास की दिशा बदल देता है। आज कहानी एक ऐसे वीर की जिसे पानी की लहरों से लेकर कश्मीर की घाटियों तक दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी जान देकर अपने साथियों की जान बचाई। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना के जाबाज मार्कोस कमांडो लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह सिहाग की। हरियाणा के भिवानी जिले के मीरान गांव से निकलकर भारतीय नौसेना के सबसे खतरनाक कमांडो बल मार्कोस तक का सफर तय करने वाले धर्मवीर सिंह सिहाग की कहानी आज आपको गर्व से भर देगी।

श्रोताओं, भिवानी की वो पावन माटी, धर्मवीर सिंह का जन्म इसी माटी में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई और खेलकूद में आगे रहने वाले, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो चमक थी नौसेना की वर्दी पहनने की। उन्होंने भारतीय नौसेना ज्वाइन की, लेकिन एक आम फौजी बनना उनके स्वभाव में नहीं था। उनका लक्ष्य था देश की सबसे घातक सीक्रेट फोर्स का हिस्सा बनना, मार्कोस यानी मरीन कमांडोस। मार्कोस बनना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग में से एक होती है मार्कोस की ट्रेनिंग। हफ्तों तक बिना सोए, कड़कड़ाती ठंड और गहरे पानी में भूगे रहकर दुश्मनों से लड़ना सिखाया जाता है। धर्मवीर सिंह ने इस बेहद सख्त ट्रेनिंग को न सिर्फ पूरा किया, बल्कि अपनी सूझबूझ से INS अभिमन्यु में एक बेहतरीन लीडर के रूप में उभरे। दुश्मन उन्हें मगरमच्छ या दाढ़ी वाली फौज कहते थे, क्योंकि ये पानी से निकलकर अचानक मौत बनकर टूटते थे। श्रोताओं, साल 1999 आया, देश पर कारगिल युद्ध का साया था। सेना को कश्मीर की घाटियों में एक ऐसे ऑपरेशन के लिए मार्कोस की जरूरत थी जहां पानी और जमीन दोनों जगह से घेराबंदी करनी थी। लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह सिहाग की टुकड़ी को बुलावा गया। घाटी की तरफ बढ़ने से पहले सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए प्रसारित किया जा रहा है FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं श्रोताओं लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह सिहाग की। 12 अगस्त 1999, जगह थी जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का गुरूर क्षेत्र। आतंकवादियों ने भारतीय सेना के काफिले को उड़ाने के लिए पूरे रास्ते पर भारी लैंडमाइंस बिछा रखी थी। अगर सेना आगे बढ़ती तो सैकड़ों जवान शहीद हो सकते थे। रास्ता साफ करने की जिम्मेदारी सौंपी गई लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह सिहाग और उनकी टीम को। लेफ्टिनेंट सिहाग ने खुद आगे बढ़ने का फैसला किया और साथ में थे उनके जोड़ीदार महावीर सिंह। दोनों जाबाज आगे बढ़े और भारतीय सेना के लिए रास्ता साफ किया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि पहाड़ों के पीछे छिपे आतंकवादियों ने देखा कि उन्होंने भारतीय सेना के लिए रास्ता साफ कर लिया है। इससे वो बौखला गए। जैसे ही धर्मवीर सिंह सिहाग तीसरी लैंडमाइन की तरफ बढ़े, आतंकवादियों ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। एक भयानक विस्फोट और पूरा इलाका धुएं से भर गया। लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह सिहाग और उनके साथी महावीर सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत के ये दोनों लाल हमेशा के लिए अमर हो गए।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए प्रसारित किया जा रहा है एफएम 14.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह सिहा के इस अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत नौसेना पदक से सम्मानित किया। उनकी याद में नई दिल्ली के नेवल स्टेशन में एक भव्य बिल्डिंग ब्लॉक का नाम उनके नाम पर रखा गया है। वहीं कोचीन के नेवल ऑफिसर्स एनक्लेव का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है, जहां उनकी एक प्रतिमा भी लगाई गई है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 3 बजे हैं, अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, अब आप प्रियंका मलिक से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल अग्निकांड प्रकरण में कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे उत्तराखंड निवासी शेफ केशव नेगी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात कर उन्हें सहयोग और संवेदनशीलता के लिए आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने श्री नेगी को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। प्रदेश के किसानों को

0: अस्थायी बाजार उपलब्ध कराने के लिए आईटीबीपी की तर्ज पर चंपावत, अल्मोड़ा और रानीखेत स्थित एसएसबी वाहिनियों को ताजे फल और सब्जियों की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड औद्यानिक परिषद एसएसबी और उद्यान विभाग के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। देहरादून जिला प्रशासन ने दलहन उत्पादन बढ़ाने और एग्रीस्टेक योजना को प्रभावी बनाने की तैयारी तेज की है। जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने अधिकारियों को अरहर, उड़द और मसूर का रकबा बढ़ाने के लिए क्लस्टर चिन्हित कर माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार के बेहतर आपदा प्रबंधन और इंतजामों के चलते यात्रा नया कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। 10 अगस्त से चारधाम यात्रा काल के 114 दिनों में ही श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख के पार पहुंची है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.5 लाख से अधिक है। पिथौरागढ़ के अपर जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध रूप से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने संगम बाजार स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर वहां संचालित गतिविधि और बच्चों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली है। जिलाधिकारी ने नौनिहालों के साथ संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। और उत्तरकाशी जिले में पुराला विकासखंड के धिवरा गांव में हरेला महोत्सव के अवसर पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने ग्रामीणों के साथ वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के साथ संवाद कर अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3:02 हुए हैं। आप सुनिए गाने नई तराने।

फिल्म लक्ष्मी का ये गीत अभी आपने सुना। गीत को आवाज़ दी थी निकिता गांधी, मधुबन थी और खुशी ने। गीत के बोल लिखे थे गगन आहूजा ने और शब्द रचना थी शशि की। गाने नए तरह ने प्रसारित किया जा रहा है FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं दर्शन रावल और अजीज कौर की आवाज़ में। फिल्म का नाम लव यात्री। संगीत निर्देशन है तनिष्क बागची का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3:11 हुए हैं, आप सुन रहे हैं गाने नए तराने। श्रोताओं सुनिए ये अगला गीत मुरली ठाकुर की आवाज़ में, फिल्म का नाम लुटेरा। गीत के संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी और बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

श्रोताओं, फिल्म दम लगा के हर्षा का गीत अभी आपने सुना कुमार शानू और साधना की आवाज में। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:20 हुए हैं, आप सुन रहे हैं गाने नए तराने। अब सुनिए ये अगला गीत, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम है डुप्लीकेट। गीत के संगीतकार हैं अनु मलिक और बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

गाने नए तराने प्रसारित किया जा रहा है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं नकाश अजीज की आवाज में, फिल्म का नाम फैन। संगीतकार हैं विशाल शेखर।

श्रोताओं, फिल्म गोल का गीत अभी आपने सुना आनंद राजानंद और ऋचा शर्मा की आवाज में। संगीत निर्देशन था प्रीतम का और गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 3:37 हुए हैं। आप सुन रहे हैं गाने नई तराने। श्रोताओं, सुनिए अगला गीत कुणाल और विशाल की आवाज में। फिल्म का नाम है गोलमाल। विशाल ददलानी का संगीत निर्देशन है और गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। आप सुन रहे हैं गाने नए तराने। श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं यह अगला गीत, AR रहमान की आवाज़ में, फिल्म का नाम हाईवे।

0: कम ऑन रिया,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ,
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: I'm not listening to you.
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मरती। I'm not listening to you.
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: Okay, I'm not with her.
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: Okay, that's it.

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: गाने नए तराने प्रसारित किया जा रहा है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अंतिम गीत अब आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में, फिल्म का नाम है जिस्म। गीत के बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा ने और संगीतकार हैं MM करीम।

0: गाने नए तराने अभी आप सुन रहे थे FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, आप सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। हरिद्वार में कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद नगर निगम का वृद्ध सफाई अभियान जारी है। 4,500 मीट्रिक टन से अधिक कचरा साफ किया गया है। हर की पैड़ी, सुभाष घाट, अलकनंदा, बिरला और विष्णु घाट समेत लगभग 95% घाटों की सफाई पूरी की गई। राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है। आज जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। देहरादून जिले के विकासनगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूली छात्रों और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, क्षेत्रीय लोग और स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड नैनीताल की ओर से भवाली में हथकरघा क्षेत्र से जुड़े बुनकर और कारीगरों के लिए एक दिवसीय जागरूकता संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार के बेहतर आपदा प्रबंधन और इंतजामों के चलते चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। 10 अगस्त तक इस यात्रा काल के 114 दिनों में ही श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख के पार पहुंच चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.5 लाख से अधिक है। पिथौरागढ़ के अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने संगम बाजार स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर वहां संचालित गतिविधि और बच्चों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने नौनिहालों के साथ संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। अभी आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 4:02 हुए हैं, अब सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत अब आप सुनेंगे अरिंदम चक्रवर्ती का सितार वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग सिमहेंद्र मध्यम।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अरिंदम चक्रवर्ती का सितार वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग सिम्हेंद्र मध्यम। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। आप सुनिए फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम एक कलाकार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM 100.5 देहरादून और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सुहासिनी, लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक कलाकार। आज हम यहां बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस चुलबुली बेबाक और अपनी मुस्कान से सबका दिल जीतने वाली अदाकारा की, जो नवाब खानदान से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन दिल जिनका बिल्कुल देसी है, और वो हैं सारा अली खान, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म केदारनाथ से ये साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक स्टार किड नहीं बल्कि एक उम्दा कलाकार भी हैं। उनकी इसी खूबसूरत शुरुआत को याद करते हुए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार। हमारी आज की कलाकार हैं अभिनेत्री सारा अली खां। आज ही के दिन में जन्मी, यानी 12 अगस्त 1995 को मुंबई में जन्म हुआ था सारा अली खां का। वो अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री अमृता सिंह की बेटी हैं। श्रोताओं, सारा अली खां जितनी अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं, उतनी ही वो अपनी दमदार एनर्जी और डांस के लिए भी मशहूर हैं। जब वो बड़े पर्दे पर सिम्बा की शगुन बनकर आई तो थिएटर में सीटियां बजने लगी। रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा में रणवीर सिंह के साथ उनकी जोड़ी ने सबको खूब एंटरटेन किया।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
0: 8700014242।
2: श्रोताओं, सारा अली खान ने फिल्म केदारनाथ में 2018 में अभिनय किया था और उसके बाद उनकी फिल्में आई सिम्बा, लव आजकल, अतरंगी रे, गैसलाइट, जरा हट के जरा बच के, मर्डर मुबारक और ए वतन मेरे वतन।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4:50 हुए हैं। कार्यक्रम चल रहा है एक कलाकार। हमारी आज की कलाकार हैं अभिनेत्री सारा अली खान। श्रोताओं, पुरस्कार की बात करें तो फिल्म केदारनाथ के लिए सारा को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, साथ ही उन्हें आईफा अवार्ड से भी नवाजा गया। सारा अली खान का जादू हर तरफ बरकरार है, चाहे वो जरा हटके जरा बचके की मिडिल क्लास सौम्या हो या फिर ए वतन मेरे वतन की स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता। सारा ने हर रोल में अपनी अलग छाप छोड़ी। विक्की कौशल के साथ उनकी केमिस्ट्री और फिल्म के इस बेहद सुरीले गीत ने लोगों के दिलों को छू लिया था।

कार्यक्रम एक कलाकार प्रसारित किया जा रहा है FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। हमारी आज की कलाकार हैं अभिनेत्री सारा अली खां। बहुत ही कम समय में सारा ने इंडस्ट्री में अपनी एक खास

पहचान बनाई है। वो अपनी गलतियों से सीखती हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं और हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। चलते चलते छोड़े जा रहे हैं उनके एक और एनर्जेटिक गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून FM 100.5 MHz पर।

0: इसी गीत के साथ श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम एक कलाकार यहीं पर संपन्न होता है। आज का कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री सारा अली खां पर। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। संसद परिसर में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृह मंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें केवल जवाबदेही चाहिए। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यापक विचार विमर्श के लिए विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर जली हुई नकदी मिलने से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने इस वर्ष मई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। श्री बिरला ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने तथा भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग $4 ट्रिलियन की है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में किए गए मुक्त व्यापार समझौते 38 विकसित देशों को कवर करते हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि परियोजना हाथी हाथियों की रक्षा, उनके आवासों के संरक्षण और हाथियों तथा समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में हाथियों की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और AI आधारित अलर्ट, लोगों और हाथियों की सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली बाढ़

0: और खाइयां तथा किसानों को फसल नुकसान के लिए समय पर मुआवजा देने संबंधी उपाय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में श्रोताओं, साय के 5:05 हुए हैं। अब आप आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के रूपरेखा से संबंधित सूचनाएं सुनेंगे। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब से बस कुछ ही मिनटों बाद यानी साया के 5:10 पर युवा साथी होंगे हमारे साथ इन्फोटेनमेंट पर आधारित अपने दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा साय के 5:45।

सायं के 7 बजे किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, जहां होगी भेंट वार्ता श्री कृष्णानंद डिमरी से। विषय रहेगा सहकारिता से ग्रामीण विकास। सायं के 7:40 पर हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्मी गीतों का अपना मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत।

सायं के 7:50 पर विशेष कार्यक्रम आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति राज्य दर्शन, और रात्रि के 8:00 श्रोताओं सुनना न भूलिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा।

रात्रि के 8:15 का समय रहेगा श्रोताओं अंग्रेजी वार्ता का। आज वार्ता प्रस्तुत करेंगे विश्वास शर्मा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर और विषय है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस यंग इंडिया शेपिंग अ शेप्ड

श्रोता और रात्रि के 8:30 पर एक बार पुनः हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्मी गीतों का अपना मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत और कार्यक्रम स्पॉटलाइट। जी हाँ, ये कार्यक्रम श्रोताओं रात्रि के 9:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि के 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही श्रोताओं आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है और रात्रि के 10 पॉडकास्ट सीरीज का 7वां एपिसोड पर्सन बिहाइंड द स्टोरी। रात्रि के 10:30 पर अपने फरमाइशी गीत सुनेंगे श्रोताओं आप कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इसी के साथ है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुई। अब एक नजर डालते हैं कल के खास कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत कार्यक्रम शीर्षक गीत में श्रोता। आरती जोशी प्रस्तुत करेंगी जौनसारी लोकगीत कार्यक्रम शैल संगीत में कल प्रातः 7:30 पर और प्रातः 8:30 पर समय रहेगा प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का। कल सवेरे 10:35 पर उप्रेती सिस्टर्स यानी ज्योति उप्रेती एवं

मिर्जा उप्रेती से आप सुनेंगे कुमाऊँ लोकगीत कार्यक्रम लोक संगीत में। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:10 हुए हैं और ये समय होता है हमारे युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम का। तो सुनते हैं युववाणी।

0: जब जेब में बड़े बड़े सपने और आंखों में कुछ कर गुजरने की जिद होती है ना, तो बस वही उम्र दुनिया का नक्शा और किसी भी देश की किस्मत बदल देती है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का युवा सिर्फ आने वाले कल का इंतज़ार नहीं कर रहा है, बल्कि वो आज ही अपनी मेहनत से नया कल लिख रहा है, और इसी एनर्जी को सेलिब्रेट करने का दिन है आज।
0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे युववाणी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि नंदिता भट्ट को।
1: और दोस्तों, मैं हूँ स्तुति बेटवाल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी हेल्दी और हैप्पी होंगे दोस्तों, और हमारी ओर से आप सभी को इंटरनेशनल यूथ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: बात जब युवा शक्ति की आती है तो हमारे देश के यूथ ने साबित किया है कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर तरफ कई युवाओं के नाम आते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा जब मैदान में गोल्ड जीतते हैं, तो दूसरी तरफ गुकेश टी सबसे कम उम्र में चेस वर्ल्ड चैंपियन बनकर नया इतिहास रचते हैं।
1: और दोस्तों, सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, टेक और आईटी वर्ल्ड में भी हमारे देश के यंग टेक माइंड्स जनरेटिव एआई और रोबोटिक्स में ऐसे ऐसे स्मार्ट टूल्स बना रहे हैं जिनकी चर्चा अब सिलिकन वैली तक हो रही है।
0: और ऐसे ही माइलस्टोन स्पेस सेक्टर में भी देखने को मिले हैं। हाल ही में बेंगलुरु के युवा स्पेस स्टार्टअप्स ने दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च करके स्पेस टेक्नोलॉजी में नया इतिहास रचा है।
1: लेकिन नंदिता, इस डिजिटल ज़माने में ना, जब हर तरफ रील्स, स्क्रीन टाइम और करियर का प्रेशर होता है, तो कभी-कभी दोस्तों हमारा माइंड आउट ऑफ ट्रैक भी चला जाता है।
0: इसीलिए दोस्तों हमें अपनी पढ़ाई स्किल्स में तो काम करना ही है, साथ ही अपने मेंटल पीस पर भी ध्यान देना है।
1: क्योंकि दोस्तों, जब हम अंदर से स्ट्रांग रहेंगे, तभी हम लगातार कुछ नया सीखते रहेंगे।
0: तो इस इंटरनेशनल यूथ डे पर हम एक प्रॉमिस खुद से करते हैं कि हम सच्चे मन से, ईमानदारी से हमेशा मेहनत करेंगे, अपनी काबिलियत से सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे और अपने परिवार के साथ अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों इसी थॉट के साथ पेश करते हैं इस बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक को, जिसे आवाज़ दी है बेनी दयाल, अदिति सिंह शर्मा, और फिल्म है मेरी ब्रदर की दुल्हन।

0: योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: स्तुति, एक बात बताओ।
0: हाँ।
3: अगर मैं तुमसे कहूँ कि आने वाले वक्त में किचन में खाना बनाने से लेकर अंतरिक्ष की सैर कराने तक हर जगह एक रोबोट हमारे साथ खड़ा होगा, तो आपका क्या रिएक्शन होगा?
4: नंदिता, अगर ऐसा सच में हो गया ना, तो मैं तो जितने भी मेजॉरिटी काम है सारे रोबोट से करवाऊंगी। लेकिन दोस्तों, जोक्स अपार्ट, हमारा आज का ये विषय भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो है रोबोट बदलेंगे भविष्य।
3: जी हाँ दोस्तों, रोबोट अब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा नहीं है, आज वो हमारी ज़िंदगी का भी अहम हिस्सा बन चुके हैं। फिर चाहे वो बात हेल्थ केयर की हो, जहाँ रोबोट सर्जरीज में डॉक्टर्स की मदद कर रहे हैं।
4: सोचिए दोस्तों, अब ऐसे माइक्रो रोबोट्स भी आ चुके हैं जो शरीर के अंदर जाकर बिल्कुल डिजीज वाली जगह पर मेडिसिन डिलीवर करते हैं।
3: और अस्पतालों में मॉक्सी जैसे असिस्टेंट रोबोट नर्सों का हाथ बटा रहे हैं, ताकि मरीजों की देखभाल और बेहतर हो सके। जो लोग कभी चलने की उम्मीद छोड़ चुके थे, रोबोटिक एक्सोस्केलेटन की मदद से आज वो अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं।
4: और दोस्तों, हॉस्पिटल्स के साथ साथ AI बेस्ड रोबोट्स बच्चों को पर्सनलाइज तरीके से भी पढ़ा रहे हैं, जैसे मीको जैसे AI रोबोट। ये हर बच्चे के दिमाग और मूड को समझते हुए उसके हिसाब से सब्जेक्ट में जो कमज़ोरी है उस हिसाब से उसे डांटने के बजाय खेल खेल में आसान कहानियों के जरिए वो टॉपिक्स को समझाते हैं।
3: सिर्फ इतना ही नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट में रोबोट किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। सोचिए, जहाँ इंसानों का पहुँचना मुश्किल हो, वहाँ रोबोट्स और ड्रोन मदद कर पाते हैं।
4: दोस्तों, IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने भी कुछ ऐसा ही कमाल किया है। उन्होंने एक ड्रोन और चार पैरों वाले रोबोट की ऐसी जोड़ी बनाई है जो किसी भी मुश्किल रास्ते को आसानी से पार कर सकते हैं।
3: यानी कि ड्रोन हवा से रास्ते की मैपिंग करेगा और ज़मीन पर चल रहे रोबोट को सही दिशा दिखाएगा।

0: दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना भी यही है कि रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस करने के लिए नहीं बल्कि उनकी मदद करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इससे इंसान अपनी क्रिएटिविटी और सोच का इस्तेमाल और बेटर तरीके से कर पाएगा।
1: यानी कुल मिलाकर रोबोटिक्स का फ्यूचर बहुत उज्जवल है। ये हमें एक सेफ, एफिशिएंट और फ्यूचरिस्टिक दुनिया की तरफ लेकर जाता है। इसी के साथ सुनते हैं एक और म्यूजिकल ट्रैक फिल्म चांद मेरा दिल से, जिसे आवाज़ दी है राघव चैतन्य और जॉनिता ने।

0: नंदिता, एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि आज से 21 साल बाद भारत कैसा होगा? क्या बड़ा बदलाव आएगा?
1: 21 साल पहले तो ये सोचो कि 21 साल बाद हम खुद कहाँ होंगे।
0: वो तो ठीक है, लेकिन जरा देश के बारे में सोचो। दोस्तों, 1947 से 2026 तक भारत कितना बदल गया है? अब 2047 की पिक्चर कितनी चेंज हो जाएगी?
1: तो चलो एक एक करके इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले जॉब्स,

0: के यूथ के लिए करियर का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी या किसी कंपनी में नौकरी करना नहीं रह गया है। आगे चलकर स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जुड़े काम के अपॉर्चुनिटीज भी और बढ़ रहे हैं।
1: और दोस्तों, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है आज का स्टार्टअप सेक्टर। जून 2026 की सरकारी जानकारी के अनुसार भारत में 2.3 लाख से ज़्यादा रिकग्नाइज स्टार्टअप हो चुके हैं दोस्तों। यानी जॉब ढूंढने वाला जो यूथ है वो अब जॉब देने वाला भी बन चुका है।
0: और 2047 का भारत अगर डेवलप्ड इंडिया बनना चाहता है तो सिर्फ बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना काफ़ी नहीं होगा।
1: दोस्तों, काफ़ी होगा अगर बदलाव विलेजेस तक भी आएगा तो।
0: सोचिए, उत्तराखंड के किसी गांव का यूथ वहीं रहकर ऑनलाइन काम कर रहा हो, अपने लोकल प्रोडक्ट्स को देश विदेश में बेच रहा हो और उसे अच्छी एजुकेशन या ट्रेनिंग के लिए हर बार किसी बड़े शहर जाने की ज़रूरत ही ना हो।
1: और नंदिता, फार्मर्स भी सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से खेती करने वाले लोग न होकर टेक्नोलॉजी और मार्केट की इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर्स बन जाए तो।
0: बिल्कुल सही कहा। खेती में ड्रोन्स, वेदर इन्फॉर्मेशन, बेहतर इरिगेशन, मिट्टी की टेस्टिंग और मॉडर्न स्टोरेज जैसी टेक्नोलॉजीज प्रोडक्शन और इनकम दोनों को इम्प्रूव करती है।
1: और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि 2047 की डेवलपमेंट जर्नी को सिर्फ सिटी से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है।
0: यानी कि फ्यूचर का विलेज ऐसा हो सकता है जहाँ ट्रेडिशन भी रहे और टेक्नोलॉजी भी रहे।
1: हाँ, और दोस्तों, बात करते हैं एजुकेशन की, और यहाँ भी बहुत बड़ा चेंज ज़रूरी है।
0: जैसे आपसे भी कई बार ये सवाल पूछा जाता होगा कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं।
1: और आने वाले समय में ये सवाल थोड़ा सा ऑल्टर हो जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको क्या क्या आता है।
0: यानी कि दोस्तों, डिग्री के साथ स्किल्स जैसे कोडिंग, डिज़ाइन, कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और साथ ही अपनी लैंग्वेज और क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारी स्किल्स आनी बहुत ज़रूरी है।
1: क्योंकि दोस्तों, AI बहुत सारे काम तेज़ी से कर सकता है, लेकिन सही सवाल पूछना, प्रॉब्लम को समझना और नया आइडिया देना इंसानी क्षमता के बड़ी ताकत रहेगी ही।
0: और एजुकेशन सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड क्यों रहे? इमेजिन कीजिए किसी पहाड़ी इलाके का स्टूडेंट वर्चुअल लाइब्रेटरी में साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, किसी छोटे शहर का स्टूडेंट दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी की क्लास में ऑनलाइन शामिल हो रहा है।
1: और नंदिता, यही तो टेक्नोलॉजी की असली ताकत भी है ना दोस्तों, सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज की रीच बढ़ाना।
0: लेकिन एक डेवलप्ड इंडिया की पहचान सिर्फ उसकी इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी से नहीं होगी।
1: वो होगी दोस्तों विमेन पार्टिसिपेशन से।
0: अगर 2047 का इंडिया आगे बढ़ रहा है तो वुमेन्स सिर्फ बेनिफिट पाने वाली नहीं बल्कि डिसीजन मेकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट, फार्मर, ऑफिसर और लीडर के रूप में भी बड़े रोल निभा सकती हैं। अब ज़रा शहर के पिक्चर के बारे में सोचते हैं।
1: नंदिता, मुझे तो सबसे पहले ना ट्रैफिक याद आ रहा है।
0: तुम्हारी प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर हैं सूरी।
1: हाँ, लेकिन सीरियसली, फ्यूचर के सिटीज़ में बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एनर्जी सेविंग, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन एयर और क्लीन वाटर जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
0: यानी डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ऊंची बिल्डिंग नहीं बल्कि बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है।
1: और नंदिता, खासकर इन्वायरमेंट को साथ लेकर चलना भी, क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी, एयर, वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर भी आ जाएगा तो वो डेवलपमेंट अधूरा है।
0: और फिर साइंस और रिसर्च,
1: वहाँ भी इंडिया के लिए बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, क्लीन एनर्जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, AI। अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने वाले नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंट्री बने तो 2047 की पिक्चर काफ़ी अलग होगी। क्यों?
0: तो एक तरह से 2047 का भारत सिर्फ ज़्यादा रिच इंडिया नहीं होना चाहिए।
1: ऐसा इंडिया जहां डेवलपमेंट का फ़ायदा ज़्यादा लोगों तक पहुंचे।
0: 2047 अभी फ्यूचर है लेकिन उसकी प्रेपरेशन फ्यूचर से शुरू नहीं होगी, इसकी तैयारी हम सभी को आज से ही करनी होगी। इसी के साथ पेश करते हैं एक और गीत हेमा सरदेसाई की आवाज़ में फिल्म चक दे इंडिया से।

दोस्तों, आज है बुधवार और आज हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा खास रेडियो सेगमेंट विज्ञान जगत, जिसमें आज हम जानेंगे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के बारे में और कुछ जानेंगे विज्ञान से संबंधित समाचार।

0: नंदिता, कभी कभी लगता है ना कि कुछ लोग उम्र के साथ बड़े नहीं होते, बल्कि अपने आइडिया से उम्र से बहुत आगे निकल जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा स्तुति आपने, और सबरीना पेस्टर्स की इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है।
0: हाँ, और उनका नाम सुनते ही ना मुझे सबसे पहले उनका जो एयरप्लेन वाला किस्सा है ना वो याद आ जाता है।
1: वही ना, जब उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में एयरप्लेन बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था।
0: हाँ नंदिता, दोस्तों करीब 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट बनाने का काम शुरू कर दिया था।
1: और खास बात ये है दोस्तों कि ये सिर्फ कोई स्कूल प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि उन्होंने एयरक्राफ्ट को खुद डिजाइन और बिल्ड करने का डायरेक्शन में सीरियसली काम किया और बाद में उसे उड़ाया भी।
0: दोस्तों सोचिए, जिस उम्र में ज़्यादातर बच्चे साइंस की किताब में एयरप्लेन का डायग्राम बना रहे होते हैं, सबरीना असल में एयरप्लेन बनाने की कोशिश कर रही थी।
1: और शायद यहीं से उनकी क्यूरियोसिटी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उन्हें सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट नहीं था कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, बल्कि वो खुद उस काम को करके देखना चाहती थी।
0: और दोस्तों उनकी यही क्यूरियोसिटी उन्हें आगे फिज़िक्स की तरफ लेकर गई। उन्होंने MIT से फिज़िक्स की पढ़ाई की और बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थियोरेटिकल फिज़िक्स में PhD भी करी।
1: और थ्योरेटिकल फिजिक्स कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ आंसर्स आसानी से मिल जाएं। यहाँ तो यूनिवर्स के सबसे बेसिक सवालों का सामना करना पड़ता है।
0: दोस्तों जैसे ग्रेविटी क्या होती है, स्पेस और टाइम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, ब्लैक होल्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं।
1: और सबरीना का रिसर्च भी इसी तरह के फंडामेंटल

0: फिक्शन से जुड़ा हुआ है, खासकर ग्रेविटी और ब्लैक होल से जुड़े थ्योरेटिकल फिजिक्स के एरिया में उन्होंने काम किया है।
1: और दोस्तों मुझे लगता है कि उनकी जर्नी की एक और ख़ास चीज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और वो है उनके अचीवमेंट्स जो कि बहुत कम उम्र में ही नोटिस होने लगे थे।
0: और उनके वर्क ने बड़े बड़े नेम्स का भी अटेंशन अट्रैक्ट किया, जैसे गूगल के फॉर्मर सीईओ एरिक स्किमिट से लेकर जेफ बीजोस और लैरी पेज तक में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था।
1: लेकिन नंदिता, मुझे लगता है कि सबरीना की स्टोरी को सिर्फ कम उम्र की जीनियस साइंटिस्ट कहकर ख़त्म करना थोड़ा सा अनफेयर होगा, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा स्तुति, क्योंकि दोस्तों उनकी स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन शायद उनके इंटेलिजेंस नहीं बल्कि उनकी क्यूरियोसिटी है।
1: दोस्तों आज हमारे पास किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंटरनेट है, AI है, वीडियोस हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना और उसे एक्सप्लोर करना दोनों काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स हैं।
0: और सबीना ने यही किया, एक सिंपल क्यूरियोसिटी को उन्होंने सीरियसली लिया।
1: जैसे नंदिता एयरप्लेन को देखकर सवाल करना कि ये कैसे उड़ता है।
0: और फिर उसी सवाल का जवाब जब उन पे नहीं था तो उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किया।
1: और दोस्तों यही तो साइंस की स्पिरिट भी है।
0: और यूथ के लिए भी इसमें बहुत बड़ी सीख है, हम अगर किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो बस हमें उस काम पर बहुत ही दिल लगाकर काम करना है।
1: क्योंकि दोस्तों कभी कभी एक छोटा सा सवाल ही पूरा हमारा करियर डायरेक्शन बदल देता है।
0: और सबरीना पेस्टर्स की जर्नी इसी का उदाहरण है।
1: और नंदिता, अगली बार जब कोई चीज़ देखकर आपके मन में सवाल आए कि ये आखिर क्या है, कैसे काम करता है, तो उस सवाल को इग्नोर नहीं करना, आगे क्यूरियस होके उसी को क्वेश्चन ज़रूर करना है।
0: और शायद यही साइंस का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, हर बड़ी डिस्कवरी के पीछे कभी ना कभी एक सिंपल सा सवाल होता है।
1: और सबरीना ने उस सवाल को पूछने के साथ साथ उसका आंसर खोजने की हिम्मत भी दिखाई है दोस्तों। तो ऑन दिस नोट सुनते हैं फिल्म रईस से अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये ट्रैक।

0: दोस्तों, अब वक्त है विज्ञान जगत से जुड़े कुछ समाचारों का।
1: इसरो के एकेडमिक प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स को स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ने के कई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। देहरादून स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी IIRS भी इसरो के एकेडमिक सेंटर में शामिल है, जहां स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग और जियोस्पेटिकल टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्सेज होते हैं।
0: इसरो ने निसार सैटेलाइट के एस बैंड SAR के डेली प्रोसेस डाटा प्रोडक्ट्स जारी कर दिए हैं। ये डाटा अर्थ के सरफेस में होने वाले बदलावों को समझने में मदद करेगा और एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट तथा नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में रिसर्च के लिए यूजफुल रहेगा।
1: युवाओं को स्पेस टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए इसरो ने इसरो रोबोटिक्स चैलेंज URSC 2026 आयोजित किया है। इसमें यंग इनोवेटर्स को स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़ी रोबोटिक प्रॉब्लम्स पर सॉल्यूशन तैयार करने का मौका दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स में इनोवेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देना है। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस दिवस पर हमारी ओर से हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं। युवा होना सिर्फ उम्र का एक पड़ाव नहीं होता, ये वो दौर होता है जब आपके पास कुछ नया सीखने, सोचने और पहचान बनाने की सबसे बड़ी आज़ादी होती है।
0: और दोस्तों, इसीलिए अगर आपके पास कोई अपना सपना है, कोई स्किल सीखने का मन है, कोई नया आइडिया है, तो उसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, अभी ही सही समय है, शुरू कर दीजिए।
1: क्योंकि सही समय का इंतजार करते करते कई बार मौका हाथ से निकल जाता है।
0: जी, तो दोस्तों, अब इसी के साथ हम आ पहुँचे हैं अपने कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइए। हमें पत्र लिख सकते हैं, हमारा पता है युववाणी द्वारा निदेशक, आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, पिन कोड है 248001। और आप हमें व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं, नंबर है 7088000731।
1: हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में साया के 5:45 होने को हैं। अब प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम शून्य वाड़ी मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाँ, आशीष चौहान शुभ का स्वागत करूं और स्वागत के साथ ही श्री महासु जी महाराज से प्रार्थना करूं कि हमारे जो इच्छा भी श्रोता है से सब या राजी खुशी चाहिए रहे। श्रोताओं, आशा करूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और कार्यक्रम एक शुरू करने के आगे जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमारे साथ विज्ञापन है और जो हमारी चर्चाएँ हैं सही है, और अला एक खास जो हमारा कार्यक्रम और जो हमारा बुधवार है सार है हमारा न्यारद्वार कार्यक्रम, जबकि प्रस्तुत करता है शांति बिंजोला, सा भी हम आप लोगों को सुना दें। और इत के साथ ही हमारे जो गीत है जो अंसारी कुड़वाड़ी और कुमाऊनी रोज की तरह आप लोगों के साथ बने रहें। श्रोताओं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अला का जो मौसम है साहब भी कोनीशा खुली रहा और अमुक सबुक जो है अलग बजाई दुस बाद गाम देखने को भी मिला, तो कोनीशी हम सबुक जो रहा तो समय काई की पिछले किच दुस से बजाई बारिश लागी थी ओंदी और हम सभी परेशान भी नटोई, जे ज़्यादा पानी होलो तो भी परेशान नटोई और जे कम पानी होलो या मतलब काम लागला ज़्यादा तो भी जो है परेशान नटोई, सा हमारे अंदरों से ही क्योंकि परेशानी होने की हो। पर श्रोताओं, आजकल का जो मौसम है वे हमुक आगाशा जैसे जैसे आंदा लगी तसे तसे हमुक विशेष ध्यान अपने आपूच भी पड़दा रखना और जो हमारे घर के लड़कोटे है या बाट बाटे है त्यूच भी विशेष ध्यान पड़दा रखना। कहीं की अब जैसे अम्बिसा मौसम आगाशा तो डेंगू है और ओकी भी जी सारी बीमारियाँ जो तुमने मच्छर फनफो पानी मोज तो का भी अमुक विशेष ध्यान पड़दा रखना कि से अमुक जो है साथ ही साथ आपड़े जो लड़कोटे त्यू कशे बचाने, तो जो भी आजकल जो चीज़ है से हमुक करूनी चाहिए। और श्रोताओं, आप लोगों को नौ सबसे आगे गढ़वाल की तरफ और आओ सुनो शिव वंदना मंजू सुंदरियाल के स्वर मुझे।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइन

0: पर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
5: श्रोताओं विभिन्न तुशुणी आप लोगों रेबार और रेबार की आगे लो तुशुणी मंजू सुंदरियाल के स्वर मुझे शिव वंदना। श्रोताओं आजकल जैसे कि आप सबको पता है कि कावड़ का मेला भी लागी चलता, और हमारी सबसे जी प्रार्थना है जो लोग मतलब गंगा माँ की दर्शन कर दे जाऊँ और जो कावड़ लाऊँ त्यों से भी एक जी बहुत विशेष प्रार्थना है कि जब भी आप लोग छोड़का पुंडे आप दारके जाऊँ है या हुंडे आऊँ तब तला जो लोग सड़क क्रॉस करो जो बांडे पांडे जाऊँ तो त्यों का भी कणी का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि गाड़ी आराम से चलाया ताकि जो हमारे लोग है जो त्यों परेशानी न ली तो भी हम सबों की जो प्रार्थना है से भी सफल होंगी। श्रोताओं कार्यक्रम में एक और आगाश बढ़ाऊँ और आवश्यक एला का जो हमारा खास कार्यक्रम है न्यार द्वार जत की प्रस्तुत करता है शांति बिंजोला।

0: यख वक्त की खबर कौन शहर को सार डांडी काठियों बटे गौ गुठार न्यार द्वार न्यार द्वार भै बहनों की छी बात लेकी इना उना की खबर सार लेकी न्यार द्वार न्यार द्वार
1: नमस्कार। न्यार द्वार कार्यक्रम का ये दूसर अंक मा आप सभी सुनदरों को हार्दिक स्वागत कर दू। आप सभी होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना छन। आजादी को गौरवशाली पर्व एक दा फिर पहुंच गए हमार चौक मा। 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर एक तारीख नीच बल्कि उन असंख्य त्यागों संघर्षों और बलिदानों की याद च जो से हम थे आजादी मिल उनका सम्मान मा और देशभक्ति की भावना जगाना का वास्ता 2022 बिटी हम हर घर तिरंगा अभियान का तहत अपना अपन डियारों मा तिरंगा फहराना छवा जेथे आजादी का अमृत महोत्सव का तहत भारत सरकार शुरू कर छो। देशभक्ति की ई भावना तय समझना का खातिर हम उन कुछ बुजुर्गों का अनुभव पूछिन और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कुछ युवाओं की छुई सुनिन जो का सुपन्या प्रतिभा और ऊर्जा मा देश को आने वालो भविष्य दिखेणु छ। त आवा सुन दो बुजुर्गों की जुबानी आजादी का मायना युवाओं की जुबानी भारत को भविष्य और हर घर तिरंगा का दगड़ हमारी जिम्मेदारी।

0: 81 वर्षीय श्री हरिराम अमोली जी पौड़ी का यमकेश्वर का अमोला गांव का मूल निवासी वर्तमान में 1976 बटी HNB कॉलोनी अजयपुर देहरादून में सपरिवार रहदिन। ई सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में सीनियर अकाउंटेंट पद से सेवानिवृत्त छन। हम उनसे पूछ कि उनका जमना में स्वतंत्रता दिवस कन मनांदा छा और उन अपने बुजुर्गों से क्या क्या किस्सा सुने।
1: जब मैं छोटे छाए तो लोग बच्चा स्कूल को बच्चा गांव गांव में प्रभात फेरी निकाल दे छाए उमा छाए कि प्रभात फेरी में उठो सोने वालों सवेरा हुआ है वतन के फकीरों का फेरा हुआ है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रह न कहा जो सो होता है सो खो होता है जो जागत है सो पा होता है। उमा हम नारायण

0: जय हिंद, वंदे मातरम, आजादी हमारे अमर रहे। तो इलाका कहकर न स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को दिन आन चाहे तो हम नए धोए कर न घर घर में प्रभात फेरी निकाल जाए। प्रभात फेरी पर थोड़ा संपन्न लोग जाए तो वो घर मन गुड़ एक भेली दिन चाहे कोई आधा भेली दिन चाहे कोई एक चौथाई दे दिन चाहे तो वो पूरा काम की परिक्रमा करने का बाद हम स्कूल में ले आना चाहे फिर वो बच्चों में वो बोट चाहे वो माँ हमारा नारा जय हिंद वंदे मातरम आजादी हमारे अमर रहे। गाँव में हमारे बुजुर्ग बतान से ना हमारे इलाके में जो कोल सिंह छवान सिंह कांडे में डबल सिंह रामजी वाला महेंद्र नारायण दत्त और किमसारे पे एक कंडवाल ये खास खास वो चाहे वो हमारे गाँव में भी आंसर हम तक कर चाहे कि अगर तुम उन्हें अंग्रेजों के साथ जाए तो तुम्हारा कूल फूक दे हम तुमने हमारे साथ देना। हमारे जब बोल रहा कि रेल की पटड़ी उखाड़ ना तो रेल की पटड़ी उखाड़ मा तुम हमारे साथ जाओ तुम अंग्रेजों के साथ में जाओ।
1: पौड़ी का मनारस्यू भटकोटी गाँव का मूल निवासी 78 वर्षीय श्री कमल चक्र थपलियाल जी लेखा परीक्षा अधिकारी का पद से सेवानिवृत्त छन और 1979 बिटी बैंक कलोनी अजबपुर देहरादून में सपरिवार निवास करना छिन। हम उन्होंने पूछे कि देश आजाद होने का बाद आपक आसपास को माहौल कदगद जागरूक छाई तो उन बोली
2: मेरा जन्म तो आजादी के बाद भाई है ना और जब 15 अगस्त आन छाई वातावरण में मैंने पहली बटे बन जान छाई देशभक्ति गीत हूं छाए गाना हूं छाए बच्चा भी सिख छाई पहले जो हूं छाए जनगण मन हूं छाए और एक बात तब राष्ट्रीय ध्वज लेके गाँव गाँव जान छाए फेरी लगान छाए है ना और देशभक्ति गीत गान छाए देशभक्ति नारा लग उद्घोष कर छाई है ना वो एक बात तब जो घरों घरों में जान छाई और अध्यापक भी जान छाए तो बड़ो अच्छु मन इन छाई बच्चों में बड़ो उत्साह रहन चाहिए घरों में भी एक वातावरण रहन चाहिए और जो रेडियो पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भाषण आन चाहिए तो वे में भी बच्चों को बड़ो ध्यान रहन चाहिए कि हम सुन चो क्या बुना देश में क्या होना चो उबर कोई ज्यादा रेडियो नहीं छाए बहुत कम छाए अखबार भी एक आध आन चाहे कर्म भूमि में आन चाहे उड़दर बटेक भैरवदत्त जी धुलिया वो एक संपादक चाहे अब वो हफ्ता में एक बार आन चाहे तो वो 8-10 दिन घूम घूमी पढ़ा रहे लोग कभी एक अन पढ़ कभी एक अन पढ़ जब शहर में एक यहाँ तो शहर में भी जो स्कूल में जो पीटी पीरियड हो सिनेमा घरों में भी फ्री दिखान चाहे देशभक्ति से संबंधित पिक्चर दिखान चाहे।
1: जब हम उनसे पूछे कि नए छोली का वास्ता आपको क्या रह बार तो उन बोली
2: नई पीढ़ी बच्चा भी अगर डिसिप्लिन में रहा तो तभी हमारे देश की स्वतंत्रता बनी रह सके च समय को प्रबंधन कारण ठीक से समय पर सोवन समय पर उठाना और समय पर खावन तभी जो चो स्वास्थ्य भी ठीक रह लो और हमारे समाज भी तंदुरुस्त रह लो। अब हम जो चो टाइम बेटाइम रहेगी जागी की बेटाइम सुए की समय भी बर्बाद करना चाह पर स्वास्थ्य भी हानि करना चाह इन तरफ ध्यान देना बहुत जरूरत है हमारे बच्चों का। अब मोबाइल पर ज्यादा समय न लगाओ ये अच्छी बात है वो एक पैथर दमारो समय बहुत बर्बाद होना चो आ साधन हो गया तो काम बात पढ़े से संबंधित बात वैसे ग्रहण कारण कोई और भी ज्ञान वर्धक बात तो अपर बुजुर्गो दगड़ उनके अनुभव से कुछ सीखना द्वार बैठल तो उनके अनुभव को कुछ फायदा उठाना जरूरी है। हम आज तक देश बिटे का नहीं सब कुछ ले आई ये देश की मिट्टी से हम पैदा हुआ कि हम रहना चाहे कि अन्न खाया मन ये कि पानी पीना चाह हम भी कुछ देश से देना सीखा वहाँ पर कुछ हम तक कुछ न कुछ कर कुर्बानी करना पड़ा मेहनत करना पड़ा और समाज को हित भी देखना पड़ा केवल अब तक सीमित रहा तो उससे अच्छी बात नहीं है। जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी अंदर वो ध्वजारोहण हो तो हम तक उत्साहपूर्वक जान जाए तो एक हम जब सम्मान कर लो तो हमारे देश अभी सम्मान बढ़ा लो अवश्य जान चाहिए वो एक मान बढ़ान चाहिए।
1: आर्मी मेडिकल कोर स्वास्थ्य सहायक का पद से सेवानिवृत्त 90 साल का श्री प्रेमदत्त सेमवाल जी टिहरी का मझाड़ी नैलचामी का मूल निवासी वर्तमान में बहुगुणा कॉलोनी अजबपुर खुर्द देहरादून मोथरो वाला मा सपरिवार निवास करना छिन। जब हमन उथे पूछी कि आपन गुलाम भारत और राजशाही वोल टिहरी देखी आपक वास्ता वे समय मा आजादी को क्या मतलब छो तो ओन बोली
0: हमते जब पता चले कि हाँ भाई स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता मिल गये तब कुछ कुछ हमसे नहीं पता कि स्वतंत्र को मतलब क्या छो
3: जो सन 48 में हमसे तो ये समझा हम के

0: सुनी छो हमने कि सन 48 में स्वतंत्रता मिली, सन 47 में मिली थी, लेकिन गढ़वाल में नहीं छो, कुछ नहीं था तब। तो तब लोग तय पता चल कि हाँ ये ठीक से हुई हूँ क्यों हुई। तय मैं यून छो कि बहुत सारे जो राजा ने टैक्स लगाया था सी हट गए, और लोग तय थोड़ा इतना वो है कि हाँ ये ठीक से स्वतंत्रता को मतलब ये चाहिए कि ये राज्य का जो कंट्रोल छो हमारा ऊपर सो हट गई, और अब जो छो भारत सरकार को शासन छो। तो ये वास्ता लोग थोड़ा ये जागरूक होएगी कि हाँ बदली हुई कुछ, मतलब लोगों की सोच में थोड़ा बदली हुई कि हाँ हम अब इतने उतने भी जोड़ा तो हम तो कोई परेशान न हो और सही तरह से हम ताजक बिटन जन दिल्ली बिटन ऑन था कोई सामान ली थी ऋषिकेश भी नॉन था देहरादून में ऑन था कोई टीरी माँ। तो बहुत सारी जगह में इन थे कि पाउंड टोटी पड़ थे, पाउंड टोटी का मतलब टैक्स, राजा अपनी तरफ से तो टैक्स तो कोई कोई इन चीज न लियाओ, मूल्यवान चीज थी तो न ले जाओ अपन घर, और पूर्व बिस्तर खोली थे, और तब बहुत सारी चीजें ली लेन था यहाँ तो का कर्मचारी अपना कब्जा में ली लेन था, और तब बोल था कि भाई अब तुम जाओ। पहले
1: एक पीढ़ी का बुजुर्गों ने हमते बीत्या दौर की तस्वीर दिखेन, और अब छुई कला ऊ नए छुआले का नौनियालों से जो का हाथू माँ आज को भारत और कांदू माँ आणवाल भूल की जिम्मेदारी।

0: 28 वर्षीय प्रतीक्षा बमराड़ा ग्राम अरोटा रावत सिंहपट्टी पौड़ी गढ़वाल की मूल निवासी छन। वर्तमान में सपरिवार देहरादून में रहन। शास्त्रीय संगीत से पोस्ट ग्रेजुएट छन और गढ़वाली गीतों का माध्यम से युवा पीढ़ी थे संस्कृति से जुड़ने को काम करनी छन। हम उनसे पूछी गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी दगड़ मंच साझा करणु ऊँथे कन लग दू तो उन बोली
1: अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी थे हार्दिक शुभकामना छन। तिरंगा हमारी आन बान और शान को प्रतीक छे जो हम थे हमेशा राष्ट्रहित थे सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देंद। आज का युवा होने का नाता हमारी यह जिम्मेदारी छे कि हम अपना कर्मों से इनकी शान थे कभी कम नहीं होने देला, इनकी गरिमा थे बढ़े के रखला और देश की प्रगति माँ अपड़ू पूरु योगदान दे। पूरी तरह गड़ल गीतों पर काम करनु छा और विभिन्न मंचों से लोक गीतों की प्रस्तुति और युवा पीढ़ी थे अपनी संस्कृति से जोड़ने को एक प्रयास करनु छा। उत्तराखंड लोक संगीत का भीष्म पितामह जो थे बोलतन आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी तगड़ मंच साझा करना मेरे जीवन की सबसे गौरवशाली और यादगार क्षणों में से एक छे। उनकी सादगी जमीन से जुड़ाव अपनी संस्कृति का प्रति उनको अटूट समर्पण सबसे अच्छी बात छे। उनकी कला हम ते सिखांदी कि कन अपनी लोक संस्कृति थे जीवित रखना का दगड़ एक सही दिशा भी दिखाई जा सकती।
0: जब हम उनसे पूछ कि आधुनिक संगीत और लोक गीतों को क्या संबंध छे तब उन बोली
1: तो आधुनिक संगीत और लोक गीतों को नून पानी कुसी साथ छे। आज का दौर में आधुनिक संगीत का फ्यूजन का माध्यम से लोकगीतों को नयो रूप दुनिया भर में युवाओं तक पहुँचने छे जो कि हमारी संस्कृति थे वैश्विक पहचान दिलाण में मददगार साबित होने छे जो कि एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट छे। युवाओं का वास्ता कोई संदेश अगर मैं देना चाहूँ तो मैं बस इत गए बोलने कि अपनी माटी अपनी भाषा और लोक संस्कृति से हमेशा जुड़िया रहा। आधुनिक बनया जरूर बनया पर अपनी जड़ों थे कभी ना भूलिया कि लेकिन यही हमारी असली पहचान छे।
0: 28 वर्षीय दिव्या नेगी सुनार गांव कांडी टिहरी की मूल निवासी छन। वर्तमान में सपरिवार देहरादून रहनी छन। जब हम उनकी उपलब्धि पूछिन तो उन बोली
2: अपनी अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं तो मैं हमेशा से एक यन नौनी रही छो। बचपन बटेन जी मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी थे, मतलब कि मीते सब करनो थे, मीते अगर भाषण भी देनो थे तो मीते खेलनो भी थे, तो मीते गाना भी गाण थे, मीते नाचनो भी थे, कविता भी लिखनो थे, तो मीते सब सब करने को मन थे। जितना मैं अपना कॉलेज या फिर स्कूल का दिनों से याद कर सकता हूँ तो मैं बहुत बारी अपना कॉलेज को प्रतिनिधित्व स्कूल प्रतिनिधित्व अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में करी जहाँ की वजह से मीते आखिर में जो मैं

0: अचानक से एक जानी पहचानी धुन सुनी। कोई पहाड़ी भाई ने नेगी जी को एक पुरानो खुदेड़ गीत बजाई। तो जब कोई विदेश में अपनी माटी को यह गीत सुन दो तो भावुक हो जान दो। हमारा मन में एक गहलू विचार है कि हम पूरी दुनिया का बड़ा बड़ा क्लाइंट्स कौन इत का काम करना चाहन, पर अपनी वो संस्कृति को क्या चकाना जो हर दिन जब खत्म होनी। अमून महसूस करी कि आज हालात यू वेगी छो कि जब दुई पहाड़ी मिलदन तो वे अपनी बोली का बजाय हिंदी में बात कर दें। अजबालो जवान होने अपनी भाषा बोलनी नहीं चाहनी। अगर यू सिलसिला चल दो रालू तो अगला 20 सालों में हमारी भाषा रोजमर्रा की बोलचाल बटी पूरी तरह खत्म हो जाली। तो लंदन की 3 रात को विचार धीरे धीरे एक मजबूत संकल्प बने और वही संकल्प आज पहाड़ियाई का रूप में दुनिया का सामना चाह। तो पहाड़ियाई ने भाषा तब अमर बने ली। किले की 5 मिलियन लाइन पहाड़ी अब 5 मिनट में भी बनी जाती और अब ये भाषा कभी मरी भी नहीं सकती। पर अब यू कतका अपनाई जाती यू नौजवान का हाथों में।
1: युवाओं को वास्ता उन कुछ इन संदेश दे।
0: जवानों पर आधारित गांधीवादी कवि स्वर्गीय घनश्याम सैलानी जी की कविता की कुछ पंक्ति छे कि जाग जाग जाग जवान वक्त सेण कुनी छे, जवानी को उमाव फिर दोबारा औण कुनी छे, डांडी कांठी उदंकार वेगी नींद छोड़ दे, आज ई समाज थे एक नयू मोड़ दे। ता हमारी ई खत्म होंदी संस्कृति कुण एक नयू मोड़ चेंदो। सभी जवानों बटी बिनती छे कि ई मुहिम हमारो साथ दियावा।
1: न्यार द्वार कार्यक्रम को हिस्सा बनने का वास्ता श्री हरिराम अमोली जी, श्री कमल चक्र थपलियाल जी, श्री शेमवाल जी, प्रतीक्षा बमराड़ा जी, दिव्या नेगी जी, जय आदित्य नोटियाल जी, आप सभियों को और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दगड़ियों, नज़र डल दो आज का मौसम पर। आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कई जगह और शेष पहाड़ी जनपदों में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बरखा को अनुमान च। देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में भारी बरखा की संभावना भी जताई च। आप सभी से अनुरोध कि संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में और खड़ी ढलानों में जान से बचन, भारी बरखा का दौरान यात्रा करण से बचन। मौसम की यूं सूचनाओं को दगड़ न्यार द्वार का ये दूसर अंक से मी शांति बिंजोला विदा लेंदु। नमस्कार।
1: यख वक की खबर कौन शहर को सार डांडी काठियों बटे गांव गुठियार न्यार द्वार न्यार द्वार भय बहनों की छुई बात लेकी इना उना की खबर सार लेकी न्यार द्वार न्यार द्वार।
2: श्रोताओं में मिला तो सुनिए आप लोगों ही न्यार द्वार कार्यक्रम जोत के प्रस्तुत करता थी हमारी शांति पिंजोला। और श्रोताओं समय गई 6:18 कार्यक्रम एक और आकाश बढ़ो और आप लोगों के जौनसार की ओर न आओ सुनो राहुल वर्मा और साथी के स्वर मुंज सोलारी मोलारी गीत परतत की आगे रेबार।
3: 26-27 से केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन का भुगतान SNA स्पर्श प्लेटफॉर्म लाभार्थियों को किया जाना है।
4: अच्छा,
3: अब पेंशन का भुगतान केवल उन्हीं लाभार्थियों को किया जाएगा जिनकी सही सही जानकारी समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
4: तो उसके लिए क्या करना होगा?
3: बताता हूँ, बस आपके आधार संख्या विभागीय पेंशन पोर्टल पर सही सही दर्ज हो, बैंक खाते में आधार जोड़ने के साथ DBT की सुविधा भी चालू हो, जिसके लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी मानक छूटा हो तो तुरंत अपने क्षेत्र के सहायक समाज कल्याण अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 6395221188 पर कॉल करें या हमें ईमेल आईडी swditsale@gmail.com पर लिखें। समाज कल्याण निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला 20 साल की असली वारंटी देने वाला

टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: श्रोताओं, इबले तो आप लोगों ही सुनी रेबार, और रेबार की अगले तो सुनी चौंसारी गीत। श्रोताओं, समय राय प्रादेशिक समाचार का, आओ सुनो थोड़ी देर मुझे प्रादेशिक समाचार।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद।
5: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल जीवन मिशन की

0: प्रदेश में आकाशवाणी समाचार देहरादून 1 अगस्त से 15 अगस्त तक क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतिदिन शाम 6:30 के समाचार बुलेटिन में एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन के समाचार बुलेटिन में की जाएगी। हमारा आज का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन ले, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? श्रोता अपने उत्तर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7037888643 या ईमेल आईडी rnu.dehradun@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारा कल का प्रश्न था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का अमर नारा देकर देशवासियों को आजादी की अलख जगाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले विजेता है अल्मोड़ा से ज्योति त्रिवेदी। आकाशवाणी समाचार देहरादून की ओर से आपको हार्दिक बधाई।
1: मैं ज्योति त्रिवेदी अल्मोड़ा की निवासी हूँ। मैं आकाशवाणी स्टेशन रेडियो को रोज सुनती हूँ और आकाशवाणी की रोज न्यूज भी सुनती हूँ। आकाशवाणी में भाग भी लेती हूँ, वहाँ की टॉकर भी हूँ। मुझे अल्मोड़ा स्टेशन सुनने में अच्छा लगता है, मैं डेली इसको प्रतिदिन सुनती रहती हूँ।
0: और अब प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर घर जल का लक्ष्य शत प्रतिशत पूरा करने और शेष पात्र ग्रामीण परिवारों को निर्धारित समय सीमा में नल कनेक्शन से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। आज सचिवालय में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तक नियमित, पर्याप्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना ही मिशन की सफलता का आधार है। उन्होंने निर्माणाधीन विलंबित योजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने और पूरी हो चुकी योजनाओं स्थलीय सत्यापन कराने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के संरक्षण व पुनर्जीवीकरण, वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के पुनर्भरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलावार लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही तय करने तथा अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित कार्यदायी संस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया है कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 16,555 योजनाओं में से 15,540 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। कावड़ यात्रा के संपन्न होते ही हरिद्वार नगर निगम ने पूरे शहर और प्रमुख घाटों पर वृद्ध सफाई अभियान शुरू कर दिया है। निगम की टीमें मुस्तैदी से सफाई कार्य में जुटी है। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने बताया कि हर की पैड़ी, सुभाष घाट, विष्णु घाट समेत लगभग 95% घाटों की सफाई पूरी कर ली गई। उन्होंने बताया कि कावड़ मेले की शुरुआत से अभी तक करीब 7,000 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा किया जा चुका है। इसमें शहर के सामान्य कचरे को अलग कर दिया तो कावड़ यात्रा के दौरान करीब 4 से 4,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त कचरा निकला है। एकत्रित कचरे को सराय स्थित प्रोसेसिंग प्लांट और MRF सेंटर भेजा जा रहा है।
2: लगातार कल शाम से साफ सफाई अभियान चल रहा है। उसी क्रम में कल जितने भी महत्वपूर्ण घाट थे हमारे हर की पैड़ी के आसपास के घाट, वो सारा कुछ कल रात में ही साफ हो गया था। इस तरफ के जो घाट है अलकनंदा, बिरला और विष्णु घाट का जो पैच है, उसमें भी लगातार सफाई चल रहा है और 95% यहाँ भी साफ सफाई हो गई है। इसके साथ ही जो मार्केट के एरियाज है, जो लिंक रोड है टुवर्ड्स द हाईवे, सर्विस रोड भी है, या फिर जो कैंपिंग या होल्डिंग एरियाज था, उसमें भी हमारा साफ सफाई अभियान कल से चल रहा है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: देहरादून जिले के विकासनगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज डाक पत्थर मुख्य मार्ग पर स्कूली छात्रा छात्राओं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस अवसर पर स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्र के प्रति सम्मान, एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया।
4: अभिनंदन करेंगे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने देश के युवाओं में, देश के नागरिकों में, हर परिवार में राष्ट्र भावना को जागृत कर

0: करने के लिए घर घर तिरंगा अभियान को एक आंदोलन बना दिया। आज उसी क्रम में ये भव्य तिरंगा यात्रा यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डाक पत्थर की तरफ से निकाली गई।
1: तिरंगा यात्रा में शामिल स्कूली छात्रा नव्य नौटियाल भी काफी उत्साहित नजर आई।
2: हमारे विद्यालय में रैली निकाली गई हर घर तिरंगा, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जितने भी टीचर्स है, हमारे अध्यापक है, हमारी अध्यापिकाएं और सारे छात्र छात्राएं और एवं हमारे प्रधानाचार्य जी, हम सबने मिलकर हर घर तिरंगा रैली निकाली, और इससे हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें मतलब अनेकता में एकता हमारे देश में, और ये जो हमारे अंदर के हृदय की जो भी मतलब अच्छाई है, हम सब एक है। अलग अलग कल्चर है, अलग अलग वो है, बट हम सब एक है, इसलिए इसका प्रतीक है।
1: नैनीताल जिले के भवाली में आज नाबार्ड की ओर से हथकरघा क्षेत्र से जुड़े बुनकरों कारीगरों के लिए एक दिवसीय जागरूकता व संवाद कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर स्थानीय कला कौशल और परंपरा के संरक्षण तथा संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लगभग 10 बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित भी किया गया। नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक मुकेश बैलवाल ने बताया कि नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, कौशल विकास और अन्य पहलों के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
3: एक कार्यशाला आयोजित की थी, इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं, चाहे DIC से हैं, लीड बैंक से हैं, चाहे बैंक के प्रतिनिधि हैं, सब यहाँ उपस्थित थे। बड़े अच्छी बातचीत यहाँ पर हो पाई है और महिलाओं से संवाद हो पाया कि किस क्षेत्र में कार्य किया जा संभावना है। तो यहाँ पर हमें देख पा रहे थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में संभावनाएं काफी सारी है और हैंडलूम सेक्टर को आगे, और अगर इसमें नाबार्ड मदद कर रहे हैं इसलिए साथ में जो और हमारी जैसे RCT है या JSS है, उन सबका सहयोग रहेगा तो आने वाले समय पर एक अच्छा क्लस्टर यहाँ पर हम लोग डेवलप कर पाएंगे।
1: वहीं सम्मानित हुई प्रियंका ने बताया कि कार्यशाला में उन्हें हथकरघा और हस्तशिल्प के बारे में काफी सीखने को मिला है।
4: मैं इसमें हैंडलूम और हस्तशिल्प के बारे में जानकारी मिली कि कैसे हैंडलूम का काम होता है और कैसे हस्तशिल्प में लेडीजें ऐपन कर रही हैं, मोमबत्ती का कर रही हैं और बुलन का कर रही हैं, जूट का कर रही हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाएं कर रही हैं जिनकी जानकारी हमें भी नहीं थी। यहाँ पे आके हमने बहुत सारी नई नई चीजें देखी और उनसे सीखा कि कैसे वो लोग करती हैं, इतनी मेहनत से काम करती हैं। यहाँ पे आके काफी अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिला हमें।
1: राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। समारोह को भव्य, अनुशासित और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग मुस्तैद है। आज जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
5: ओवरऑल प्रेपरेशन हमारी परेड या उससे रिलेटेड जो कल्चरल प्रोग्राम्स और जो चीज़ें रहती है वो स्ट्रीमलाइन भी हैं या उसमें तैयारियां हमारी चली रही हैं, और बाकी जो डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सफाई से रिलेटेड या वाटर सप्लाई को लेकर या दूसरे जो डिपार्टमेंट ब्यूटिफिकेशन को लेकर इस पूरे एरिया के, उन सारे डिपार्टमेंट्स का अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। शेष पात्र ग्रामीण परिवारों को निर्धारित समय सीमा में नल कनेक्शन से जोड़ने के निर्देश दिए। कावड़ यात्रा संपन्न होते ही हरिद्वार नगर निगम का पूरे शहर और प्रमुख घाटों पर वृद्ध सफाई अभियान जारी है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून जिले के विकास नगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, और नैनीताल जिले के भवाली में हथकरघा क्षेत्र से जुड़े बुनकरों और कारीगरों के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम स्वतंत्री बंधानी, जिला उत्तरकाशी है, उत्तराखंड। मैं जो खेती करती हूँ जिसमें सारे मिलेट से हमारे बीमा करना इसलिए जरूरी है, जो किसान बीमा करते हैं, हम लोगों ने खुद बीमा किया है। पिछले साल हमने 40,000 प्रीमियम जमा करा और उसका हमें 4 गुना मिला।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: श्रोताओं, ग्राम जगत कार्यक्रम के दूजी पारी मुझ हाँ।

0: श्रवण आप लोगों का फिर से स्वागत करूं और श्रोताओं हूँ कार्यक्रम में एक और आगे से बढ़ाऊं। तो आओ सुनो एक चौंसारी हारोल और तत् आ गए रेवार।
1: अब सीएनजी में
2: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए निसान ग्रेफाइट सीएनजी के साथ 7 सीटर जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
3: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निसान डीलरशिप पे जाएं। शर्तें लागू।
4: संपर्क करें पाल निसान शोरूम हल्द्वानी। मोबाइल नंबर 8477008200।

श्रोताओं, अभी तो आप लोग भी सुनी, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, ज्योति उप्रेती सती के स्वर मुझे कुमाऊनी गीत। श्रोताओं, हमारा का जो कार्यक्रम है ग्राम जगत साहित्य का समाप्त हो और मुक्त हो इजाजत। नमस्कार।

0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सायं के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत हैं गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटिन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में मृणाल रतुड़ी। पहली मुख्य समाचार। कांवड़ यात्रा का संपन्न होने के बाद हरिद्वार नगर निगम पूरा शहर और प्रमुख घाटों पर सफाई अभियान शुरू करी। देहरादून जिला प्रशासन दलहन उत्पादन बढ़ोन और एग्री स्टैक योजना ते प्रभावी बनाने की तैयारियां तेज करी। प्रदेश सरकार का बेहतर आपदा प्रबंधन और इंतजामों का चलते चार धाम यात्रा नयू कीर्तिमान बढ़ोन की ओर

0: अग्रसर छा। श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख का पार वहन और नैनीताल जिला का भवाली माँ हथकरघा क्षेत्र से जुड़िया बुनकरों और कारीगरों खुणी जागरूकता कार्यशाला को आयोजन। अब समाचार विस्तार से। कांवड़ यात्रा का संपन्न होने के बाद हरिद्वार नगर निगमन पूरा शहर और प्रमुख घाटों पर सफाई अभियान शुरू करी। नगर आयुक्त नंदन कुमारन बताए कि निगम की टीमें पूरी तैयारी से सफाई कार्यों में लगीच। उन बताए कि हर की पैड़ी सुभाष घाट और विष्णु घाट समेत लगभग 95% घाटों की सफाई पूरी भेन। नगर आयुक्त नंदन कुमारन बताए कि कांवड़ यात्रा मेले की शुरुआत से अब तक करीब 7,000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा भेन। ये से शहर को सामान्य कूड़ा से अलग कन पर कांवड़ यात्रा का दौरान करीब 4 से 4,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त कूड़ा मिली। जमा कूड़ा तय सराय स्थित प्रोसेसिंग प्लांट और MRF सेंटर भेजी जानू छ। देहरादून जिला प्रशासन दलहन उत्पादन बढ़ोन और एग्री स्टैक योजना ते प्रभावी बढ़ोन की तैयारियां तेज करीन। ये संबंध में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहानन कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में अधिकारियों ते अरहर उड़द और मसूर को रकबा बढ़ोन खुणी क्लस्टर चिन्हित कर माइक्रो प्लान तैयार करन का निर्देश दिनी। उन किसानों ते उन्नत बीज उत्पादन और आधुनिक कृषि तकनीकों को प्रशिक्षण देन का दगड़ी इंटरक्रॉपिंग और बंजर भूमि का उपयोग ते बढ़ावा देन पर जोर दिनी। जिलाधिकारी ने किसानों ते गन्ने की पंक्तियों का बीज खाली जगह में दालों की खेती खुणी प्रोत्साहित करन की बात भी बोली। उन बोली कि धान गेहूं का पारंपरिक फसल चक्र में दलहन ते शामिल करन से मिट्टी की उर्वरता बढ़ली और किसानों की आय में वृद्धि होली। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र राणा ने बताया कि जिला में वर्ष 2030-31 तक उड़द को रकबा 470 से 754 हेक्टेयर, अरहर को 286 से 457 और मसूर को 242 से बढ़े की 427 हेक्टेयर कन को लक्ष्य रख्यू छ। देहरादून जिला का विकास नगर में हर घर तिरंगा अभियान का तहत आज डाक पत्थर मुख्य मार्ग पर स्कूली बच्चों और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान का नेतृत्व में निकाली यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं क्षेत्रीय लोगों और स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेनी। ये दौरान लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगेन। विधायक मुन्ना सिंह चौहानन लोगों से अपड़ा घरों में तिरंगा फहराण और राष्ट्र के प्रति सम्मान एकता और देशभक्ति की भावना तय मजबूत कन को आह्वान करी।
1: हम अभिनंदन करेंगे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने देश के युवाओं में, देश के नागरिकों में, हर परिवार में राष्ट्र भावना को जागृत करने के लिए घर घर तिरंगा अभियान को एक आंदोलन बना दिया। आज उसी क्रम में ये भव्य तिरंगा यात्रा यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डाक पत्थर की तरफ से निकाली गई।
0: तिरंगा यात्रा में शामिल स्कूली छात्रा नव्या नोटाल भी काफी उत्साहित नजर आईं।
2: हमारे विद्यालय में रैली निकाली गई हर घर तिरंगा और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हमारे अध्यापक हैं, हमारी अध्यापिकाएं और सारे छात्र छात्राएं और एवं हमारे प्रधानाचार्य जी, हम सब ने मिलकर हर घर तिरंगा रैली निकाली और इससे हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें मतलब अनेकता में एकता हमारे देश में और ये जो हमारे अंदर के हृदय की जो भी मतलब अच्छाई है, हम सब एक है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग वो है, बट हम सब एक है, ये इसका प्रतीक है।
0: रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी विशाल मिश्रा आज संगम बाजार स्थित आंगनवाड़ी केंद्र को निरीक्षण करी। ये दौरान उन केंद्र में संचालित गतिविधि और बच्चों तय दी जानी सुविधाओं की जानकारी लेनी। जिलाधिकारी नौनिहालों से उनकी पसंद और रुचियों का बारे में भी बातचीत करी। उनको उत्साहवर्धन करी।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानू जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: उत्तराखंड में मानसून की बाधाओं और चुनौतियों का बावजूद चारधाम यात्रा नयू रिकॉर्ड बनोन की ओर अगासर छ। 10 अगस्त तक ये यात्राकाल का 114 दिनों में ही श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख का पार पहुंची, जो पिछले साल की तुलना में 4.5 लाख से अधिक छ। ये माँ बद्रीनाथ में 16,12,000, केदारनाथ में 14,50,000, गंगोत्री में 7,37,000 और यमुनोत्री में 6,62,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल छन। वकि हेमकुंड साहिब में करीब 2,40,000 श्रद्धालुओं दर्शन करी। चारधाम यात्रा ते पूरी सतर्कता और निगरानी के साथ संचालित कैरी जानू छ। वकी मुख्यमंत्री

0: मंत्री ने राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष का माध्यम से व्यवस्थाओं और आपदा प्रबंधन पर लगातार नजर रखी च। श्री धामीन बोली कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता च। मानसून तय देखी आपदा प्रबंधन तंत्र तय 24 घंटे अलर्ट में रखियों च और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जवान तैनात करिया छन। श्रद्धालुओं खूनी मौसम की स्थिति तय देखी यात्रा कन की सलाह दी जानी च। नैनीताल जिला का भवाली में आज नाबार्ड की ओर से हथकरघा क्षेत्र से जुड़िया बुनकरों और कारीगरों खड़ी एक दिवसीय जागरूकता व संवाद कार्यशाला आयोजित करी गई। यह अवसर पर स्थानीय कला कौशल और परंपरा का संरक्षण और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वाला लगभग 10 बुनकरों और कारीगरों से सम्मानित करी गई। नाबार्ड का जिला विकास प्रबंधक मुकेश बेलवाला ने बताया कि नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, कौशल विकास, स्वयं सहायता समूह, उत्पादक संगठनों और अन्य विकासात्मक पहलों को माध्यम से स्थानीय कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों तय अगेन बढ़ोन खुड़ी निरंतर प्रयासरत च।
1: ये कार्यशाला आयोजित की थी, इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं, चाहे DIC से हैं, लीड बैंक से हैं, चाहे बैंक के प्रतिनिधि हैं, सब यहाँ उपस्थित थे। बड़े अच्छी बातचीत यहाँ पर हो पाई है और महिलाओं से संवाद हो पाया कि किस क्षेत्र में कार्य किया जा संभावना है। तो यहाँ पर हमें देख पा रहे थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में संभावनाएं काफी सारी है और हैंडलूम सेक्टर को आगे और अगर इसमें नाबार्ड मदद कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो और हमारी जैसे RCT है या JSS है, उन सबका सहयोग रहेगा तो आने वाले समय पर अच्छा क्लस्टर यहाँ पर हम लोग डेवलप कर पाएंगे।
0: वकी सम्मानित हुई प्रियंका ने बताया कि कार्यशाला में उतरे हथकरघा और हस्तशिल्प का बारे में बहुत कुछ नई सीखने को मिली।
2: मैं इसमें हैंडलूम और हस्तशिल्प के बारे में जानकारी मिली कि कैसे हैंडलूम का काम होता है और कैसे हस्तशिल्प में लेडीजें ऐपन कर रही हैं, मोमबत्ती का कर रही हैं और बुलन का कर रही हैं, जूट का कर रही हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाएं कर रही हैं जिनकी जानकारी हमें भी नहीं थी। यहाँ पे आके हमने बहुत सारी नई नई चीजें देखी और उनसे सीखा कि कैसे वो लोग करती हैं, इतनी मेहनत से काम करती हैं। यहाँ पे आके काफी अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिला हमें।
0: राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में च। समारोह ते भव्य अनुशासित और सुरक्षित बढ़ोन खुणी प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क च। आज जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभालन कार्यक्रम स्थल को निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करी। जिलाधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों ते माइक्रो प्लानिंग का तहत आपसी बातचीत से काम करने का निर्देश दिनी।
3: ओवरऑल प्रेपरेशन हमारी परेड या उससे रिलेटेड जो कल्चरल प्रोग्राम्स और जो चीज़ें रहती है वो स्ट्रीमलाइंड भी हैं या उसमें तैयारियां हमारी चली रही हैं, और बाकी जो डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सफाई से रिलेटेड या वाटर सप्लाई को लेकर या दूसरे जो डिपार्टमेंट ब्यूटिफिकेशन को लेकर इस पूरे एरिया के, उन सारे डिपार्टमेंट्स का अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
0: स्वतंत्रता दिवस और स्वच्छ भारत मिशन का उपलक्ष्य में टिहरी जिला की कीर्तिनगर नगर पंचायत में आज व्यापक स्वच्छता अभियान चले। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉ. राकेश मोहन मैठाणी का नेतृत्व में पर्यावरण मित्र कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों मुख्य बाजार कीर्तिनगर से लेकर रामपुर पुल आदि क्षेत्रों में विशेष साफ सफाई अभियान चले। ये दौरान कूड़ा कचरा हटौन का दगड़ी सड़क किनारा और सार्वजनिक स्थलों की सफाई करी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांवड़ यात्रा का संपन्न होने के बाद हरिद्वार नगर निगमन पूरा शहर और प्रमुख घाटों पर वृहद सफाई अभियान शुरू करी। देहरादून जिला प्रशासन दलहन उत्पादन बढ़ोन और एग्री स्टैक योजना ते प्रभावी बढ़ोन की तैयारियां तेज करी। प्रदेश सरकार का बेहतर आपदा प्रबंधन और इंतजामों का चलते चार धाम यात्रा नयू कीर्तिमान बढ़ोन की ओर अग्रसर च। श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख का पार भेन। और नैनीताल जिला का भवाली मां हथकरघा क्षेत्र से जुड़िया बुनकरों और कारीगरों खुणी जागरूकता कार्यशाला को आयोजन। ये का दगड़ी ही गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों को अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
4: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार, सभी किसान साथियों का स्वागत है आज के कार्यक्रम कृषि जगत में। और आज आपके साथ मैं हूं आपकी साथी मीरा नेगी। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ आप अपने सभी कृषि कार्यों को भी समय से पूरा कर रहे होंगे। साथियों, हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और युवा केवल उम्र नहीं बल्कि ऊर्जा, सोच और बदलाव की शक्ति का नाम है जो हमारे भविष्य को दिशा देती है। साथियों, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी और शक्ति होते हैं, इसलिए युवाओं की समस्याओं को, उनकी जरूरतों को और उनकी क्षमता को समझना हमारे समाज और सरकार के लिए बहुत जरूरी है ताकि उन सभी युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। साथियों, दुनिया भर में युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन सभी युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तकनीक और आगे बढ़ने के समान अवसर नहीं मिल पाते। कहीं बेरोजगारी बड़ी समस्या है, कहीं शिक्षा की कमी है और कहीं आर्थिक तंगी। इसके अलावा मानसिक दबाव, नशे की समस्या, सही जानकारी का अभाव और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, ये सभी समस्याएं हमारे युवाओं को प्रभावित करती हैं। साथियों, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमें याद दिलाता है कि युवाओं की बात सुनी जाए, उनकी सभी समस्याओं को समझा जाए और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं। क्योंकि साथियों, जब युवा आगे बढ़ते हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, जब परिवार आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है और समाज के साथ साथ हमारा देश भी आगे बढ़ता है। याद रखिए, आज का जागरूक युवा ही कल के मजबूत राष्ट्र की नींव और भविष्य है। और अब साथियों, इसी के साथ समय है संगीत में विराम लेने का, तो सुनते हैं ये रागिनी।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: साथियों स्वागत है एक बार फिर से आपका। साथियों हमारे देश में खेती का बहुत बड़ा आधार मिट्टी है, जिसे हम अक्सर बहुत साधारण समझ लेते हैं, लेकिन अगर मिट्टी ना होती तो क्या हमारे खेत लहलहाते, क्या पेड़ पौधे उगते और क्या हमें अनाज फल और सब्जियां मिलती? तो शायद नहीं। तो जब मिट्टी हमारे जीवन का आधार है तो हमें भी मिट्टी से जुड़ी परेशानियों को, उसकी समस्याओं को समझना होगा और उसकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा। साथियों आज हमारी मिट्टी कई सारी समस्याओं का सामना कर रही है, जैसे कि लगातार एक ही फसल उगाना, ज़रूरत से ज़्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल, फसल के अवशेषों को जलाना, मिट्टी का कटाव और पानी का गलत प्रबंधन। इन सब का असर मिट्टी की सेहत पर पड़ता है और जब मिट्टी की सेहत खराब होगी तो फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों ही प्रभावित होंगे। साथियों इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो गया है भेंटवार्ता का, जिसमें सहकारिता से ग्रामीण विकास विषय पर सुनिए कृष्णानंद डिमरी की बातचीत।
3: किसान साथियों आज हमारे साथ उपस्थित हैं सेवा निवृत्त वरिष्ठ नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा नंद डिमरी। हमसे बातचीत करेंगे सहकारिता से ग्रामीण विकास के बारे में। तो कृष्णा नंद डिमरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: नमस्कार।
3: सबसे पहले तो कृष्णा नंद जी, आप सहकारिता से क्या तात्पर्य है इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए, ताकि हमारे किसान साथी जान सकें कि इससे क्या समझ में आता है।
4: नमस्कार श्रोताओं, सहकारिता शब्द में ही इसकी व्यापकता निहित है। प्राचीन समय से ही हमारे समाज में लोग अपना और सामाजिक कार्यों का निर्वहन सहकारिता के माध्यम से करते रहे हैं। सहकारिता का अर्थ है मिलकर चलना, मिलकर बढ़ना। आज सहकारिता की बहुत आवश्यकता है, विशेषकर हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय ग्रामीण अंचलों, जहाँ पर कृषि की जोत बहुत कम है और आय के साधन भी सीमित है। जीविका उपार्जन के लिए आज हमें सहकारिता के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है।
3: तो सहकारिता में आप लोग क्या क्या कार्य करते हैं जिससे कि ग्रामीण विकास होता है?
4: सहकारिता जो शब्द है उसके अनुसार हमारे उत्तराखंड में 2003 में सहकारिता अधिनियम लागू हुआ, जिसमें एक स्वायत्त सहकारिता भी है, जिसमें ग्रामीण लोग हैं वो आपस में मिलकर कार्य समिति बनाते हैं और स्वेच्छा से अपना कार्य शुरू करते हैं, उसका संचालन करते हैं। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता है। एक सहकारिता अधिनियम जो 2003 है उसके अनुसार जो हमारी न्याय पंचायत स्तर पर सहकारी समितियां होती हैं, जिला स्तर पर केंद्रीय समितियां होती हैं या जिला सहकारी बैंक बैठते हैं, जिला भेषज सहकारी समितियां, जिला सहकारी विकास संघ है, ऐसे ही प्रदेश स्तर प्रादेशिक सहकारी समिति है, प्रादेशिक सहकारी बैंक है, इनके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको अनेक प्रकार से सहायता मिलती है। वो अपना विकास, अपना कार्य, अपनी योजना बना सकते हैं, करते हैं। न्याय पंचायत स्तर पर जो समितियां होती हैं उसमें लोग समिति के माध्यम से कृषि कार्य के लिए खाद, बीज, ऋण अपने सहकारी समिति से लेते हैं और

0: अपनी उपज वहाँ रखते हैं
1: जी,
0: जिससे वो बाजार में अच्छे दामों पर दी जा सके।
1: किसानों का जो भी फसल उत्पादन होता है उसका जो एक रेट होता है उसको निर्धारित सहकारिता समिति ही करती है।
0: नहीं, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, क्योंकि
1: जी
0: बाजार में उतार चढ़ाव रहता है,
1: जी
0: किसानों के ऊपर कम दाम बन जाए,
1: जी
0: ऐसी स्थिति में जो सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य होता है फसलों
1: जी
0: का,
1: जी
0: फलों का या
1: जी
0: अन्य किसी वस्तुओं का भी,
1: जी
0: उनका भंडारण, वो खरीद करके भंडारण रखती है,
1: हाँ
0: और जब
1: जी
0: बाजार में अच्छे रेट होते हैं उनको
1: हाँ
0: बेचते हैं। इसका लाभ किसानों को भी होता है,
1: हाँ जी
0: और जो जिस समिति में वो रखते हैं उस
1: जी
0: समिति का जो लाभ होता है वो लाभ भी उन कृषकों को लाभांश के रूप में वितरित होता है। इसके अलावा जो सहकारी समितियां न्याय पंचायत पर हैं
1: जी
0: वो ऋण भी प्रदान करती है समितियों, क्योंकि वो जो सदस्य हैं
1: जी
0: वो उनके हिस्सेदार भी हैं और
1: जी
0: सहभागिता भी करते हैं, उसका संचालन भी करते हैं। तो इन ऋण समितियों में जिनको प्रारंभिक ऋण समिति, अब उनका नाम हो गया एम्पैक्स,
1: अच्छा
0: बहुउद्देशीय सहकारी समिति, ये समितियां अनेक कार्य कर रही हैं, जैसे खेती के अलावा, ऋण वितरण के अलावा, आपको अन्य कार्यों के लिए भी, जैसे दुधारू पशु, मुर्गी पालन,
1: हाँ जी
0: भेड़ पालन और जैविक खेती,
1: ठीक
0: करघा उद्योग, हस्तशिल्प के लिए,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: अनेक छोटे छोटे उद्योगों के लिए वो ऋण देते हैं कम ब्याज दर पर।
1: कम ब्याज दर पे।
0: हाँ, और उनके उपज को भंडारित करके बाजार प्रदान करते हैं। इसके अलावा समिति का जो जो बचत होती है, किसानों की जो बचत होती है,
1: जी
0: उस बचत को उनका एक मिनी बैंक होता है जिसको आप ग्रामीण बचत केंद्र कहते हैं,
1: जी
0: पहले उन्हें मिनी बैंक कहता थे,
1: हाँ
0: अब उनमें
1: जी
0: होते ग्रामीण बचत केंद्र, उनकी जो जमा पूंजी है
1: जी
0: उसमें रख करके उनपे ब्याज देते हैं। तो इस तरह से उन सहकारी समितियों से उस ग्रामीण लोगों को दो तरह के लाभ होते हैं, एक
1: जी
0: तो उनको ऋण मिलता
1: ऋण
0: है,
1: मिलता है
0: दूसरी
1: ऋण
0: तरफ से उनकी जो उपज है उसका भंडारण होता है, और
1: जी
0: तीसरा जो उनका जो बचत होती है, जो आय होती है,
1: जी
0: उसको उस बचत केंद्र में, ग्रामीण बचत केंद्र में जमा करके उनको ब्याज भी मिलता है। तो इस तरह से लोगों को एक तो आय का साधन होता है,
1: जी
0: दूसरी बात जो स्वायत्त सहकारिता है, जो
1: जी
0: दूसरी हम सहकार स्वायत्त सहकारिता की बात करते हैं,
1: जी
0: उसमें सरकार का नियंत्रण तो नहीं होता है,
1: जी
0: लेकिन वो समितियां 7 से अधिक लोगों में एक समिति बनाते हैं,
1: जी
0: उसका पंजीकरण करते हैं सहकारिता विभाग में, उसके बाद अपना व्यवसाय चलाते हैं, जैसे
1: जी
0: पर्यटन में, पर्यटन के क्षेत्र के लिए,
1: जी
0: जैसे कि अपने श्रम संविदा सहकारिता, जो छोटे छोटे ठेके लेकर के जो श्रमिक हैं काम करते हैं, क्योंकि जोत कम है तो
1: जी
0: उनको आय का साधन होता है।
1: जैसे गांव में आजकल क्या है कि जैसे शहर के जो लोग हैं वो गांव में घूमने आते हैं। जैसे
0: होम
1: आपने
0: स्टे।
1: बोला कि आप रुद्रप्रयाग से हैं, तो रुद्रप्रयाग एक जो है टूरिस्ट प्लेस भी है जी, धार्मिक भी है, तो लोग वहां घूमने आते हैं। तो आजकल एक और मतलब रोजगार का
0: होम
1: साधन
0: स्टे।
1: बन गया है कि लोग अपने घरों को होम
0: होम
1: स्टे
0: स्टे।
1: बना देते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो होम स्टे से उनको एक इनकम भी आती है। तो क्या सहकारिता समिति इसमें भी मदद करती है?
0: बिल्कुल ऐसा है कि ये लोग क्या कर सहकारिता के माध्यम से गांव में, आसपास के घरों में सभी
1: जी
0: लोग पर्यटन को रखते हैं, उनको अपना हाथ का बनाया भोजन खिलाते हैं,
1: जी
0: वहाँ के जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको उनको बनाते हैं, और उससे लोग आकर्षित होते हैं, पर्यटकों को उससे शांति मिलती है, एकांत मिलता है, और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जो खाद्यान्न हैं उनका उपयोग भी करते हैं, उनका
1: जी
0: लाभ भी लेते हैं, और
1: जी
0: हमारे जो घर में सब परिवार में काम करने वाले उनको
1: जी
0: आय का साधन भी मिलता है, उनको
1: जी
0: रोजगार भी मिलता है।
1: जी
0: तो बाहर में जा करके लोगों को होम स्टे, जिसको कहते हैं हम होम स्टे के द्वारा, वो दो लाभ कर रहे हैं, एक तो उनका घर भी सुरक्षित रह रहा है, सब
1: जी
0: साथ रह रहे, परिवार साथ में रह रहा है, और
1: जी
0: सबको जीविकोपार्जन का साधन भी मिल रहा है, आय
1: हाँ
0: तो बढ़ी रही है।
1: हाँ
0: तो इसके
1: जी
0: माध्यम से सहकारी बैंकों के माध्यम से उनको ऋण दिया जाता है, अगर उन्हें ऋण की आवश्यकता है
1: जी
0: तो ऋण सहकारी बैंकों के माध्यम से, क्योंकि ये
1: जी
0: मध्यकाल ऋण है, बड़ा ऋण होता है, तो
1: जी
0: सहकारी समिति तो कम स्तर की हुए,
1: जी
0: लेकिन उनकी जो केंद्रीय समिति जिनको जिला सहकारी बैंक कहते हैं,
1: जी
0: उनके माध्यम से उनको ऋण मुहैया कराया जाता
1: जी
0: है और वो उनसे लाभ ले सकते हैं।
1: तो कृष्णानंद जी, जैसे आपने बोला कि जो सहकारिता समिति होती है वो किसी भी गवर्नमेंट की योजना से जुड़ी हुई नहीं होती है, लेकिन क्या सहकारिता समिति गवर्नमेंट की योजनाओं से कोई लाभ जो हम अपने ग्रामीण लोगों को दे सकते हैं, अपने किसानों तक पहुंचा सकते हैं, क्या ऐसा भी कार्य करती है?
0: जो सहकारी समितियां, जो प्रारंभिक ऋण समितियां हैं,
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: सरकार के नियंत्रण में ही काम करती हैं, उनका पर्यवेक्षण होता है, भले उनकी स्वतंत्र बॉडी होती है
1: जी
0: और उसको चलाते भी हैं जो
1: हाँ
0: सहकारी समिति के पदाधिकारी चलाते हैं,
1: जी
0: लेकिन उस पर सरकार का नियंत्रण रहता है,
1: नियंत्रण रहता
0: पर्यवेक्षण
1: है
0: रहता है, और
1: जी।
0: सरकार हिस्सा भी रहता है उसका, एक सदस्य सरकार भी रहती है, तो
1: ओके
0: सरकार उसको आर्थिक मदद भी करती है, समिति को भी
1: जी
0: करती है और सदस्यों के हित के लिए सहायता भी देती है।
1: जी
0: जो सरकार के अन्य योगदान अनुदान की
1: हाँ
0: योजनाएं हैं
1: हाँ हाँ
0: वो
1: हाँ
0: सहकारी समिति के माध्यम से ही होती हैं, क्योंकि
1: मतलब
0: व्यक्तिगत रूप से
1: हाँ
0: सरकार कोई अनुदान नहीं देती,
1: राइट राइट
0: सहकारी समिति के
1: हाँ
0: माध्यम से ग्रामीण लोगों को
1: जी।
0: सहायता भी, उनको अनुदान सहायता भी
1: तो
0: मिलती है।
1: सहकारिता समिति
0: जी
1: गवर्नमेंट और किसानों के बीच का एक कनेक्शन
0: एक
1: है,
0: हाँ, बीच का एक पुल
1: एक
0: का काम
1: जोड़
0: करती
1: है
0: है। हाँ, यो
1: जिसके थ्रू जो है जो गवर्नमेंट

0: योजनाएं जो किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए बनाई जाती हैं, सहकारिता समिति उसको लोगों तक पहुंचाती
1: हाँ
0: है
1: समित
0: और उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताती है।
1: बिल्कुल, न्याय पंचायत स्तर में जितनी भी है उसके बाद जिले में जो है वो सब समितियां एक बैंक बनाती हैं जिसको हम जिला सहकारी बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक नाम है उसका।
0: जी
1: वो समितियां उस बैंक की सदस्य होती है और उस बैंक में भी सरकार का शेयर होता है,
0: जी
1: सरकार उस बैंक की भी जिला सहकारी बैंक की शेयर रखती है, तो वहां भी सरकार का आंशिक रूप से नियंत्रण रहता है।
0: जी
1: भले वो बॉडी उनकी स्वतंत्र, संचालन उनका स्वतंत्र होता
0: हाँ
1: है,
0: हाँ हाँ
1: बोर्ड
0: हाँ
1: होता है,
0: हाँ
1: लेकिन
0: जी
1: सरकार का उससे पर्यवेक्षण रहता है
0: जी
1: और सरकार की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से किसानों को मिलती रहती है। तो
0: जी
1: इससे सदस्यों को दो लाभ होते हैं, एक तो अगर जब सहकारी बैंक लाभ में होते हैं या सहकारी समितियां लाभ में होती हैं तो उनका लाभांश भी मिलता है, सरकार की योजनाएं तो मिलती हैं लेकिन जो उनका शेयर वहां जमा है उसे लाभांश मिलता है, जिसके हिसाब से उनका शेयर होता है उसके हिसाब से ग्रामीणों को या सदस्यों को उनका लाभांश भी मिलता है।
0: जी
1: तो इस तरह से सरकार की योजनाएं सहकारी बैंकों के माध्यम से और सहकारी समिति के माध्यम से ग्रामीण को मिलती है
0: जी
1: सीधे, जो
0: जी
1: सरकार सीधा कोई लाभ नहीं देती।
0: जैसे आपने बताया कि आप भंडारण के लिए किसानों की मदद करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं?
1: हमारे गांव में चौलाई होती है,
0: हाँ
1: राजमा
0: जी
1: होती है,
0: जी
1: जड़ी बूटियां होती हैं, और जैसे नींबू है, माल्टा है जिसको
0: हाँ
1: हम गलगल भी कहते हैं,
0: हाँ
1: इस
0: जी
1: तरह से फल भी होते हैं, फल
0: जी
1: है, कई चीज ऐसे होते हैं, आलू है, तो इनका भंडारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, व्यापार बाजार में कहाँ रखें। तो हमारे न्याय पंचायत पर ग्रामीण गोदाम बने हैं समितियों में, तो
0: अच्छा
1: समितियां उसको क्रय करती हैं, क्रय करके जो मनवा है, झंगोरा है, जो हमारे उत्पाद स्थानीय उत्पाद है, राजमा
0: जी
1: है,
0: हाँ
1: इनको बेचने का साधन कोई है नहीं, ऐसे मार्केट है नहीं, समितियां उनको खरीदती हैं, सरकार उसका समर्थन मूल्य घोषित कर देती है
0: जी
1: और उसे कम से कम मूल्य है, अधिक से अधिक पे तो खरीद सकती है।
0: हाँ
1: तो जड़ी बूटियां हैं तो उनका संग्रह करके और
0: हाँ
1: समिति गोदाम में रखती है और उनको
0: जी
1: मार्केट प्रदान करती है जिला सहकारी संघ से, उनके माध्यम से उनको भेज करके और मार्केट प्रदान करती है। तो उनका एक तो उत्पाद खरीदती है उसका उचित मूल्य मिलता है और
0: हाँ
1: दूसरा भंडारण की समस्या नहीं रहती है,
0: हाँ मतलब उनको अच्छे से संभाल के रखा
1: संभाल
0: जा
1: के
0: सकता है
1: रखती है
0: ताकि जो उनका
1: और
0: फसल है वो
1: मार्केट में भेज
0: खराब ना
1: जब
0: हो।
1: बाजार में उसकी मांग ज्यादा हो तो
0: हाँ
1: भंडार में
0: तब वो भंडार
1: बाजार में
0: से
1: भेजती
0: निकाल
1: है।
0: के
1: हाँ,
0: और
1: तो
0: बाजार
1: उनको
0: तक
1: आय भी
0: पहुंचा
1: होती
0: सकते
1: है,
0: हैं।
1: उनकी समस्या भी नहीं रहती है
0: जी
1: और उनका जो उपज है वो उनको मिलती रहती है। इसमें अनेक व्यवसाय है, व्यवसाय करने के लिए बहुत व्यवसाय है, जैसे कुक्कुट पालन है, भेड़ पालन, तो समय जगह कम है, स्थान कम है, कम
0: हाँ
1: जगह पर आदमी जो कृषक है, स्थानीय लोग हैं, अपनी आय के लिए कुक्कुट पालन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका अन्य जो व्यवसाय है, जड़ी बूटी का संग्रहण करके, हथकरघा से काम करके, अन्य जो छोटे छोटे साधन है उनसे अपने आय बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इनके जो कार्य करने के तरीके हैं उनमें जो आप दुधार पशु
0: हाँ जी
1: डेयरी के, उसके लिए भी सरकार अनुदान देती है,
0: जी
1: आप डेयरी खोलेंगे तो
0: हाँ
1: आपका दूध क्रय करके
0: हाँ
1: और उचित मूल्य पर बेचती भी है और
0: हाँ
1: वो उसका उनसे सहकारिता तो बनती है, आपस में आय बढ़ती
0: हाँ
1: है, लेकिन
0: हाँ
1: सरकार उसमें अनुदान देती है, तो
0: अच्छा
1: पशुपालन के लिए भी देती है,
0: हाँ जी
1: आप भेड़ पालन करें, बकरी पालन, उसके लिए भी वो एक व्यवसाय है, उसके लिए भी सरकार अनुदान भी देती है और उनके जो बैंक हैं जिला सहकारी बैंक वो कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध
0: ऋण
1: कराते
0: भी
1: हैं।
0: उपलब्ध
1: तो
0: कराते हैं।
1: सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिसमें जो किसान है वो अपना आय प्राप्त कर सकते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, तो इसमें इसका बहुत बड़ा स्कोप है।
0: तो जैसे रुद्रप्रयाग जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर ज्यादातर उनकी क्या समस्याएं होती हैं?
1: अभी जो रुद्रप्रयाग क्षेत्र है उसका पहाड़ी ऊपरी वाला क्षेत्र है,
0: हाँ जी
1: उसमें चौलाई होती है,
0: जी
1: राजमा होती है, तो
0: जी
1: उसका जो है समितियां है उसको भंडारण करके उनको बेचती हैं। दूसरी समिति वहां की मूल रूप जो प्रारंभिक ऋण समिति है जिसको हम पैक्स कहते हैं, बौद्धिक सहकार समिति, वो उनको ऋण प्रदान करती है,
0: जी
1: किसके लिए, पशुपालन मुख्य रूप से वहां पर, क्योंकि ग्रामीण जो पर्वत क्षेत्र है पशुपालन तो उनका मुख्य वो है,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: पशुपालन जिसमें दुधारू पशु हैं,
0: जी
1: भेड़ बकरी है, उसके लिए
0: जी
1: ऋण देती हैं और वो अपना व्यवसाय करते हैं, उनसे उनसे लाभ भी होता है, आय भी होती है। और अब लोग इससे काफी जुड़ने लग गए हैं, जब से इसमें लोगों को ये लगा कि भाई इससे काफी लाभ है, मार्केट है, क्योंकि रुद्रप्रयाग तो पर्यटन भी और धार्मिक दृश्य भी है, तो वहां पर होम स्टे चला रहे हैं लोग, हर गांव के आसपास, सड़क के आसपास लोगों ने होम स्टे खोले हुए हैं, लेकिन क्योंकि जानकारी ज्यादा नहीं है तो अब सरकार जो है उनको सहकारी समितियों के माध्यम या सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा करके वो अपना व्यवसाय चला रहे हैं और लोगों को जीविकोपार्जन भी
0: लोगों ने, जैसे कि आपने बोला कि लोगों ने होम स्टे बनाए हुए हैं,
1: जी।
0: तो होम स्टे में जो वहां का खान पान है वो ही जो है
1: हाँ, स्थानीय
0: मेहमानों
1: उत्पाद
0: को
1: से जो
0: दिया
1: है,
0: जाता
1: हाँ
0: है,
1: जी, झंगोरा
0: तो
1: है,
0: हाँ
1: मंडवे की रोटी है, इस
0: जी
1: तरह के जो स्थानीय उत्पाद है।
0: हाँ जी।
1: तो उससे दो लाभ हुए, एक तो उत्पादन हुआ जिसमें हाँ उत्पादन हुआ
0: जी,
1: स्थानीय रूप में वो बिक भी गया,
0: बिक भी गया,
1: उनका व्यवसाय भी बना
0: जी,
1: उनको रोजगार

0: जी
1: तो इससे कई लाभ है,
0: हाँ जी
1: व्यापारिक लाभ भी है, आर्थिक लाभ भी है और रोजगार तो
0: दोनों
1: है ही, क्योंकि बाजार
0: आवश्यकता
1: में
0: है।
1: कि जो मूल्य है ऊपर नीचे होते रहते हैं,
0: हाँ
1: आपको कम मूल्य में बेचना पड़ सकता है।
0: हाँ जी
1: आपके समिति एक सरकार के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उस
0: हाँ
1: पे आप
0: जी
1: रख दीजिए, बाजार ज्यादा जाएगा तो आपका मार्केट अधिक जाएगा, नहीं तो
0: जी
1: उतना मूल्य तो आपने खरीद दिया
0: जी
1: तो उसको बाजार में बेचने की आवश्यकता नहीं है। चाहे
0: जी
1: उनका जो भी उत्पाद है
0: जी
1: वो वहां भंडारण भी कर देगा
0: जी
1: और उनको रोजगार भी मिला हुआ है, तो दोनों काम हो रहे हैं आपको उस
0: जी
1: समिति के माध्यम से।
0: तो कृष्णानंद जी, आपसे एक सवाल और मैं पूछना
1: जी
0: चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि वहां पर ज्यादातर लोग फल, सब्जी और दूध उत्पादन करते
1: फलों
0: हैं। हाँ
1: में जैसे आपका माल्टा जिसको हम गलगल कहते हैं,
0: हाँ
1: वो
0: जी
1: ऊंचाई क्षेत्र में बहुत मात्रा में होता है,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: लोग उनका जूस निकालते हैं
0: हाँ
1: जिसको
0: जी
1: जिसको कहते हैं, तो
0: हाँ
1: वो भी खूब चल रहा है,
0: हाँ
1: उससे भी
0: जी
1: लोगों की रोजगारी बढ़ती है।
0: हाँ जी
1: स्थानीय जो जंगल है वहां पे बुरांस का है, तो
0: जी
1: बुरांस को एकत्रित करते हैं, उसका
0: जी
1: जूस
0: उसका
1: निकालते हैं,
0: जूस
1: तो वहां
0: बनाते
1: से भी लोगों को आय हो रही है, तो काफी उससे लोगों की
0: हैं।
1: आर्थिकी बढ़ी है और लोग उससे जागरूक भी हो गए हैं जब से लोगों ने माल्टे का काम करना शुरू किया। और अब तो लोग अपने छोटे छोटे स्टोर में जैसे आंवला का करके, आंवला का अचार बना करके,
0: जी, अचार,
1: जैम बना
0: जूस,
1: करके,
0: जैम। हाँ,
1: हाँ
0: जैसे आपने बोला कि जो लोग हैं वो जूस निकालते हैं, आंवले का अचार बनाते हैं, जैम बनाते हैं, तो इस चीज़ का प्रशिक्षण भी आप लोग दिलाते हैं उनको?
1: हाँ उनको सहकारिता के माध्यम से, जैसे आपके उद्यान विभाग के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिलाते हैं, क्योंकि हम लोग सहकारिता विभाग का कृषि विभाग से और उद्यान विभाग से और विभाग से समन्वय रहता है, तो अपने किसानों को वो उनको प्रेरित करते हैं कि आप प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण के माध्यम से
0: जी
1: अच्छा से अच्छा कार्य करें उसमें, ताकि आपको अच्छी आय भी हो, आपका उत्पाद मार्केट में अच्छे ढंग से
0: जी
1: बिके।
0: हाँ जी
1: आप अपने आय सहकारिता के माध्यम से बढ़ा सकते
0: बढ़ा
1: हैं,
0: सकते हैं।
1: अपने सहकार समिति सदस्य बनकर के
0: हाँ जी
1: अपना धंधा, अपना
0: जी
1: व्यवसाय
0: जी
1: स्वयं कर सकते हैं और अपनी
0: जी
1: आर्थिकी बढ़ा
0: बढ़ा
1: सकते हैं।
0: सकते हैं। तो कृष्णानंद जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आप।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसमें सहकारिता से ग्रामीण विकास विषय पर कृष्णानंद डिमरी की बातचीत आपने सुनी। उम्मीद है साथियों, आप इस भेंटवार्ता से लाभ जरूर लेंगे। साथियों, कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में। मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए साथियों, आप फसल चक्र अपनाएं, जैविक खाद और कंपोस्ट का उपयोग करें, खेत में जरूरत के अनुसार ही उर्वरकों का इस्तेमाल करें और मिट्टी के कटाव को रोकें। समय समय पर मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि जांच कराने से यह पता चल जाता है कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और किन की कमी है, और जांच के आधार पर हमारे किसान भाई उचित मात्रा में खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करके उसमें होने वाली कमी को पूरा कर सकते हैं। साथियों, कार्यक्रम में अब समय है अगले गीत का, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: किसान साथियों, अगर आपकी कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित या फिर मृदा यानी कि मिट्टी से जुड़ी कोई भी समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमें प्रत्येक शुक्रवार 1:30 से 2 बजे के मध्य कॉल कर सकते हैं। हम आपकी बातचीत विशेषज्ञ से करवाएंगे हेलो किसान कार्यक्रम में। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7088001382। नंबर एक बार और सुन लीजिए, 7088001382। किसान साथियों, हमें कॉल करना ना भूलें, हमें आपके कॉल का इंतजार रहेगा। और अब साथियों, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, देहरादून 2480001। आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। साथियों, अब अपनी साथी मीरा नेगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: FM 106.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से भी आप सुन रहे थे किसान साथियों के साथ उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:29 हुए हैं। अब प्रस्तुत हैं कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नौदगढ़ी ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद हरिद्वार निगमल पुर शहर और प्रमुख बाटों पर ठुल सफाई अभियान शुरू करो। देहरादून जिला प्रशासनल दलहन उत्पादन बढ़ून और एग्री स्टैक योजना के प्रभावी बढ़ूनक तैयारी तेज करी। प्रदेश सरकारक भाल आपदा प्रबंधन और इंतजामों का चलते चारधाम यात्रा नयू कीर्तिमान बढ़ूनक और अग्रसर। श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख है पार भे। और नैनीताल जिला भवाली में हथकरघा क्षेत्र बठे जुड़ी बुनकरों और कारीगरों के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन।

0: मेजबान ने कुड़कियां अलग कर दी तो कांवड़ यात्रा दौरान करीब 4 से 4.5 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त गुड़ मिलो और ये इकट्ठ कर वे सराय स्थित प्रोसेसिंग प्लांट और MRF सेंटर भेजी जानो। देहरादून जिले प्रशासन दलहन उत्पादन बढ़ून और एग्री स्टेक योजना के प्रभावी बढ़ूनक तैयारी तेज कर हाली। यो संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहानल कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में अधिकारियों के अरहर मांस और उड़दक खेती जाग बढ़ूनक लीजी क्लस्टर चिन्हित कर बेर माइक्रो प्लान तैयार करनक निर्देश दीन। उनल किसानों के उन्नत बीज बीज उत्पादन और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रशिक्षण देनक दगार इंटर क्रॉपिंग और बंजर भूमि उपयोग के बढ़ावा देने पर जोर दियो। जिलाधिकारी किसानों के रिखुक पंक्तियों के बीच खाली पड़ी जाग में दालों की खेती के लिए प्रोत्साहित करी जाने बात ले को उनल को कि धान और गेहूं पारंपरिक फसल चक्र में दलहन के शामिल करनल माटक उर्वरता बढ़ जाली और किसानों की आय में ले वृद्धि होली। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र राणाल बताए कि जिले में साल 2030-31 तक मासक खेती 470 है बढ़ावे 775 हेक्टेयर कर्णक और अरहर के 286/457 और मसूर के लगभग 242/427 हेक्टेयर कर्णक लक्ष्य राखी गयो। देहरादून जिलक विकास नगर में घर घर तिरंगा अभियानक भीतर आज डाक पत्थर मुख्य बाट में स्कूली छात्र छात्राओं और भारतीय जनता पार्टी ओर बठे ठोल तिरंगा यात्रा निकाली गये। स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहानक नेतृत्व में निकाली गई यात्रा में ठोल संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं क्षेत्रीय लोगों और स्कूली नांतिनौल उत्साहपूर्वक भाग ले। यो दौरान लोगों के हाथ में राष्ट्रीय झंडे लिबेर भारत माता की जय और वंदे मातरमक नार लगाई। मुन्ना सिंह चौहानल लोगों में अपन घरों पर तिरंगा फहरून व राष्ट्रपति सम्मान एकता और देशभक्ति की भावना के मजबूत करने का आह्वान करो।
1: अभिनंदन करेंगे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने देश के युवाओं में देश के नागरिकों में हर परिवार में राष्ट्र भावना को जागृत करने के लिए घर घर तिरंगा अभियान को एक आंदोलन बना दिया। आज उसी क्रम में ये भव्य तिरंगा यात्रा या सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डाक पत्थर की तरफ से निकाली गई।
0: तिरंगा यात्रा में शामिल स्कूली छात्रा नव्या नौटियाल बहुत उत्साहित नजर आये।
2: हमारे विद्यालय में रैली निकाली गई हर घर तिरंगा और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जितने भी टीचर्स है, हमारे अध्यापक है, हमारी अध्यापिकाएं और सारे छात्र छात्राएं और एवं हमारे प्रधानाचार्य जी, हम सबने मिलकर हर घर तिरंगा रैली निकाली और इससे हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें मतलब अनेकता में एकता हमारे देश में और ये जो हमारे अंदर के हृदय की जो भी मतलब अच्छाई है, हम सब एक है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग वो है, बट हम सब एक है, ये इसका प्रतीक है।
0: उत्तराखंड में मानसूनक बाधा और चुनौतियों के बावजूद चार धाम यात्रा नई रिकॉर्ड बढ़नक ओर अग्रसर छू। 10 अगस्त जाने यात्रा काल के 114 दिन में ही श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख है पार पुज गए, जो पिछले साल की तुलना में 4.5 लाख है जात छू। यमें बद्रीनाथ में 16,12,000, केदारनाथ में 14,50,000 और गंगोत्री में 7,37,000 और यमुनोत्री में 6,62,000 है जात श्रद्धालु शामिल छन। वहीं हेमकुंड साहिब में करीब 2,40,000 श्रद्धालु दर्शन कर हालीन और चार धाम यात्रा के पूर्व सतर्कता और देखरेखक दगर संचालित करी जानो। मानसून की सक्रियता के देखभेर सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई और मुख्यमंत्री राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के माध्यम व्यवस्थाओं और आपदा प्रबंधन पर लगातार निगरानी बनाए रखे छू और श्री धामिल को श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकारक सपने ठुल प्राथमिकता छू। रुद्रप्रयागक जिलाधिकारी विशाल मिश्राल आज संगम बाजार स्थित आंगनवाड़ी केंद्रक जांच करी और यो बखत उनल केंद्र में संचालित होने वाली गतिविधियों और नांतियों के दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ले और जिलाधिकारी नांतिनों थे उनरी पसंद और रुचिक बार में ले बातचीत करी और उनर उत्साहवर्धन करो।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपुलोक आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुन लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में ले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपू लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
0: नैनीताल जिलक भवाली में आज नाबार्डक ओर बठे हथकरघा क्षेत्र से जुड़ी बुनकरों और कारीगरों के लिए एक दिवसीय जागरूकता व संवाद कार्यशाला आयोजित करी गई। यो मौके पर स्थानीय कला कौशल और परंपराक संरक्षण व संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लगभग 10 बुनकरों और कारीगर

0: नगरों के सम्मानित करेगी। और नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक मुकेश बेलवालल बताए कि नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन और कौशल विकास, स्वयं सहायता समूह, उत्पादन संगठनों और विकासात्मक पहलों के माध्यम स्थानीय कारीगरों व ग्रामीण उद्यमियों के अघिन के बढ़ोनत लीजिए प्रयासरत छू।
1: ये कार्यशाला आयोजित की थी, इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं, चाहे डीआईसी से हैं, लीड बैंक से हैं, चाहे बैंक के प्रतिनिधि हैं, सब यहाँ उपस्थित थे। बड़े अच्छी बातचीत यहाँ पर हो पाई है और महिलाओं से संवाद हो पाया कि किस क्षेत्र में कार्य किया जा संभावना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में संभावनाएं काफी सारी है और हैंडलूम सेक्टर को आगे, और अगर इसमें नाबार्ड मदद कर रहे हैं इसलिए साथ में जो और हमारी जैसे RCT है या JSS है, उन सबका सहयोग रहेगा तो आने वाले समय पर एक अच्छा क्लस्टर यहाँ पर हम लोग डेवलप कर पाएंगे।
0: वहीं सम्मानित भाई प्रियंकाल बताए कि कार्यशाला में उनके हथकरघा और हस्तशिल्प के बारे में बहुत कुछ नहीं उसे खड़क लीजिए मिलो।
2: मैं इसमें हैंडलूम और हस्तशिल्प के बारे में जानकारी मिली कि कैसे हैंडलूम का काम होता है और कैसे हस्तशिल्प में लेडीजें ऐपन कर रही हैं, मोमबत्ती का कर रही हैं और बुलन का कर रही हैं, जूट का कर रही हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाएं कर रही हैं जिनकी जानकारी हमें भी नहीं थी। यहाँ पे आके हमने बहुत सारी नई नई चीजें देखी और उनसे सीखा कि कैसे वो लोग करती हैं, इतनी मेहनत से काम करती हैं। यहाँ पे आके काफी अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिला हमें।
0: राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में छन। समारोह के ठुल अनुशासित और सुरक्षित बनुन के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग जागरूक छन। आज जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबालल कार्यक्रम जागक निरीक्षण कर बीर व्यवस्थाओं की समीक्षा करी और जिलाधिकारी सपे नोडल अधिकारियों के माइक्रो प्लानिंग भीतर आपसी तालमेल काम करने निर्देश दें।
3: ओवरऑल प्रेपरेशन हमारी परेड या उससे रिलेटेड जो कल्चरल प्रोग्राम्स और जो चीज़ें रहती है वो स्ट्रीमलाइंड भी हैं या उसमें तैयारियां हमारी चली रही हैं, और बाकी जो डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सफाई से रिलेटेड या वाटर सप्लाई को लेकर या दूसरे जो डिपार्टमेंट ब्यूटिफिकेशन को लेकर इस पूरे एरिया के, उन सारे डिपार्टमेंट्स का अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
0: स्वतंत्रता दिवस और स्वच्छ भारत मिशन उपलक्ष्य में टिहरी जिला कीर्तिनगर और नगर पंचायत में आज व्यापक स्वच्छता अभियान चलाई गई। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मोहन मैठाणी के नेतृत्व में पर्यावरण मित्र, कार्मिकों, जनप्रतिनिधियों और वांग जर्नल मुख्य बाजार कीर्तिनगर बैठे लीबेर, रामपुर पुल आदि जगहों में विशेष सफाई अभियान चलाए। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज। कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद हरिद्वार नगर निगम पुर शहर और प्रमुख घाटों पर थुल सफाई अभियान शुरू करो। देहरादून जिला प्रशासनल दलहन उत्पादन बढ़ून और एग्री स्टैक योजना के प्रभावी बढ़ूनक तैयारियां तेज करें। प्रदेश सरकारल भल आपदा प्रबंधन और इंतजामों के चलते चार धाम यात्रा नयु कीर्तिमान बनाए और श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख है पार भी। और नैनीताल जिला भवाली में हथकरघा क्षेत्र से जुड़ी बुनकर और कारीगरों के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन करेगी। यह कदगढ़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यौन खत्म हूं। नमस्कार।
4: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोता स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म गुरु से आप सुन रहे थे मरियम तोलर, चिन्मय शिवदा, कीर्ति सगाथिया की आवाज़ में ये गीत जिसे लिखा था गुलजार ने और संगीत ए आर रहमान का था। अब सुनते हैं कार्यक्रम में आगे ये गीत, लहराता फहराता तिरंगा।

0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं, अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम RNU देहरादून की प्रस्तुति राज्य दर्शन।
1: सफर अगर पहाड़ों का हो तो रास्ते भी अपने आप में खास हो जाते हैं। कहीं बदलते मौसम का रंग, कहीं शांत वातावरण और कहीं रोमांच से भरा एक नया अनुभव। तो आइए आज की इस खास प्रस्तुति राज्य दर्शन में बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती है और शाम ढलते ही पहाड़ों की शांति मन को अपने आगोश में ले लेती है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आज के इस सफर की आपकी साथी पंकज सनवाल खुलबे। आज राज्य दर्शन के अंतर्गत हम बात कर रही हैं नैनीताल।

के पास बसे खूबसूरत पहाड़ी गांव पंगोट की। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों ये पर्यटक स्थल दूर दूर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित पंगोट एक शांत और खूबसूरत पहाड़ी गांव है। नैनीताल से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जगह समुद्र तल से लगभग 6,500 फीट की ऊंचाई पर बसी है। यहाँ पहुंचते ही शहर की भीड़भाड़ पीछे छूट जाती है और सामने दिखाई देते हैं घने जंगल, पहाड़ों की ढलानें और प्रकृति के मनमोहक दृश्य। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ बैठकर प्रकृति को निहारना, पहाड़ों की ठंडी हवा महसूस करना और आसपास के शांत वातावरण का आनंद लेना अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव है। पंगोट की खासियत सिर्फ इसके खूबसूरत नज़ारों तक सीमित नहीं है, ये इलाका पक्षी प्रेमियों के लिए भी काफी आकर्षक माना जाता है। पंगोट के जंगलों में कई तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं। यहाँ और इसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। यही वजह है कि देश विदेश से पक्षी प्रेमी यहाँ बर्ड वॉचिंग के लिए पहुंचते हैं। जंगलों में चलते हुए पक्षियों की आवाज सुनना और उन्हें अपने कैमरे में कैद करना अपने आप में एक यादगार अनुभव है। सुबह के समय जंगल की पगडंडियों पर निकलें तो पेड़ों के बीच से आती पक्षियों की आवाजें इस सफर को और खास बना देती हैं। घने ओक और रोडोडेंड्रॉन यानी बोरांस के जंगलों से गुजरते हुए प्रकृति की सैर करना यहाँ एक अलग अनुभव है। कहीं पेड़ों पर खिले फूल आपका ध्यान खींचते हैं तो कहीं पक्षियों की आवाजें आपको कुछ देर रुकने के लिए मजबूर कर देती हैं। यहाँ आपको लैमजियर, हिमालयन ग्रीफॉन, नीले पंखों वाला मिनिला, चित्तीदार और स्लेटी पीठ वाला फोर्कटेल, रूफस बेलीड वुडपैकर और विभिन्न प्रकार के हिमालय पक्षी प्रजातियां मिलेंगी। आसपास की पहाड़ियों और जंगलों में तेंदुए, घोरल और सांभर सहित कई अन्य वन्यजीव भी पाए जाते हैं। पंगोट सिर्फ पक्षियों के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति की सैर और फोटोग्राफी के लिए भी बेहतरीन जगह है। देवदार की जंगल, पहाड़ी रास्ते, फूलों से सजे पेड़ और दूर दिखाई देती हिमालय की चोटियां यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अगर आप कुछ समय शहर की भागदौड़ से दूर शांति में बिताना चाहते हैं तो पंगोट की नेचर वॉक आपके लिए खास अनुभव हो सकती है। यहाँ की पगडंडियों पर धीरे धीरे चलते हुए जंगल की खुशबू, पक्षियों की आवाज और पहाड़ों की ठंडी हवा को महसूस किया जा सकता है। ये क्षेत्र नंदा देवी श्रृंखला और किलबरी के हिमालयी दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। यही कारण है कि पंगोट वन्य जीवों, पक्षी अवलोकन या चारों ओर हरे भरे जंगलों और विशाल चोटियों के मनमोहक दृश्यों के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है। अगर आप प्रकृति की खूबसूरती के साथ रोमांच का अनुभव भी करना चाहते हैं तो पंगोट में जिप लाइनिंग का विकल्प आपको उत्साहित कर सकता है। कल्पना कीजिए, आप जमीन से ऊपर हैं, सामने पहाड़ों और जंगलों का खूबसूरत नजारा है और हवा के साथ आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। जिप लाइनिंग का ये रोमांच इसे युवाओं और एडवेंचर पसंद करने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाता है। हालांकि ऐसी गतिविधियों में सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए जिप लाइनिंग हमेशा प्रशिक्षित संचालकों की देखरेख और निर्धारित सुरक्षा नियमों के अनुसार ही करनी चाहिए। पंगोट में रोमांच का एक और अनुभव है बर्मा ब्रिज। रस्सियों से बना ये एडवेंचर ब्रिज अपने आप में रोमांचकारी अनुभव देता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस पुल पर आगे बढ़ता है, रस्सी का पुल हल्का हल्का हिलता है और हर कदम के साथ रोमांच बढ़ता जाता है। सुरक्षा हार्नेस के साथ इस गतिविधि को प्रशिक्षित विशेषज्ञों की निगरानी में कराया जाता है। अब बात उस गतिविधि की जिसमें पहाड़ को सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि उसके साथ कदम मिलाकर चला जाता है, यानी ट्रैकिंग। पंगोट ट्रैकिंग पसंद करने वालों के लिए भी एक शानदार स्थान है। यहाँ से आसपास के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाने वाले कई पैदल रास्ते हैं। इनमें किलबरी की ओर जाने वाला ट्रैक विशेष रूप से आकर्षक माना जाता है। जंगलों से होकर गुजरने वाला ये रास्ता प्रकृति को करीब से देखने का अवसर देता है। ट्रैकिंग के दौरान रास्ते में मिलने वाले पेड़ पौधे, पक्षी और पहाड़ी दृश्य सफर को और खूबसूरत बना देते हैं।
हालांकि किसी भी ट्रैक पर जाने से पहले मौसम

0: रास्ते की स्थिति और स्थानीय जानकारी होना जरूरी है। पंगोट से नैना पीक की ओर जाने वाला ट्रैक प्रकृति के खूबसूरत नजारों के बीच चलने का अवसर देता है। वहीं आसपास के अन्य ट्रैक भी पहाड़ी जंगलों और हिमालयी वातावरण को करीब से महसूस करने का मौका देते हैं। पंगोट में कैंपिंग भी पर्यटकों के बीच आकर्षण का एक कारण है। शहर की रोशनी और शोर से दूर जंगलों के बीच रात बिताने का अनुभव अलग ही होता है। साफ मौसम में रात के समय आसमान में चमकते तारों को देखना और चारों ओर फैली पहाड़ों की शांति को महसूस करना यात्रा को यादगार बना देता है। नैनीताल के नजदीक होने के कारण पंगोट पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये स्थान सुव्यवस्थित सड़क मार्ग से भली भांति जुड़ा हुआ है और सार्वजनिक परिवहन से भी आसानी से यहाँ पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से पंगोट की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 300 से 330 किलोमीटर है। इस सफर को तय करने में लगभग 7-8 घंटे का समय लगता है और अगर आप बस से यात्रा करें तो दिल्ली से पंगोट या किसी अन्य प्रमुख शहर से कोई सीधी बस नहीं है। आपको अपनी यात्रा को कम से कम दो भागों में करना होगा। पहला पड़ाव नैनीताल होगा, जो पंगोट का सबसे नजदीकी बस स्टॉप है। नैनीताल पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक होने के कारण नैनीताल के लिए नियमित बसें उपलब्ध हैं। नैनीताल पहुंचने के बाद बस स्टैंड से पंगोट के लिए दूसरी बस ले सकते हैं, जो आसानी से मिल जाती हैं। पंगोट से लगभग 50 किलोमीटर दूर सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन काठगोदाम है और पंगोट के सबसे नजदीक हवाई अड्डा पंतनगर है, जो लगभग 90 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से ही आपको नैनीताल या पंगोट जाने के लिए आसानी से टैक्सी मिल जाएगी। पंगोट वास्तव में होटल में ठहरने की जगह से ज्यादा एक कैंपिंग साइट है। यहाँ बहुत सारे कॉटेज, टेंट और रिसॉर्ट के बीच रहने का अनुभव मिलता है। यहाँ गर्मियों में मौसम सुहावना रहता है और प्रकृति की सैर, ट्रैकिंग व आसपास के क्षेत्रों को देखने के लिए ये अच्छा समय हो सकता है। मानसून में पहाड़ों की हरियाली और भी निखर जाती है, तो अगर आप भी शहर की भागदौड़ से कुछ पल दूर पहाड़ों की शांति, हरियाली और पक्षियों की मधुर आवाज के बीच सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो पंगोट हर मौसम में अपने अलग अलग रंग से आपका स्वागत करता है। घने जंगलों से लेकर पक्षियों की चहचहाहट, पहाड़ी पगडंडियों से लेकर खिलते बुरांस तक। उम्मीद है आज की इस प्रस्तुति के जरिए आपको पंगोट को करीब से जानने और वहां जाने की एक खूबसूरत वजह जरूर मिली होगी। इसी के साथ आज की राज्य दर्शन प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी उत्तराखंड की किसी और खूबसूरत जगह और उसकी खास कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी पंकज सनवाल खुलबे को अनुमति दीजिए। अपना ख्याल रखिए और उत्तराखंड की प्रकृति को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में अपना योगदान जरूर दीजिए। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने को हैं। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं हैं। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहल ने कहा कि NCDC को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस

विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सोलता देव, डीएम के सदस्य के आर एन राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर अलका गुर्जर, एआईए डीएम के सदस्य एम थंबीदुराई, डॉक्टर एन धनपाल, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि ये कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राय, एआईए डीएम के सदस्य एम थंबीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, टीडीपी के विजय चिंता कायला, केसीएम सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार पी, आईयूएमएल के हारिस बीरन, यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी और डीएमके सदस्य एल के सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें।
सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात

ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थी। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और एफसीआरए विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश सदन चलते हुए दिखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एफसीआरए विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि यह सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। डीएमके नेता टीआर बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के

जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके के इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है, विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं, 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है, नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने कहा, सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृहमंत्री इस पर जवाब दें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, गृहमंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन की ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आप सबका मनपसंद फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म गाइड से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। एसडी बर्मन के ही संगीत में अगला गीत और किशोर कुमार की आवाज के साथ ये गीत प्रस्तुत है फिल्म ज्वेल थीफ से।

0: कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप सुन रहे थे फिल्म जॉनी मेरा नाम से आवाज़ थी किशोर कुमार और आशा भोसले की थी और गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। श्रोताओ FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजने को हैं। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के

0: करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी, लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
3: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
4: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः

0: उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
1: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
2: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहाँ पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को जयपुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल रिजल्ट

0: digitalhealth.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए, वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill to enhance funding and development of cooperative sector, also gives nod to legislation to rename state of Kerala as Keralam. Both houses refer Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Home Minister Amit Shah says he is ready for detailed discussion on NEET paper leak related issue, writes letter to Lok Sabha Speaker. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for greater private capital mobilization in BRICS economies for global growth. Heavy to extremely heavy rainfall likely over parts of Odisha and Gangetic West Bengal for next 2 days as low pressure forms over Bay of Bengal. And Indian fencing team clinches 5 medals, including 3 gold on third day of Commonwealth Championship in Nigeria. Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार। जब किसी शहर की एक गली में वर्कशॉप का शटर उठता है, जब किसी गांव में एक छोटा कारखाना शुरू होता है, तो सिर्फ मशीनें नहीं चलती, देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी चलती है। देश की जीडीपी में 30% से अधिक की हिस्सेदारी और करोड़ों हाथों को रोजगार देने में एमएसएमई सेक्टर का कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या हो जब एक छोटा उद्यमी काम करने के बाद अपनी मेहनत के पैसे के लिए वर्षों इंतजार करे? क्या हो जब उसे कानूनी दावपेच या कागजी कार्यवाही में लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़े? इन्हीं अड़चनों को जड़ से समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। क्या है इसके प्रावधान, या फिर यूं कहें कि क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा और एमएसएमई सेक्टर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं एमएसएमई मंत्रालय में सचिव भरत खेड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
3: नमस्कार।
2: यहीं से शुरुआत करते हैं। 2006 में एमएसएमई एक्ट बना, 20 वर्ष यानी दो दशक बीत गए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि 20 वर्षों के बाद अमेंडमेंट बिल की जरूरत क्यों पड़ी?
3: आनंद जी, 2006 में जैसे आपने बताया, सबसे पहले ये एक्ट बना था एमएसएमई क्षेत्र के लिए, और इन 20 वर्षों में कई ऐसे चेंजेस आए जिसके लिए ये आवश्यक हो गया था कि हम इस एक्ट में संशोधन करें। और 20 वर्षों बाद जब संशोधन होता है तो वो बड़ा स्वाभाविक है कि ट्रांसफॉर्मेशन

0: बिल लाया जा रहा है। एक एक करके अगर आपसे समझना चाहें तो मध्यस्थता के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है कि अगर कोई भी समस्या होती है तो पहले मध्यस्थता में उसे भेजा जाएगा, जिसे मीडिएशन भी कहते हैं, और 90 दिन एक समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन फैसिलिटेशन सेंटर्स के पास अभी भी हजारों की समस्याएं पेंडिंग है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या राज्यों के साथ मिलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, कोई एक कार्य प्रणाली बनाई जा रही है जिससे 90 दिनों की समय सीमा के अंदर उस मामले को निपटारा किया जा सके।
1: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र के अंदर पेमेंट्स का डिले होना एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। छोटे सप्लायर्स हैं, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम श्रेणी के सप्लायर्स हैं, और उनके लिए लिक्विडिटी बहुत क्रिटिकल रहती है। उनके लिए वर्किंग कैपिटल समय से उपलब्ध हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से वो खरीदारी करके अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि पेमेंट्स में विलंब हो जाता है। इसी के चलते प्रावधान पहले एक्ट में किया गया था कि डिलेड पेमेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए। हालांकि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के भी प्रावधान थे, लेकिन ये देखने में आ रहा था, पिछले वर्षों में अनुभव ये किया जा रहा था कि इसमें उसके बावजूद, इन प्रावधानों के बावजूद विलंब हो रहा था। तो इस नए संशोधन के अंदर एक तो ये तय किया गया है कि हर चीज की अपनी समय सीमा हो, और उस मीडिएशन और आर्बिट्रेशन शुरू करने से पहले प्रयास ये हो कि जो सप्लायर है और जो ऑर्डर प्लेस करता है, उन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल नेगोशिएशन और डिस्कशन से भी मामला सुलझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है छोटे सप्लायर के ऊपर, उनका भी बड़ा लंबे समय तक एक रिश्ता बन जाता है आपस में, तो वो चाहते भी नहीं कि कोई डिस्प्यूट हो, और प्रयास भी सबसे पहले यही होता है कि उसको आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए। लेकिन अगर वो निपटारा नहीं हो पाता और किसी वजह से उसमें डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है, तो मीडिएशन के लिए समय निर्धारित किया गया कि वो 90 दिन के भीतर भीतर किया जाए, और अगर मीडिएशन में भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो 30 दिन के अंदर अंदर उसके लिए आर्बिट्रेशन में मूव किया जाएगा, और आर्बिट्रेशन में आने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। तो ये जो समय सीमा है, इसको एक्ट में ही निर्धारित किया गया है। प्रयास ये है कि बहुत ज्यादा विलंब इन डिस्प्यूट्स के अंदर भी ना हो। आपका कहना सही है, जो MSEFCs हैं, जहां पर फैसिलिटेशन काउंसिल्स के अंदर ये डिस्प्यूट्स आती हैं, उनमें कई समय तक कई बार डिलेज भी हो जाते हैं क्योंकि प्रोसेस उनके लंबे होते हैं। तो प्रोसेस को भी सरल किया गया है, चूंकि अब प्रावधान किया गया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। तो एक ODR पोर्टल है हमारा, जो पिछले साल हमने लॉन्च भी किया था, उसमें हमारा जो सेलर और परचेजर दोनों उस पर रहेंगे और पहले प्रयास करेंगे कि आपसी बातचीत से हो जाए, नहीं होगा तो उसी के माध्यम से मीडिएशन के लिए जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी। अपने घर के एंटरप्राइज के कंफर्ट में बैठ करके कहीं फिजिकली दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो पाएगी, और आर्बिट्रेशन का काम भी ऑटोमेटिकली वहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ इस समय सीमा को निर्धारित करने से इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में और आसानी होगी, और जो पेमेंट्स समय से नहीं हो रही थी वो समय से होने लगेंगी, डिलेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे।
0: थोड़ी चर्चा अगर ट्रेड्स की कर लें इस बिल पर, ट्रेड्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, उसको बहुत अहमियत दी गई है। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए हम बता दें कि मान जाइए कि आपने ए साथ आपकी डील हुई, वो डील 25 करोड़ रुपए की है। ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने वहां पर अपनी इनवॉइस जेनरेट की, किसी दूसरी कंपनी को लगता है कि वो 24 करोड़ रुपए आपको अभी तत्काल दे सकती है, बायर के पैसे 2 सालों के बाद आएंगे तो उसको 25 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन हमने अपना पैसा लगाया है तो हम 24 करोड़ में अगर सेटल होना चाहें तो वो हम सेटल हो सकते हैं। ये ट्रेड्स की खासियत है इनवॉइस सेटलमेंट के लिए। इसको कैसे प्रभावी बनाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से?
1: देखिए, ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, सप्लायर के लिए, परचेजर के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तीनों के लिए। और जैसे आपने बड़े सरल रूप से बताया, ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है 2017 में RBI ने शुरुआत की थी, और शुरुआती दौर में इस पे ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती थी। रादर मैं ये कहूंगा 2021-22 में भी हम तकरीबन 40,000 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे, जो पिछले वर्ष में 2025-26 में बढ़कर के 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज हमारी ऑनबोर्ड कर रही हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। इस नए संशोधन के अंदर जितने हमारे केंद्रीय उपक्रम हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि जितने भी एमएसएमई से संबंधित पेमेंट्स हैं उनको ट्रेड्स के माध्यम से इनवॉइसेस को वहां पर रेज किया जाए। ताकि उनकी पेमेंट्स ट्रेड्स के माध्यम से की जा सके। तो इसके चलते काफी आराम हमारे एमएसएमईज को

0: मिलेगा, क्योंकि कई बार उनको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता था, उसके चलते वो आगे रॉ मटेरियल की खरीद नहीं कर पाते थे, तो उसमें उनको आसानी होगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बेझिझक आगे बढ़ेंगी। तो अभी तक ट्रेड्स का एक्ट के अंदर प्रावधान नहीं था, अब उसकी एक बाकायदा स्टैट्यूटरी बैकिंग है, और जो एक सिर्फ नोटिफिकेशन से चल रहा था उसका एक्ट में प्रावधान किया गया। सीपीएससीज को मैंडेट दिया गया कि वो इस पर ऑनबोर्ड भी हों और इसके माध्यम से करें, और उसके साथ साथ वो उसकी पब्लिक डिस्क्लोजर भी करेंगी कि हमारे इन इन एमएसएमई से संबंधित जो इनवॉइसेस थी वो रूट की गई ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पीरियड के दौरान, तो वो भी करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा।
1: यहाँ एक छोटा सा सवाल और उठता है कि बड़े कॉरपोरेट्स घरानों को ट्रेड्स तक लाने के लिए क्या एमएसएमई मंत्रालय के पास कोई योजना है या उस पर काम किया जा रहा है?
0: देखिए, जहां तक केंद्रीय उपक्रम है उनके लिए तो अब एक्ट में ही प्रावधान हो गया। हमारे 291 इस समय केंद्रीय उपक्रम है और ये सब उपक्रम अब ट्रेड्स के माध्यम से ही करेंगे। जहां तक प्राइवेट इंडस्ट्री है, 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले उपक्रमों को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ट्रेड्स के माध्यम से करें, और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस नए संशोधन के अंदर प्रावधान ये किया गया है कि वो भी चाहें तो अपने स्टेट के जो उपक्रम हैं उनको भी मैंडेटरी कर दें ट्रेड्स के माध्यम से ऑपरेट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ पूरा इकोसिस्टम जब इसका बेनिफिट उठाएगा तो हमारे एमएसएमईज के लिए ये व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी और लिक्विडिटी क्रंच जो अक्सर वो फेस करते हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा।
1: एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि कोई भी जो उद्यमी है अगर उसने बायर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन की है और उसके पक्ष में वो निर्णय आता है, लेकिन बायर चूंकि मजबूत होता है, उसके पास आर्थिक ताकतें ज्यादा होती हैं, वो कोर्ट में उस मामले को ले जाता है और फिर वो मामला काफी लंबा खींचता है। जो छोटा उद्यमी है जिसने अपना पैसा लगाया है, जिससे उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद उसको पैसे मिलेंगे, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वो सैलरी दे पाएगा, जो रॉ मटेरियल्स लाया है उसका भुगतान कर पाएगा, ऐसे में जो कोर्ट में लंबा मामला खींच रहा है, क्या इस बिल में उसके लिए प्रावधान है?
0: इसके लिए भी बड़ा प्रभावी प्रावधान किया गया है। अगर कोई डिक्री या अवार्ड को अपील के अंदर चैलेंज किया जाता है तो उस अवार्डेड राशि का 75% अनिवार्य है कोर्ट के पास जमा करवाना। अब उस राशि में से कोर्ट्स को ये एम्पावर किया गया है कि अवार्डेड अमाउंट का 50% राशि वो उसको तुरंत जारी करवा सकते हैं एमएसएमईज के फेवर में अगर कोई अपील 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है। एक समय सीमा आ गई 6 महीने की, अगर 6 महीने से ज्यादा कोई अपील लंबित रह जाती है तो कोर्ट्स 50% राशि अवार्डेड अमाउंट की उस एमएसएमई को तुरंत जारी कर देंगे, ताकि विलंब अगर होता भी है तो भी 50% राशि तो उसको मिली गई फैसला होने तक, बाद में बाकी भी मिल जाएगी। ये नया प्रावधान इस संशोधन में लाया गया है।
1: एक और प्रावधान किया गया है उद्यम पंजीकरण पोर्टल का, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। जो लोग एमएसएमई से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से ये सहायक होने वाला है?
0: देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि उद्यम पोर्टल पर या अन्य कहीं पर पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। यही प्रावधान एक्ट में भी किया गया है, और उद्यम पोर्टल पर ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है इसकी। इसमें उद्यम पोर्टल हमने लॉन्च किया था 2020 के अंदर और धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन काफी हुई, क्योंकि पहले अक्सर ये देखा जाता था कि एंटरप्राइजेस इनफॉर्मल क्षेत्र में तो कई साल काम करते थे लेकिन फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बनते थे, शायद इस बात से भी घबराते हों कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा और परेशानी आने लगेगी। तो सरकार ने बड़े प्रयासों के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर कंप्लायंस बर्डन भी कम किया, इसके भी चलते प्रेरित हुई एंटरप्राइजेस कि हम फॉर्मल रूप से अपना पंजीकरण करवाएं, और मैं ये समझता हूँ इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई पिछले कुछ वर्षों में। 1.65 करोड़ हमारे एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम में थे आज से 4 साल पहले, और आज हमारी संख्या 9 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। तो ये तभी संभव हो पाया जब उनको लगा कि ये इससे उनको लाभ मिलेंगे, सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसका भी वो लाभ उठा पाएंगे, तो आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। अब चूंकि उद्यम पोर्टल का प्रावधान एक्ट में ही किया गया है तो ये फॉर्मलाइजेशन की हमारी जो कैंपेन है ये और बेहतर रूप से चलेगा और इसमें हम सैचुरेशन प्राप्त करेंगे।
1: आपने अभी कैंपेन का जिक्र किया, ये नए प्रावधान से एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को रूबरू कराने के लिए किस तरह के कैंपेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में सोचा जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कई सारे मंत्रालय एक्सपोज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार करते हैं, और जहां पर बहुत सारे छोटे बड़े उद्यमियों को मिलाकर विशेषज्ञ उनको बारीकियां समझाते हैं, क्या इस तरह की भी कोई योजना है?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया इससे पहले भी फील्ड में हमारे बहुत अच्छा एंगेजमेंट रहा।

0: सभी एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ इंडस्ट्री के लोगों से उन्हीं से ये फीडबैक लेकर के उन्हीं के सुझावों के आधार पर ये प्रस्ताव तैयार किया गया। और अब चूंकि बिल पारित हो गया है, आने वाले समय में हम एमएसएमई के साथ डायरेक्टली एंगेज करके उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करेंगे। हमने अभी तकरीबन 5 करोड़ मैसेजेस एक ही दिन में सभी एमएसएमई को डायरेक्टली भी भेजे हैं, ईमेल्स भी भेज रहे हैं, और एसोसिएशन के माध्यम से भी हम उन तक ये सारे प्रावधान जो नए हैं उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो पूरा इसका लाभ उठा सके।
1: सचिव साहब, एक और यहाँ पर एक जो पेच समझ में आता है वो ये है कि जो रिकवरी का मामला है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी राज्यों की होती है। ऐसे में एमएसएमई मंत्रालय राज्यों के साथ किस तरीके का संगठनात्मक समन्वय की स्थिति बना रहा है जिससे रिकवरी थोड़ी फास्ट हो सके?
0: देखिए, समन्वय तो इसमें हमेशा राज्यों के साथ रहता ही है, लेकिन इस संशोधन के अंदर एक एक्ट में भी प्रावधान किया गया है, अगर कोई सेटलमेंट होता है मीडिएशन के आधार पर या आर्बिट्रेशन के बाद कोई अवार्ड होता है तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भी घोषित किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने नॉर्मली जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर होते हैं उनको अधिसूचित किया गया होता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवर करने के लिए। वो प्रावधान भी पहली बार इस एक्ट में किया गया है ताकि कोई अमाउंट अगर ड्यू है तो वो अनरिकवर्ड ना रह जाए, उसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए ये भी प्रावधान किया गया है। और ये हमें राज्यों से ही फीडबैक भी आया, राज्य सरकारों से, और मैं ये समझता हूँ ये जो प्रावधान है ये आने वाले समय में और प्रभावी रूप से काम कर पाएगा।
1: एक और इसमें व्यवहारिक बदलाव किया गया है। पहले अगर कोई उद्यमी जो है वो छोटी मोटी गलती कर देता था या चूक कर देता था उसके लिए जेल या जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन इसमें उसको हटाकर वार्निंग की व्यवस्था की गई है। क्या इससे वो जो इंस्पेक्टर राज वाला कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त करके एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस देने की सोच है?
0: देखिए, डीक्रिमिनलाइजेशन और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर पूरी केंद्र सरकार में आप देख ही रहे हैं सभी एक्ट्स के अंदर बदलाव लाया जा रहा है। हमारा जो ये एक्ट है इसमें जेल का प्रावधान तो खैर नहीं था, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस जरूर था, क्योंकि उसमें कन्विक्शन बेस्ड पेनल्टी थी कि कोर्ट के माध्यम से कन्विक्शन होगा और फिर उस पर पेनल्टी लगेगी। उसको अब सरल कर दिया गया है, उसमें ग्रेडेड फाइन, जो ग्रेडेड पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसका डिसीजन लिया जा सकता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पहले कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, किसी कारणवश नासमझी की वजह से कोई लैप्स होता है, तो पहले इंस्टेंस पर वार्निंग देने का प्रावधान है, दूसरे इंस्टेंस पर पेनल्टी लगेगी वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर 1,000 से 50,000 के बीच में, और अगर उसके बाद भी वो करता है तो पेनल्टी का अमाउंट बढ़ जाएगी, लेकिन कन्विक्शन के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए हमने डेवलपमेंट कमिश्नर को एडजुडिकेट करने के लिए अधिकृत किया है, और अगर उसमें भी अगर कोई अपील करना चाहे तो वो सचिव के पास अपील भी कर सकता है, उसके भी लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो मैं ये समझता हूँ ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये ट्रस्ट के आधार पर काम करने के लिए बनाया गया है।
1: एक और व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि जब भरोसा दिया जा रहा है, और आपने शुरू में भी कहा कि चूंकि 20 वर्षों में तकनीक बहुत बदल गई इसलिए इस संशोधन बिल की जरूरत आन पड़ी, आज का जमाना एआई का जमाना है, क्या इस बिल में तकनीक को लेकर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे समस्याओं को सुलझाने को लेकर भी कोई प्रावधान है या कोई चर्चा है?
0: देखिए, जो हमारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पोर्टल है वो नया पोर्टल बना, बहुत ही रोबस्ट है, और उसमें सारा जो प्रक्रिया है वो उस पोर्टल के माध्यम से हो रही है। उसमें एआई भी मदद करेगा ड्राफ्ट करने में भी, कि आपने कोई डिस्प्यूट है उसको ड्राफ्ट करना है वो भी एआई भी मदद करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मीडिएशन के अंदर, आर्बिट्रेशन के अंदर भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी, जो कि मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के अच्छे यूजेज को दर्शाता है। और जो एमएससीएफसीज हैं हमारी, जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स है, उनके कार्य में भी और ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि वो भी अपने पुराने फैसलों का अध्ययन कर पाएंगे, सब तरह के केसेस का एक साथ निपटारा करना भी उनके लिए सरल हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग पोर्टल के अंदर किया जा रहा है, उसके साथ ही जो उद्यम पोर्टल है उसमें भी टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया है। आज हम बड़ी सरल रूप से बता पाते हैं कि हमारे कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, कितने स्मॉल हैं, कितने मीडियम हैं, किस सेक्टर में कितने हैं, किस राज्य में, किस जिले में, कितने महिलाओं के हैं, ये सारी जो सेग्रीगेशन है, ये सारा जो एनालिसिस है, ये हम कुछ सेकंड्स के अंदर कर पाते हैं। और ये एनालिसिस हमें मदद करता है नीतियां निर्धारित करने में, नई योजनाओं को प्लान करने में। तो मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीजें और सरल होती जा रही है।

0: आकाशवाणी से युवाओं का एक बड़ा वर्ग हमेशा से जुड़ा रहा है। उनके जहन में जरूर एक सवाल उठ रहा होगा कि अब तक बहुत सारे हाथों को रोजगार देने का काम किया है एमएसएमई ने, क्या इस नए बिल से रोजगार के अवसरों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है?
1: देखिए, हमारे देश में एमएसएमई का रोजगार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कृषि के बाद ये दूसरा क्षेत्र गिना जाता है रोजगार के टर्म्स में। तकरीबन 38 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में हमारे एमएसएमई जो हैं ग्लोबल वैल्यू चेन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं और ये तभी संभव है जब उनमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, उनमें इनोवेशन रहेगी। तो नवाचार में सबसे ज्यादा योगदान युवा पीढ़ी का रहता है। हमारी एमएसएमई चैंपियंस योजना के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम इनोवेशन के लिए हमारी युवा पीढ़ी को इंसेंटिवाइज करें, उनको प्रेरित करें और वो अपनी क्वालिटी को भी इंश्योर कर पाएं, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ला पाएं और अलग अलग प्रोडक्ट चेन के अंदर किस प्रकार से वो एक इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाए, टीयर टू और टीयर थ्री वेंडर से बढ़ करके पूरी वैल्यू चेन संभाल पाएं और स्केल अप करें अपने एंटरप्राइज को। आज भी हमारे एमएसएमई क्षेत्र में 98% माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। तो हमारा प्रयास है फॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्केलिंग अप करें, माइक्रो बढ़ करके स्मॉल बने, स्मॉल बढ़ करके मीडियम बने, मीडियम के बाद लार्ज एंटरप्राइजेस बने। तो ये स्केलिंग करने में इनोवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और मैं ये समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत इसमें रुचि भी रखती है। पहले वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान रहता था, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढे वो खुद रोजगार देने के लिए तैयार है और स्कूल कॉलेज के अंदर ही प्रयास करने लगते हैं कि किस प्रकार से अपना एंटरप्राइज खोलें और लोगों को रोजगार दे पाए।
0: आपने अभी बात की एक सपने की, उस आपकी बात में एक सपना छिपा था कि छोटे से बड़े स्तर तक अपने कारोबार को लेकर जाने की। आपने बात की कि ग्लोबल स्तर पर अपने प्रोडक्ट की अहमियत को बनाने की, लेकिन इसमें एक जो बड़ी भूमिका है वो आपके स्किल सेट की होती है, कौशल विकास की होती है। क्या एमएसएमई जो दूर दराज के छोटे शहर हैं, गाँव हैं, वहां के उद्यमियों को स्किल बढ़ाने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए किसी कार्यक्रम पर, किसी योजना पर काम कर रहा है?
1: आपने बिल्कुल सही कहा, जो स्किल अपग्रेडेशन है बड़ा महत्वपूर्ण रहता है खासतौर पे युवाओं के लिए और हमारे मंत्रालय की दो मुख्य योजनाएं हैं इसको लेकर के। एक तो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, हमारे 55 टेक्नोलॉजी सेंटर्स देश भर में बन रहे हैं और इसमें से 35 ऑलरेडी फंक्शनल हैं, कुछ बाकी अभी बन रहे हैं। इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन दिया जाता है और हाल ही में इसमें ऐड की गई हैं रोबोटिक्स, AI, IoT, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज जिसमें हमारे सक्षम बन रहे हैं युवा। उसके साथ ही साथ हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट योजना भी है जिसके माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है पूरे देश भर के अंदर और हम दूसरे जो मंत्रालय हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उनके साथ कन्वर्जेंस करके भी हम कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान देते हैं।
0: इस बिल में क्लासिफिकेशंस की भी थोड़ी चर्चा है, इस बारे में भी बताएं।
1: देखिए, पहले क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर अंतर रखा जाता था और अब वो खत्म हो गया 2020 के अंदर जब हमने कहा कि चाहे वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग में लगा हो या सर्विसेज में कार्यरत हो उसके क्राइटेरिया सिमिलर होंगे और उसी से ट्विन क्राइटेरिया लाया गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट आधार रहता था, अब कितना निवेश किया गया प्लांट एंड मशीनरी में और कितनी उसकी टर्नओवर है, इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन की जाती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम के अंदर। तो अब इसको बकायदा एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया, चूंकि ये पहले सरकार की नोटिफिकेशन के माध्यम से तो किया गया था लेकिन अब ये एक्ट का हिस्सा बन चुका है कि ये ट्विन क्राइटेरिया को फॉलो करके क्लासिफिकेशन की जाएगी। उसकी सीमा कितनी होगी वो समय समय पर सरकार निर्धारित करती रहेगी। जैसे आप जानते ही हैं 2025 के अंदर पिछले वर्ष ही इसकी जो सीमा है उसको भी बढ़ाया गया था। आज के समय में 125 करोड़ तक के निवेश और 500 करोड़ तक का जो टर्नओवर है वो एमएसएमई क्षेत्र को डिफाइन करता है। तो इसमें पिछले वर्ष ही बढ़ोतरी की गई थी। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में और ज्यादा एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे डेफिनेशन में बदलाव आने के कारण।
0: सचिव साहब, कोई अगर बैंक से लोन लेता है एमएसएमई के तहत, लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन अगर वो 6 महीने या निर्धारित समय में वो वापस नहीं कर पाता है तो जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई गई है इस बिल में उसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है, उसमें भी कोई जोड़ घटाव किया गया है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर?
1: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और क्रेडिट इन्फ्यूजन इस क्षेत्र में काफी बढ़ा भी है। 2014 में तकरीबन 10 लाख करोड़ का क्रेडिट था इस क्षेत्र को।

0: जो आज की समय में तकरीबन 38 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है और ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने क्रेडिट गारंटी को बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दी और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जब बैकिंग मिली बैंक्स को तो उनका भी विश्वास और बेहतर हो गया और बैंक्स ने यह भी अनुभव किया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार गिरते आए हैं इस क्षेत्र के अंदर। हमारा परसेप्शन पहले ही रहता था कि जो छोटा उद्योग है वो शायद डिफॉल्ट करेगा, लोन वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कमी आई पिछले वर्षों में और ये जब बैंकों ने अनुभव किया तो वो और ज्यादा प्रेरित हुए क्रेडिट बढ़ाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट का आने वाले समय में और ज्यादा भूमिका बढ़ेगी और बैंक्स जो हैं प्रेरित होंगे और बेहतर रूप से क्रेडिट उपलब्ध करवाने के लिए हमारे उद्यमियों को।
1: एक थोड़ा अलग सा सवाल जहन में आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत में जीआई टैग्स भी मिले हैं, बहुत सारे शहरों की अपनी खासियत है, जैसे हम बनारस की बात करें तो वहाँ बनारसी साड़ियों की खासियत है, कहीं का दाल काफी फेमस है, कहीं के मसाले बहुत फेमस हैं। क्या मंत्रालय का कोई यूनिट उन छोटे शहरों में जहाँ कुछ विशेष चीजें बनती हैं वहां पर किसी को सिलेक्ट करता है या वहां कोई कैंप का आयोजन करता है कि यहां की ये खासियत, अगर आप इसको लेकर कुछ करना चाहते हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात है, वोकल फॉर लोकल की भी बात है, अगर आप इसको लेकर कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो मंत्रालय आपको विशेष योगदान देगा या आपको सपोर्ट करेगा?
0: देखिए, DPIIT जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और GI टैग को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो GI टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपना आवेदन करने के लिए और GI सर्टिफिकेशन लेने के लिए अगर MSMEs सामने आते हैं तो उसमें हम लोग भी अपने MSME चैंपियंस स्कीम के तहत उनको इंसेंटिव्स प्रदान करते हैं और इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ वर्षों में। बिकॉज कुछ साल पहले तक शुरुआती दौर में तो बहुत ही कम GIs थे, लेकिन पिछले सालों में आज हम करीब 800 के करीब GIs ऑलरेडी देश में रजिस्टर्ड हैं और आने वाले समय में भी हमने MSME चैंपियन स्कीम में ये प्रावधान रखा है कि GI लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लगभग 100% इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं अपने मंत्रालय के माध्यम से।
1: ये जो बिल आया है, क्या इसमें कोई नेशनल डैशबोर्ड बनाने की भी कोई पहल की गई है जिससे कि रियल टाइम जो लोकेशन है मामलों के निपटान की उसको लेकर कोई प्रावधान है जो कि आसानी से बायर भी देख सके, उद्यमी भी देख सके?
0: देखिए, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल के बारे में बताया, ये एक ऐसा पोर्टल रहेगा जो कि देश भर में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और ये इंटीग्रेटेड पोर्टल रहेगा। तो इसमें बायर और सेलर दोनों रहेंगे और साथ ही साथ MSEFCs भी इसमें ऑपरेट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें काफी कमी आने की संभावना है, ये हमारी सोच है।
1: 2047 भारत विकसित भारत बने ये सपना प्रधानमंत्री का है और हर भारतीय चाहता है कि जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करें तो एक विकसित भारत का निर्माण हो सके। ये जो बिल है और MSME, चूंकि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि 30% GDP में उसकी हिस्सेदारी 30% से थोड़ी ज्यादा ही है, क्या लगता है इस बिल के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
0: देखिए, मैं ये समझता हूँ विकसित भारत 2047 के संदर्भ में MSME क्षेत्र की भूमिका और अधिक बढ़ेगी आने वाले सालों में। आपने सही कहा कि आज के समय में भी GDP में 31% हमारा योगदान है और निर्यात में 48% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये तकरीबन 40% GDP का बन जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी हम 60% के करीब पहुंचेंगे। तो इन प्रयासों को ध्यान में रखकर, इस विजन को ध्यान में रखकर के ही हम अपनी योजनाओं को भी और बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो MSMEs हैं वो स्केल अप करें और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों ताकि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकें, और उसके लिए हम उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों, बेहतर गुणवत्ता के हों, तभी वो ग्लोबल मार्केट्स में पहुंच पाएंगे, उसमें भी उनको हम सहायता प्रदान करेंगे। और साथ ही जो प्रोसेसेस हैं वो सस्टेनेबल हों, कम लागत के हों, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों, उसकी ओर भी हमारी कुछ स्कीम्स हैं MSME चैंपियंस के तहत जिसको अब हम और आगे प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे।
1: आपको बहुत सारे छोटे उद्यमी या फिर मध्यम उद्यमी सुन रहे हैं या वैसे युवा भी सुन रहे हैं जो भविष्य में MSME से जुड़ना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे उन्हें आप?
0: देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि ये क्षेत्र और आगे बढ़े और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज हैं वो ये विजन रखें कि किस प्रकार से अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, स्केल अप करें, और जो युवा सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ करके भविष्य में क्या करना है, वो बजाय इसके कि नौकरियां ढूंढें, बेहतर है कि अपना खुद का एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इनोवेशन लेकर के आएं और प्रयास करें और रोजगार प्रदान करें, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढें, रोजगार प्रदान करें। तो मैं तो यही कहना

0: चाहूंगा युवा पीढ़ी से।
1: ये नया भारत है, नए भारत में नई संभावनाएं होती हैं और उन संभावनाओं को संभव बनाना जीवन की भी सच्चाई है और साथ ही साथ सरकार का भी दायित्व बन जाता है। सरकार ने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए और खासकर ऐसे एमएसएमई क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए इस बिल में कई प्रावधान किए हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की हमारे साथ भरत खेड़ा ने और उम्मीद है कि एमएसएमई क्षेत्र आने वाले वर्षों में और तरक्की करेगा। भरत जी, आकाशवाणी में बात करने के लिए और विस्तार से इस अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद आनंद जी।
2: अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है पॉडकास्ट पर्सन बिहाइंड द स्टोरी।
6: ये आकाशवाणी है, पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं प्रियंका अरोड़ा।
7: साहस, अनुशासन, राष्ट्र सेवा, ये वो गुण हैं जो हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। और जब इन मूल्यों में नारी शक्ति का अदम्य साहस और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जुड़ जाता है तो एक प्रेरक गाथा बन जाती है। ऐसी ही प्रेरक गाथा के बारे में आज हम बात करेंगे IASV त्रिवेणी समुद्र प्रदक्षिणा की, जिसमें पहली बार सेना के तीनों अंगों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और समुद्र प्रदक्षिणा की। तो ये अभियान कैसा रहा, क्या चुनौतियां रही, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और साथ में है मेजर प्राजक्ता पी निकम। आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करें, आगाज करें इस कार्यक्रम का, तो सबसे पहले जब आपको एक्सपीडिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में पता चला, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड
8: कि ऐसा भी कोई एडवेंचर होता है क्या? टू इमेजिन कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे और उससे पहले कभी फॉरेन कंट्री तक नहीं गए थे, तो वो जो ख्याल है कि पूरी दुनिया का चक्कर, वो नाम ही इतना बड़ा था कि लगा कि नहीं, ये तो करके देखना है कि ये चीज क्या होती है।
7: विभा जी और वैशाली जी, वायुसेना से आप हैं, तो आपने हमेशा बादलों के बीच उड़ान भरी है, लेकिन इस बार समुद्र के बीच लहरों के साथ आपको सफर करना था। तो वैशाली जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो हलचल रही मन में जब आपको पता चला?
9: तो एक नॉर्मल डे की बात है, हम ऑफिस में बैठे हैं, ये सिग्नल आता है कि सेलिंग के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3 सर्विसेज से लिया जा रहा है। पहले तो वो ही अविश्वसनीय था मेरे लिए। रही बात भाई एयरफोर्स से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता, यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर सेलिंग कर रहे हो, वो भी इंडियन आर्मी के साथ, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है। और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है
7: जी, और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ। प्राजक्ता जी, आपसे जाना

0: चाहूंगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया या आपने अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए?
1: एक्चुअली ये जो एक्सपेडिशन है इसकी प्रेपरेशंस 3 साल 4 साल पहले स्टार्ट हुई हैं, तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है एंड 1 ईयर आप ले लो 10 मंथ्स फॉर आर एक्सपेडिशन टू यू नो स्टार्ट एंड फिनिश. तो इनिशियली इट वाज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे साथ थे और हम 42 टोटल थे फ्रॉम ऑल थ्री सर्विसेज, जिन्होंने 3 फेजेस ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कम्प्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 वुमेन ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी एयरफोर्स नेवी. पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था, बट जिस दिन पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए. तो लिट एक्चुअली बिकॉज इट इज अ मैसिव थिंग, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग टू यू नो गो अराउंड द वर्ल्ड, तो इनिशियल फियर तो रहता ही है.
0: आपसे जाना चाहूंगी विभा जी, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी, लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई?
2: देखिए अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी, हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था. इसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो. तो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर एज डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है, यस वो काफी हद तक हमारे काम आई क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत कॉमन होती है. लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई. जैसे हम सबको याद है कि हम सुबह 5 बजे उठते थे और 1.5 घंटे तक भागना दौड़ना रस्सी चढ़ना पुशअप पुलअप, मतलब हर बॉडी की एक एक मसल को इतना स्ट्रांग बनाया गया कि जब आप समुद्र में रहोगे तो आपको किसी तरीके की तकलीफ ना आए. फिर दूसरा, ट्रेनिंग को इतना कठिन इसलिए किया गया बिकॉज समुद्र में आप खुद हो, आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है. फिर रही बात, हम सब में से किसी को सेलिंग आती नहीं थी, तो इसका मतलब हमें बोट क्या होती है, कैसे चलाते हैं, हवा को कैसे पढ़ते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं समुद्र में, अगर दूसरे शिप्स हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये एक एक चीज हमें पढ़ाई गई. और उसके बाद टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज अ टीम आप वहां पे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारी टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज हुई.
0: जी स्क्वाड्रन लीडर वैशाली, आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो दी गई और थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिव दी गई इसमें, लेकिन जो सबसे जरूरी होती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग, क्योंकि आप कई बार आपको ट्रेन किया जाता है लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको लगता है शायद दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, तो कुछ ऐसा अलग रहा आपको, तो मेंटल ट्रेनिंग भी फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से काम आई आपके एक्सपेडिशन में?
3: बीइंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड और वेयरिंग अ यूनिफॉर्म इटसेल्फ, बी इट आर्मी नेवी और एयरफोर्स, मेंटली स्ट्रांग होने की हमें ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जाती है, तो यहाँ पे भी वही चीज काम आई. थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी कि एंड्योरेंस और स्टैमिना, कि महीनों महीनों तक कुछ ना दिखना, कोई कलर ना दिखना, कोई पक्षी ना दिखना, इंसान ना दिखना, और महीनों बाद कोई एक शिप भी दिख जाती है तो उसमें भी बहुत खुशी होती है कि आज हमने एक शिप देखी, और उसकी बात पूरे 1-1.5 दिन तक करते रहना कि आज हमने रेड कलर की एक शिप देखी करके. तो वो चीज ट्रेनिंग करते करते सेलिंग करते करते बढ़ाई गई. अकेलापन फील होना, उसकी जो फाइट होती है वो हमने सेलिंग करते करते ही सीखी. बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आई फील की था, बाकी सेम.
0: मेजर प्राजक्ता, आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जैसे अब आप फिजिकल ट्रेनिंग भी मेंटल ट्रेनिंग भी, फिर भी उसको सस्टेन करना और अपने एक ना आत्मविश्वास बनाए रखना, नहीं हम कर लेंगे, तो ऐसे भी कुछ पल आए उस समय जब आप एक्सपेडिशन पर थी?
1: ऐसा नहीं था कि हम हर रोज जब उठ रहे हैं कि हम मोटिवेटेड फील करें कि आज तो भाई एकदम जोश में है हम, ऐसा नहीं था. बहुत सारे दिन थे जब हम इतने टायर्ड थे, रात रात तक हम कुछ रिपेयर कर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, अगले दिन इतना फटीग है हम में. एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन, इनफैक्ट पहले भी, बिफोर फ्लैग ऑफ हुआ हमारा, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब हमें लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं. बट बिकॉज 9 लोगों का एक ही मिशन था, एक ही गोल था, सो दैट यू नो मोटिवेट्स यू इवन अगर आप एक दिन मैं बहुत लो फील कर रही हूँ तो आई नो कि बाकी हैं हु विल लिफ्ट मी अप.
0: टीम वर्क काम आई इस पूरे एक्सपेडिशन में. विंग कमांडर विभा जी, जैसे उन्होंने कहा

0: कि वैशाली जी ने कि शिप एक दिख जाती थी तो बहुत
1: जी
0: अच्छा लगता था, और हम सभी के जहन में ये है कि आप लोग एक शिप में गए हैं, बहुत आरामदायक थी जिसमें सभी सुविधाएं थी,
1: जी
0: तो क्या वाकई में ऐसा था या आपको और भी कई इसको लेकर भी उठने जागने सोने को लेकर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
1: जनरली हम फोर्सेस में हैं तो हमारे पास खाना खाने के लिए एक मेस होती है, हमें एक अकोमोडेशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे जब मेरे घर वालों पूछते थे कि अच्छा आज मेस में क्या बना है, बिकॉज शिप में भी एक मेस होती है, डाइनिंग हॉल होता है जहाँ आप खाते हो, तो मैंने कहा मेस नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक खड़े होने की जगह होती है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कुक अच्छा खाना बनाता है, हमने कहा कोई कुक नहीं होता है। हमारा लिविंग एरिया था एक 50 फीट लंबी बोट और 15 फीट चौड़ी, इसी में हमारी पूरी दुनिया थी। और धीरे धीरे जब हम उस बोट में रहे तो हमको ये भी इतना लंबा लगता था कि अरे वाह हमारे पास कितनी ज्यादा जगह है। और अगर दिनचर्या की बात करेंगे तो वो जो बोट है वो बहुत छोटी है, तो जब समुद्र की लहरें या विंड होता है तो बोट कभी सीधी नहीं चलती है। तो उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक दिन बताइए, तो उसमें सोना खाना पीना जागना कुछ भी एक जो नॉर्मल इंसान करता है वैसा नहीं होता है। एक तो समुद्र में वैसे ही आपकी बॉडी के रिएक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं बिकॉज कंडीशंस बहुत हार्श होती है, और उसमें हम खुद ही खाना बना रहे हैं, तो मौसम अच्छा हो खराब हो उसके हिसाब से खाना बनता था। धरती पे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का जो आनंद है, और वो 6 घंटे की नींद लेने का जो आनंद है, और वो कहते हैं ना जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, ये हमने बोट पे रह के सीखा।
0: जैसे खाने के बारे में आपने बताया, आप लोग तीनों अलग अलग कोने से हैं तो सबका जो उसका जो टेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो किसकी पसंद का खाना बनता था, कैसे बनता था?
1: फॉर्चुनेटली हमारी बोट में ऐसे टीम मेंबर्स थे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। और जब हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो ऐसे नहीं कि खाना बनाना चाहता है, वो उनका पैशन था। तो यहाँ पे जो ये प्राजक्ता जी बैठी है, हम वेट करते थे कि ये मदर ऑफ द बोट मतलब वो क्रू मेंबर जो उस दिन तीनों टाइम का खाना बनाएगा। तो जब पता चलता था कि हाँ भाई आज प्राजक्ता जी की ड्यूटी है, तो पूरा दिन सब यही पूछते थे आज क्या बनेगा आज क्या बनेगा। प्राजक्ता जी ने बोट में समुद्र में हालत खराब है, सब तो सी सिकनेस हो रही है, मतलब उल्टियां लग रही है, बट इन्होंने हमें छोले आलू टिक्की चाट खिला दी और हम
0: दिन
1: आपको
0: बन गया
1: दिन महीने बन गए।
0: ये है, मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं तो जैसे सी सिकनेस की बात की तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप बताएं वैशाली जी किस तरह से उसको आपने हैंडल किया, तो कोई वहां पे कोई स्वास्थ्य चिकित्सक भी था आपके साथ जिसने आपको मदद की इस दौरान?
2: हमने मेडिकल वाइज जो हमने इश्यूज फेस किए हैं, मोस्टली इट इज विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो सी सिकनेस है, फीवर है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस है उसमें जो तबीयत खराब होती है, और इट इज योर मंथली साइकिल। दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड, एंड वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी एक क्रू मेंबर, एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है हु इज ट्रेन ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो बिसाइड्स वो सेलिंग तो कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका बोट में ख्याल रखना। वो उनका रहना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता था, वो उस हालत में आने ही नहीं देती थी हमें कि हम बिल्कुल ही बेड में पड़ जाएं। शी यूज टू टॉक टू अस, पता करना एवरी डे आज कैसा फील हो रहा है, आज कैसा फील हो रहा है। प्लस थैंक गॉड ऐसी कोई आपदा नहीं आई, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई जिसकी वजह से हमें डिटोर करना पड़े या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए।
0: तो आप कुल 9 लोग थे, मेजर प्रोजेक्ट था, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, क्योंकि आपको 24 घंटे रात दिन काम करना है, सेलिंग करनी है, तो कौन कैसे किस तरह से जिम्मेदारी निभाता था?
3: तो बोट पे एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 ऑफिसर्स होते थे, उसमें से एक मतलब एवरी डे देयर वाज अ मदर ऑफ द बोट, तो हम 6 में से वो रोटेट होते रहते थे। बाकी जो 5 बचे उनमें से 2 ऑफिसर्स, मतलब दो दो ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी, तो वो रोटेशनल बेसिस पे होती थी। एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक, जैसे कि आई एम स्पेशलाइज्ड इन समथिंग और मैम इज स्पेशलाइज्ड इन समथिंग, वी ऑल नो एवरीथिंग, तो हमको सब चीज में ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो साफ सफाई हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, हम सबको सब आता है। तो वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था, इट वाज नॉट कि एक ही पर्सन पे लोड आए,
0: तो दिस
3: दैट
0: वाज
3: इज
0: द
3: अ
0: बेस्ट पार्ट कि सबको सब कुछ
3: सब
0: मालूम
3: कुछ।
0: था, ताकि
3: हाँ
0: किसी तरह की दिक्कत ना आए।
3: यस
0: तो आपका जब ये एक्सपीडिशन था तो आप किन-किन जगहों से गुजरी, कहाँ कहाँ से गए आप?
1: देखिए जब हम सरकम नेविगेशन की बात करते हैं तो सरकम नेविगेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं। उन्हीं क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना रूट प्लान किया था,

0: हम इंडिया से सबसे पहले गए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पे हमें केप लुइन क्रॉस करना था। ऑस्ट्रेलिया में हम गए फ्रीमेंटल, फिर फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला था पोर्ट ऑफ कॉल लिटिलटन न्यूजीलैंड में। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जब हम जा रहे थे हम एक स्टॉर्म में फंस गए और हमारा सेल फट गया और उस सेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते थे। तो लकीली हमने एक पास में एक आइलैंड था तस्मानिया करके, वहां पे हमने हॉल्ट लिया। वो अनप्लान था बट वहां पे हम रुके, हमने अपना सेल रिपेयर किया और फिर हम आगे बढ़े न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड से फिर हम गए अर्जेंटीना, ब्यूनोस आयरिस, क्योंकि हमें सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में केप हॉर्न करके एक जगह है जिसको ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करना अगेन मैंडेटरी होता है। उसको क्रॉस करते हुए हम ब्यूनोस आयरिस पहुंचे अर्जेंटीना में। फिर वहां से हम गए साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। केप टाउन से इंडिया आते हुए जो हमारा थर्ड ग्रेट केप होता है जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए फिर हम वापस इंडिया में मुंबई आ गए। तो हमारा एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ और फिर मुंबई पे आके खत्म हुआ।
1: विभा जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने दो बार इक्वेटर को पार किया, सदर एक बार सदर्न हेमिस्फेयर फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही होंगी आपने, बहुत ह्यूमिड भी, गर्मी का मौसम भी देखा होगा और बहुत ही ठंड का मौसम भी देखा होगा। तो उस जो वेदर कंडीशंस को फेस किस तरह से किया और मन में क्या दुखदुखी चल रही थी?
0: अभी भी जैसे हम आए हैं, कोई हमसे पूछता है कि आप सब तो एक साल सेलिंग करके आ गए बट आपके चेहरों में कहीं लग नहीं रहा है कि आपको टैनिंग हुई है। हम उसका यही आंसर देते हैं कि हम 8 महीने इतने लेयर ऑफ क्लोथ्स हम पहन के सेलिंग करके आए हैं, हमारे शरीर का कोई हिस्सा एक्सपोज ही नहीं हुआ। हमने जब इंडिया से शुरू किया तो मौसम गर्म था लेकिन रात को हल्की हल्की ठंड होती थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे उस टाइम पे ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हम दो दो लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते थे। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से अर्जेंटीना जब हम सदर्न हेमिस्फेयर में गए थे, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं आपको बताती हूँ, हम सर पे जितने कपड़े आ सकते थे हम उतने पहनते थे, और वो अगर हम काउंट करेंगे उनको तो सर पे 3 लेयर, हाथों में ग्लव्स की 3 लेयर, ऊपर 5 लेयर, 3 लेयर इनर की, उसके ऊपर फ्लीस एंड विंटर एंड वाटरप्रूफ जैकेट, सेम नीचे सॉक्स के 3 पेयर और शूज। जब हम अपनी ड्यूटी करने जाते थे तो हम इतने पैक हो जाते थे कि हम चल भी नहीं पाते थे। और उस वेदर में जैसे ही आप बाहर जाओगे, बाहर आप मानिए कि हवा की गति 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलमोस्ट, और 0 डिग्री की हवा जब आप पे लगेगी 5 मिनट में हमारे हाथ सुन्न हो जाते थे। अगर हम अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड भी करना चाहते थे, मान लीजिए 1 घंटा, हमारे हाथ इतने सुन्न होते थे कि हम वापस अंदर आते थे, गैस पे अपने हाथ सेकते थे ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बन पाए। एक इंसिडेंट मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगी, हमारा सेल फट गया था। तो जब हमारा सेल फटा तो हमें वो चेंज करना था। चेंज करने के लिए अब क्या है कि उसमें आपको हुक्स लगाने पड़ते हैं, मैन्युअली वो चेंज करनी थी, और हुक्स हमने जब ग्लव्स से लगाने की कोशिश की तो नहीं लग पाए क्योंकि ग्लव्स में फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था 3 ग्लव्स से। हमने अपने ग्लव्स उतारे और हाथ एकदम सुन्न, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की कि मेरे हाथ सुन्न हो जाए। और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, ऊपर से कॉन्टिन्यूस आपके ऊपर पानी गिरता है, तो जितने भी आपने लेयर्स पहने हैं वो हमेशा अंदर तक भीगे रहते हैं। तो हमने फाइनली फिर हाथों में पैरों में पॉलिथिन्स पहनना शुरू किया कि पानी और स्किन का थोड़ा सा टच बचे और हमारे हाथ थोड़ा लेट नंब हो। तो ये वेदर था एक्सट्रीम,
1: मतलब एक तो पानी की लहरें, ठंड और हवा, और उसके बाद अगर बरसात आ जाए तो बताइए वैशाली जी, उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था? और जैसे अभी तो हम हंस रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हाल था?
2: नहीं नहीं, उस समय हमने ऐसे दिन देखे हैं जब हफ्तों हफ्तों बारिश हो रही थी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ ठंड थी, लेयर्स पहने हैं, गीले हो गए हैं, अभी आप 4 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और 6 घंटे बाद आपको दोबारा ड्यूटी पे आना है क्योंकि रोटेशन ऐसे ही चलता है, 6 घंटे में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो आपको वही गीले कपड़े पहन के फिर 4 घंटे आना है, फिर आपको गीला होना है, फिर अगले 6 घंटे आपके वो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो हमने शायद हफ्ता ऐसे ही निकाला होगा कि बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप वैसे ही पहन के बैठे रहो, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव चेंज्ड और आप एक गर्म कपड़े में आके, आपको कोई भगवान आके गरम गरम चाय पिला देता है। ऊपर से अगर बारिश पीछे से आ रही है तो इट इज स्टिल फाइन, आपको डायरेक्ट नहीं लग रही, बट अगर आपको सामने से बारिश आ रही है एंड यू आर गोइंग एट अ स्पीड, तो वो एकदम सुई की तरह चुभती है। अब आप आंख भी नहीं खोल पा रहे हो, तो आप देखोगे क्या? तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर है क्योंकि बारिश हो रही है, उसमें आप जो बचा कुचा दिख रहा है

0: वो भी आप पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे हो क्योंकि बारिश के पानी आपको आंखें खोलने ही नहीं दे रही। तो आप मतलब ऐसा था कि 15 सेकंड आप ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, उस तरह से हमें 4 घंटे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था।
1: तो मेजर प्राजक्ता आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जैसे अगर हवा आ रही है सामने से बहुत तेज आ रही है तो आपको शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा डायरेक्शन चेंज करनी होगी, लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा होगा, तो इस तरह की भी आपने समस्या देखी?
2: हमारी बोट चलती ही सिर्फ विंड पावर पे, तो हम अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज ही करना पड़ता था। तो काफी बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत नॉटिकल माइल्स दूर चले गए हैं अपने जहाँ पे हमने पहुंचना है एग्जैक्ट वे पॉइंट से। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कभी उल्टा भी निकल गए बिकॉज हवा ही नहीं है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन फील होता था, बट फिर हम कुछ कर नहीं सकते उस
3: ड्यूरेशन में। एक्सट्रीम देखा है हमने, एक्सट्रीम मतलब जीरो हवा भी देखी है, जैसे इन्होंने बताया कि हम पीछे जा रहे हैं, पानी हमको पीछे धकेल के ले गया, और हमने 60 knots ऑफ विंड मतलब ऑलमोस्ट 100+ किलोमीटर पर आर का विंड भी देखा जब हमारी बोट ऑलमोस्ट पानी के अंदर जाने वाली थी। तो और मतलब एकदम इतनी गर्मी भी देखी है कि हम सब एकदम पसीना पसीना, और इतनी सर्दी भी देखी है कि हम हमारे हाथ जम गए।
2: ये गर्मी और सर्दी वाला मैं आपको जस्ट एक्सट्रीम का आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल दिस थिंग। सदर्न ओशन में जब हम थे, मैम ने जैसे बताया, इतनी ठंडी थी कि हमारे बोन्स तक दर्द होने लग जाते थे। आई हैव सर्वड इन 3rd stage हाई ऑल्टीट्यूड, उधर भी बहुत ठंडी होती है। आई हैव सर्वड इन लद्दाख, वहां पे मैंने ठंड देखी है, बट वो ठंड मेरे को बहुत कम लगी कम्पेयर टू वॉट वी विटनेस्ड हियर। एंड एक्सट्रीम गर्मी का मैं बताऊं, हमारे लिए पाउडर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। हम गले से लेके एंकल तक सिर्फ पाउडर में ही होते थे।
1: आप बताएं स्पॉट लीडर वैशाली की, नाउ वुमेन आर दे आर अनस्टॉपेबल, ठीक है, तो बीइंग अ वुमन व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड?
0: मैं फ्रैंकली ये बताना चाहूंगी, नॉट टू एग्जैजरेट, मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसी कोई डिफिकल्टी आई है। जो मैंने लड़कों को करते हुए देखा है वही एग्जैक्ट चीज हमने करी है। हाँ, अगर मैं पहले से ये बना के चलती कि मैं पीरियड्स में कैसे करूंगी, मुझे एक कंफर्ट जोन चाहिए, और नहीं मुझे नहाना है, अगर इफ आई एम ट्रेन्ड इन दैट मेंटालिटी एंड इफ आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट मेंटालिटी, ऑब्वियसली इट बी इट सेलिंग और एनी अदर एक्टिविटी आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। बट हम हमेशा से ट्रेन ही लड़कों के साथ हुए हैं, हम ट्रेन ही वैसे हुए हैं एज लाइक वी आर इक्वल। इट इज जस्ट अबाउट दैट मेंटल स्ट्रांगनेस टफनेस विच वी से, वो हमने कंटिन्यू रखी।
1: विंग कमांडर, जैसे आप लोग वायुसेना से हैं, आप थल सेना से हैं, तो वहाँ का भी जो कुछ अनुभव आपके सेलिंग के दौरान काम आया हो, एक्सपेडिशन में काम आया हो?
3: अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो अनडाउटली इंडियन नेवी का पानी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो उन्होंने हमें काफी हेल्प की, गाइड किया कैसे करना है क्या करना है। इंडियन आर्मी का अगर कहेंगे तो भारत में जो सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो इंडियन आर्मी से ही हुई थी। पहला जो दुनिया का चक्कर लगा के बोट आई थी वो इंडियन आर्मी की ही थी, तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस भी था। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो जिस तरीके का मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग इनकी होती है, अनडाउटली वो हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमें उसी तरीके से ट्रेन किया गया। ट्रेन इस तरीके से किया गया कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं, तो ये जो तीनों सर्विसेज का आपस में जो कोर वैल्यूज लेके टीम बना के गए थे, कहीं ना कहीं इन सब ने मिलके इस एक्सपीडिशन को सफल बनाया है।
1: तो जैसे इतने चैलेंजेस थे इस आपाधापी में, आपने क्या अपने परिवार वालों से बात की मेजर प्राजक्ता? मतलब ऐसा भी कुछ मोमेंट आया कि शायद अब याद आ रही है उनकी?
2: हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे बोट पे, एक तो था हमारे पास सैटेलाइट फोन था, एंड प्लस वी हैव समथिंग नोन एज फ्री ब्रॉडबैंड जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। बट एक महीने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 GB डेटा होता था, एंड उसमें हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती थी, हमारी ऑल ओके रिपोर्ट या कुछ खराब हो गया उसका रिपोर्टिंग होती थी, एंड प्लस हम उस पर वेदर अपडेट लेते थे अपना। एंड फिर बचा हुआ कुछ टाइम हम अपने हर ऑफिसर को 5-5 मिनट या 10-10 मैक्सिमम मिल जाता था घर पे बात करने के लिए। बट ऐसे भी बहुत बार दिन हुए कि नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, एंड बात नहीं हो पा रही है। तो रहा है, बहुत बार टाइम लगा है ऐसे कि यार घर वाले क्या सोच रहे होंगे, बट फिर उनको खुशी होती थी कि अगर कॉल नहीं आया है, बिकॉज अगर कॉल आया और अगर हमने बोला कि आज ऐसा ऐसा हो गया तो उनको और टेंशन हो जाती थी। तो इट वॉज बेटर फॉर देम कि वी हैव नॉट गिवन देम अ कॉल।
1: तो आपने विशाली जी, आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि आज ऐसा हुआ, आपका मन किया मैं बताऊं?
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं। What happens on the boat stays on the boat.
1: तो strong lady, मतलब ये है नारी शक्ति आज की नारी है, जो अपने experience को, अपने साहस को साथ लेते हुए अकेले लड़ना जानती है और अकेले

0: चलना जानती है, टीम भावना जब हो तो उसके साथ सबको लेकर साथ चलती है। मतलब आपका पड़ाव भी था जैसे पोर्ट कॉल कहते हैं जिसको, चार देशों में रुका, तो उस दौरान क्या किया गया, कैसा आपको, क्योंकि आप ऐतिहासिक अभियान पर थी तो उस समय कैसा गर्व की भावना आप में आई?
1: देखिए, पोर्ट ऑफ कॉल जो हमने हॉल्ट्स लिए थे, जैसे हमने आपको अपनी बोट के बारे में बताया कि लिमिटेड स्पेस है और एक्सपीडिशन बहुत लंबा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बोट के जो रिपेयर, रिप्लेनिशमेंट, राशनिंग एंड रेस्ट एंड रिकूप ऑफ द क्रू, ये चीजों को ध्यान में रख के हमने पोर्ट ऑफ कॉल्स लिए थे। अब वो जो पोर्ट ऑफ कॉल में जब आप जा रहे हैं, देखिए जैसे हर भारतीय का सपना होता है कि जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, तो जब हम इन चार कंट्रीज में गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, और वहां पे आप अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट हमने अपने लाइफ में फील नहीं किया। जैसे जब हम अर्जेंटीना में गए थे, वहां पे जो उनका नेवल बैंड था, उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था, और हम सब की आंखों में गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया है। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि भारत ऑफशोर सेलिंग जैसे इस तरीके के एक्सपीडिशंस में हमारे बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत कल्चर है। तो आप इंडिया से उनके कंट्री में जा रहे हो, और हमने किया ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज, तो वो जो लोग थे वो हक्के बक्के थे कि इंडिया में विमेन को पूरे दुनिया का चक्कर लगाने भेज दिया। तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना कि हम अपने कंट्री को एज अ विमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनके देश ने भी नहीं की, वो अमेज थे। तो फीलिंग जो होती है कि आई एम अ इंडियन एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री, ये एक लाइफ लॉन्ग फीलिंग और एहसास है जो हम पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे।
0: आपने एहसास उस समय फील किया, आप मुझे बता रही है, मतलब आई हैव गूज़बम्प्स कि आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा होगा। और जैसे वैशाली जी खुशी के आंसू कह रहे थे, मतलब खुशी के आंसू आए दर्द से और कठिनाई से, चुनौतियों का सामना करते हुए, वो आंसू नहीं,
2: उसके कभी नहीं।
0: निसंदेह साहस का, आपने आत्मविश्वास का परिचय दिया इस अभियान में, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो मरीन पोल्यूशन को लेकर, आप बताएं मेजर प्राजक्ता किन किन बातों का ध्यान रखा?
2: सो मेनली हमारा जो वेस्टेज होता था वॉज आप मान लो सैनिटरी वेस्ट वन, एंड मेजरली इट यूज टू बी हमारा फूड या जो भी हम पानी पी रहे हैं। तो हमारे पास प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती थी, तो हम उसको क्रश करते थे। अब उसको हम हमारे पास अभी जब हम हर एक पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे तो हमारे पास चार बड़े बड़े गार्बेज बैग्स भर जाते थे, क्योंकि हम फेंकते नहीं थे वो प्लास्टिक को पानी में। एंड जब हम पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे वहां पे हम डिस्पोज ऑफ करते थे।
0: तो ये बहुत बड़ा संदेश है मतलब सभी के लिए। जी वैशाली जी, 314 दिन लंबा आपका ये एक्सपीडिशन था, तो जरा ऐसा कुछ मेमोरेबल आपका जो क्षण रहा हो, यादगार क्षण जो आप बताना चाहें?
3: बहुत सारे ऐसे दिन होते थे, वेदर खराब है, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ टूट गया है, कभी बादल है, बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, वो लगातार चलता रहता था। तो जो मिजरी है ना वो इतनी कॉमन हो गई थी कि वो बुरा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जिस दिन सूरज निकलता था और हवा बिल्कुल एप्ट जो बोलते हैं ना कि ना कम है ना ज्यादा है, जो एंजॉय करने लायक वो हवा है वो होती थी, वो मुझे याद है, वो सनसेट, वो हाथ में एक कॉफी और गाना, क्योंकि उस दिन धूप निकली थी तो हमारे पास पावर थी कि हमें गाना सुन सके, वो एक 5-10 मिनट का जो टाइम था, और बोट बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, वेदर खराब नहीं है, क्रैश नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, वो दिन बहुत ही अच्छा यादगार दिन था, और वो मेरे ख्याल से वो लाइफ लॉन्ग आगे जाएगा।
0: आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऐसा कुछ मोमेंट जो यहाँ रहा हो?
2: हम मैम और मैं दोनों साथ में ही थे उस टाइम पे, and this was when we were coming to Mumbai from Cape Town, and morning I think 5:30-6 o'clock की बात है, हमें horizon पे sunrise होता हुआ दिख रहा है, and all of a sudden मे को आवाज आती है, बहुत कुछ तो उछल रहा है पानी में, और बहुत ही दूर है ये, क्योंकि एकदम शांत है, हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे। तो दूर हमने देखा almost thousands of dolphins, एक लाइन से हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ तो उछलता उछलता उछलता हमारे सामने से वो ऐसे निकले। दे आर प्रोबेबली माइग्रेटिंग, क्योंकि इतने सारे थे, हमने कभी इतने सारे देखे ही नहीं है।
0: सच अ ब्यूटीफुल
2: एक्सपीरियंस।
0: तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि आप आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मेरे हिसाब से ये कि जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी होता है।

0: और सपने सच भी होते हैं, बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
1: वैशाली जी, जो सरकार है वो महिला नेतृत्व विकास पर जोर दे रही है और वो हर फील्ड में दिख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
2: लड़के लड़कियां, मैं सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, फौज ज्वाइन करनी चाहिए, बी इट आर्मी, नेवी और द एयरफोर्स। किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन, यू कम, यू एक्सपीरियंस दिस। सो फॉर ऑल द यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, एवरीवन, दे शुड ज्वाइन द फोर्सेस।
1: जी, आप क्या कहना चाहेंगी मेजर प्राजक्ता, आपके शब्द?
3: आई वुड लाइक टू से कि सक्सेस कम्स विथ हार्डवर्क, परसिवेरेंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट हैविंग एन ईगो। दिस इज समथिंग विच माई फादर यूज टू टेल मी एंड दिस हैज स्टेड विथ मी बिकॉज आई हैव अ लेटर जो उन्होंने मेरे को दिया था। एंड जब मैंने ये एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था तो मैंने वो लेटर लेके गई थी एंड दैट इज वॉट केप्ट मी गोइंग थ्रू दिस एंटायर।
1: काफी मतलब अच्छा था आप लोगों का एक्सपेडिशन। आप लोगों की गाथा सुनने से निसंदेह सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, उनको भी जो आगे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। आप तीनों का धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आकाशवाणी से जुड़ी और अपने अनुभव हमसे साझा किए।
3: थैंक यू वेरी मच।
4: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
5: FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:29:53 हुए हैं और अब आप सुनेंगे अपने मनपसंद फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, फिल्म कभी खुशी कभी गम से ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सोनू निगम के स्वर में। और इस गीत को हमारे पास सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी श्रोताओं कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सारिक अली खान, सादिक अली खान ने। और साथ ही इसी गीत को सुनना चाहते थे हरियाणा झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। गीत की फरमाइश हमारे पास अमरोहा नई बस्ती से भी आई थी, बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी इस गीत को सुनना चाहते थे और थाना टीन मोहल्ले से इरफान खान भी इस गीत को सुनने के इच्छुक थे। इसी के साथ श्रोताओ, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी ने इस गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की थी। और

अरे श्रोताओ, गोवर्धन विहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी इस गीत को सुनना चाहते थे। अब श्रोताओ, अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है, और ये गीत है मेरा गांव मेरा देश से लता मंगेशकर के स्वर में, और इस गीत को सुनना चाहते हैं करणवीर हाउस बठिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू एकम दमन और अभिजीत, साथ ही लाल कुर्ती रुड़की से इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास लिख भेजा है राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आरके राजा ने। इसके साथ ही मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी अस्तुपुर जिला मऊ से इस गीत को सुनना चाहते हैं, और बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद भी इस गीत को सुनने की इच्छा रखते हैं श्रोताओ। इसी के साथ श्रोताओ, जिला बिजनौर शेरकोट मोहल्ला हलवाईयान से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर ने भी इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है। इसके अलावा एटा रोड गंज डुंडवारा से फैसल शेख, नुसरत शेख, हरमान शेख, हरीब शेख, कैसर शेख और पूरा शेख परिवार सुनना चाहता है मेरा गांव मेरा देश के इस गीत को लता मंगेशकर के स्वर में।

श्रोताओं, मेरा गांव मेरा देश से इस गीत को हमारे पास फरमाइश छत्तीसगढ़ पलारी से भी आई थी। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। सुनते हैं अब अगला गीत फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से सोनू निगम और श्रोताओं सोनू निगम और मोहम्मद वारिस के स्वर में।

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई थी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। और इसी के साथ सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव भी इस गीत को सुनना चाहते थे। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, अरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली। और मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान भी इस गीत को सुनने के इच्छुक थे। और श्रोताओं, वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, मनोज भ्याण, ये हमारे श्रोता जेवरा

हिसार से इस गीत को सुनने की फरमाइश भेज रहे थे। इसी के साथ श्रोताओं, इसी गीत को सुनना चाहते थे कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया इब्राहिम और सद्दाम। अब श्रोताओं, कार्यक्रम में समय हो गया है आपको अंतिम गीत सुनाने का, और अंतिम गीत हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म नमक हलाल से, आशा भोसले, शशि कपूर और बप्पी लहरी के स्वर में। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शाइना शर्मा। इसके अलावा मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद मंसूरी, राशिद मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली के साथ नगमा नाज मंसूरी ने इस गीत के लिए हमें संदेश भेजा है। और गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता इस गीत को सुनने के इच्छुक थे। श्रोताओं, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से भी हमारे पास अब इस गीत को जो हम आपको सुनाने वाले हैं, इसकी फरमाइश आई है अजमेर शरीफ से, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम, मोहम्मद आलम हाशमी। और श्रोताओं, गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। और कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सारिक अली खान, सादिक अली खान इस गीत को सुनने के इच्छुक हैं। और इस अंतिम गीत को सुनने के लिए पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने अपनी फरमाइश भेजी थी। तो आप सबका मनपसंद ये फरमाइशी गीत प्रस्तुत है फिल्म नमक हलाल से।

0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अपना फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं।